0: पूज करावा पूज करावा।
1: श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सत सुतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया।

0: ਤਿੰਨਾ ਸੁਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ

ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਫਿਰ

0: देख नहीं जाता पुस्ते जो पाई है नानक साकरमा साहिब तुठा जो मिले महला दूजा
1: देख नहीं जागृत वो खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिस सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी
0: हरदा के पारवा या पाती।

हे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तेखा सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। अॼु विस्पत आहे जून महीने जी 18 तारीख़। हिन वक़्तु भारत में सुबुह जा 6:30 थी चुका आहिनि। असांजे प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। प्रोग्राम जा तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। थोरी देर में तव्हां भगत कंवर राम साहब खे ॿुधंदा। तंहिंखां पोइ तव्हां 6:36 ते तबसरो ॿुधंदा। तंहिंखां पोइ 6:46 ते कहाणी पेश कई वेंदी। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त ॿुधूं भगत कंवर राम साहब खे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ 14-17 जून 2026 ते फ्रांस जे शहर एवान में आयोजित 52वीं G7 समिट में शिरकत कई। इन खां अॻु प्रधानमंत्रीअ ओलह एशिया में तकरार ख़तम करण ते अमरीका ऐं ईरान जे विच में थियल समझौते जी आजियां कई। श्री मोदीअ नोट कयो त तकरार सॼी दुनिया में संगीन मुआशी ख़लल पैदा कयो आहे ऐं केतिरनि ई मुल्कनि में जानी नुक़सान जो सबबु बणियो आहे। प्रधानमंत्रीअ उमेद ज़ाहिर कई त हिन समझौते ते अमल दरामद सां इलाइक़े में अमन ऐं स्थिरता आणण में मदद मिलंदी ऐं नेविगेशन ऐं वापार जी आज़ादीअ खे यकीनी बणायो वेंदो। प्रधानमंत्री मोदीअ इहो पिण चयो त हिन्दुस्तान हिकु पायदार आख़िरी एग्रीमेंट ताईं पहुचण लाइ बाक़ी मसइलनि ते बहस मुबाहिशे जी उमेद रखे थो। प्रधानमंत्रीअ G7 समिट ते नयुनि भाईवारियुनि जे ठहण ऐं अंतर्राष्ट्रीय हमदर्दीअ जे ॿीहर तामीर जे आउटरीच सेशन खे ख़िताब कयो। प्रधानमंत्रीअ ज़ोर ॾिनो त हिकु जुड़ियल दुनिया में जिते तवानाई, खोराक, सिहत, साइबर ऐं आर्थिक सुरक्षा हिक ॿिए सां ॻंढियल आहिनि, अंतर्राष्ट्रीय भाईवारियूं ठाहिण इंसानियत जी तरक़ीअ ऐं खु़शहालीअ लाइ ज़रूरी आहिनि। हुन वधीक चयो त हिकु ग़ैर यकीनी दुनिया में वापार ऐं टेक्नोलॉजीअ खे तंग नज़र फ़ाइदनि लाइ ग़लति इस्तेमाल कयो पियो वञे, जंहिं जे सबबि अंतर्राष्ट्रीय मैदान में भरोसो घटिजी रहियो आहे। कोविड वबा मां सबक़ वठंदे हुन मुल्कनि खे सॾु ॾिनो त आलमी भाईवारियुनि में भरोसो ऐं शफ़ाफ़ियत क़ाइम करण ते ध्यानु ॾियनि। भारत जे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वारे रवैये खे शेयर कंदे प्रधानमंत्रीअ चयो त भारत हमेशा इंसानियत पहिरीं जे उसूल ते अमल कंदो रहियो आहे ऐं इहो ख़्याल हुन जे कोशिशुनि जे मर्कज़ में रहंदो आहे। चाहे उहो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, डिज़ास्टर रिज़िलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलिशन, आलमी बायोफ्यूल अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट या एक पेड़ माउ के नाम माउ जे नाले हिकु वण मुहिम हलाइण जी कोशिश हुजे। हुन वधीक चयो त इन शामिल कंदड़ रवैये भारत खे दुनिया जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में कुदरती आफ़तुनि जे वक़्तु

सहयोग जवाब निडर बनाया हुआ है, चाहे वो श्रीलंका में तूफान हो जाए, अफगानिस्तान में जिलजिलो, मोजम्बिक में सैलाब या जमैका में तूफान। भारत जे शमूलियाती है पायदार वाद बाबत गालियों कंदे प्रधानमंत्री वजाहत कई नारो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी भलाई है खुशी माली शमूलियत सेहत की सुरक्षा डिजिटल सुजाणप टेक्नोलॉजी जरिए मानुन जे औरतुन जे अगवानी वाली तरक्की के अगते वधाने में काबिल गौर नतीजन ना वठी वियो है। प्रधानमंत्री नोट कयो त अंतरराष्ट्रीय शराकतू फकत डींदड़ वसूल कंदड़ जे तर्ज का अगते वधी भाईचारे ए बराबर मालिकी जे एक तसवुर डा वञण घुर्जन। उन यो पण चयो त अंतर्राष्ट्रीय कानून जो आदर न थियण अंतर्राष्ट्रीय भाईचारो कायम करण में सब का वड़ी रुकावट है उनके तरजीह तौर हल करण की जरूरत है। उन जोर दिनो त अंतर्राष्ट्रीय शराकतू सलामती स्थिरता यकीनी बनायण लाए गालियुन सिफारत कार्य के अवल रखण घुर्जन। समिट जे हलंदे प्रधानमंत्री पण केतरनि आलमी अगवाणन सां ब तरफी मुलाकातू कयूं। श्री मोदी कैनेडा जे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सां G7 समिट जे मौके ते मुलाकात थी। बिन्ही प्रधानमंत्रियुनि भारत कैनेडा रिश्ते में मुस्बत रुख जो स्वागत कयो। श्री कार्नी जे March 2026 में भारत जे कामयाब दौर खां पोए हासिल कयल तरक्की ते खुशी जाहिर कई। लीडरन पंजी अगते डिसंदड़ स्ट्रेटेजिक भाईवारी जो संकल्प भी हर कायम कयो। भारत ए कैनेडा जे अर्थव्यवस्थाओं जी मुकबिल भाईवारी के उजागर कयो आलमी तवानाई खुराक जी सिक्योरिटी के मजबूत करण में रिलायबल सप्लाई चेन जी अहमियत ते जोर दिनो। लीडरन बेतरफी इक्तसादी भाईवारी में तरक्की जो जायजो वरतो जैमें LPG LNG डाक के कोयले लाए तिजारती बंदोबस्त में तरक्यू शामिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट की दुर से गड UK के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर से बेतरफी मुलाकात कई। बनी अगवानन भारत UK लागापन में मजबूत रफ्तार जो जायजो वरतो जेको गुजरियल साल प्रधानमंत्रियों के बाहमी दौरन का पोए वध्यो आहे। इन विजन 2025 जा सभी क्षेत्र जो कि व्यापार इक्तसादी तरक्की दिफाओ सिक्योरिटी मौसमी तब्दीली साई तवानाई टेक्नोलॉजी इनोवेशन तैलीम लोकन के विच में राबतन जो स्वागत कयो। अगवानन अगूणी शुरुआत लाइ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के जल्द असर में अचण की उम्मीद कई। उन्हें मजबूत तैलीमी दे वे धीरज जो इजहार कयो। लंदन जी यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जे बेंगलोर कैंपस कायम करण जे हालिया विकास मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल कैंपस भी नोट कयो। अगवानन इलाकाई आलमी अहमियत वारन मामलन ते भी पैंजा राय वंडिया जैमें वेस्ट एशिया यूक्रेन शामिल आहिन। उन्हें बीहर पैंजो गडियल संकल्प जाहिर कयो त उहे भारत UK जॉइंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मजबूत करण जे लाइ कम जारी रखंदा। प्रधानमंत्री G7 समिट हलंदे यूनाइटेड अरब अमीरात जे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सां मिलिया। 2026 में बिन्ही अगवानन जे विच में इहा टी मीटिंग हुई जेका भारत UAE स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जे मजबूत वाइब्रेंट हुजण जी अकासी करे थी। बिन्ही अगवानन बेतरफे सहयोग में पॉजिटिव कदमन तरक्की जो जायजो वरतो जैमें टेक्नोलॉजी व्यापार सीड़पकारी तवानाई डिफेंस शामिल आहिन जिनजो तालुक राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जे जनवरी 2026 में भारत जे दौरे प्रधानमंत्री मोदी जे मई 2026 में UAE जे दौरे सां आहे। बिन्ही अगवानन इलाकाई आलमी तरक्की बाबत पंजन ख्यालन जी डेवट पण कई जेके बिन्ही जे दिलचस्पी जा हुआ। प्रधानमंत्री अमन सलामती स्थिरता जी अगभराई में गालियुन सिफारत कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून खुद मुख्तियारी इलाकाई अखंडता की अहमियत से जोर दिनो। बनी दुरियुन स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के आजाद महफूज बिना कें रुकावट के नेविगेशन से व्यापार कारोबार जारी रखने की अपील कई। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के इन साल के आखिर में भारत के मेजबानी में थीदड़ ब्रिक्स

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते।
1: हींअर पेश आहे प्रोग्राम शॉर्ट स्टोरी। इन प्रोग्राम तहत अॼु तव्हां भॻवान अटलाणी साहिब जी स्टोरी ॿुधंदा। अचो त ॿुधो हिन स्टोरीअ खे।
2: सुरेश बि मौको मिलंदे ई भाऊ जे पासे में वञी वेहंदो हो। शहर जी रहणी सहणी, शहर जा तौर तरीक़ा, सैर सपाटा, सिनेमा, सभिनी खां वधीक कॉलेज में थींदड़ शरारतूं सुरेश खे बेहद दिलकश लॻंदियूं हुयूं। उन वक़्तु संदसि अखियुनि अॻियां मास्टर ढालूमल जो चहिरो फिरी वेंदो हो। बदन थुलो ऐं वेकरो, कद नंढो, ढिली वाणकी धोती। ढालूमल हलंदो हो त ईअं लॻंदो हो ॼण को फुटबॉल बुड़कंदो हुजे। स्कूल खां 7 किलोमीटर परे संदसि ॻोठु हो। हू रोज सुबुह जो साइकिल ते स्कूल ईंदो हो। ढालूमल जॾहिं साइकिल हलाईंदो हो त सुरेश खे महसूस थींदो हो जीअं को रिछ माण्हूअ जे वेस में साइकिल हलाईंदो हुजे। आस्ते आस्ते भाऊ जूं ॻाल्हियूं, मास्टर ढालूमल जो कदबुत ऐं कॉलेज जे छोकरनि जूं शरारतूं सुरेश जे दिमाग़ में हिकु नओं संसार ठाहिण लॻियूं। शरारत जे कीड़े कलाबाज़ियूं खाई खाई आख़िर हिकु रथा तयार कई। 14 नवंबर ते चाचा नेहरूअ जो जनम ॾींहुं हो। पहिरियनि ॿिनि पीरियडनि में प्रोग्राम ऐं तंहिंखां पोइ पढ़ाई थियणी हुई। सुरेश जे क्लास में मास्टर ढालूमल 3 पीरियड में ई पढ़ाइण ईंदो हो। सुरेश खे इहो मौको बहितरीन लॻो। प्रोग्राम ख़तम थियण खां पहिरीं हू चुपचाप उथी क्लास में पहुची वियो। हेॾां होॾां ॾिसी हुन खीसे मां आलपिन जो पैकेट कढियो ऐं हिकु हिकु करे उन्हनि खे कुर्सीअ जी बैठक में हेठे पासे ॾांहुं लॻाइण लॻो। आलपिनूं लॻाइण खां पोइ ख़बरदारी सां अची प्रोग्राम में वेही रहियो। पंहिंजी अॼु जी सोभ ते सुरेश ॾाढो ख़ुशि हो। मास्टर ढालूमल जी कुर्सीअ ते वेहनि, आलपिनूं चुभण करे उछल खाइण ऐं फुटबॉल जा लुकी वञण, इहे नज़ारा गहरी अखियुनि सां ॾिसंदे सुरेश जे चेहरे ते ख़ुशीअ जा पाशा लिया पाइण लॻा। प्रोग्राम में हेड मास्टर जी तकरीर हली रही हुई, पर उन ॾांहुं सुरेश जो ध्यानु बिल्कुलु न हो। खेसि झटको तरह लॻो जॾहिं छोकिरनि जे ताड़ियुनि जे फहके ऐं खगियुनि संदसि ध्यानु टोड़ियो। हेड मास्टर बाक़ी वक़्त लाइ स्कूल में मोकल जो ऐलान कयो हो। सुरेश खे लॻो ॼण ओचितो ज़लज़लो अची वियो हुजे ऐं उन ज़लज़ले बेहद महिनत सां जोड़ियल संदसि घरौंदे खे ॾाहे छॾियो हुजे। 26 जनवरी ते हर साल सुरेश जे स्कूल में धाम धूम सां जलसो थींदो हो। हमेशह जा हिन साल पिण स्कूल जे मैदान में स्टेज ठाही वई हुई। ॻोठ जा सभु माण्हू जलसो ॾिसण लाइ घुराया विया हुआ। सुरेश जो बाबा बि जलसो ॾिसण लाइ आयो हो। रात जा 9 थिया हुआ। जलसो ख़तम थियण में अञा 1 कलाक जी देर हुई। ओचितो सुरेश जे दिमाग़ में हिकु शरारत कर्म विया। हू पंहिंजी जॻहि तां उथी सिधो उन विरांडे में हलियो वियो जिते पाणी जा मटका रखिया रहंदा हुआ। विरांडो पूरी तरह ऊंदहि में ॿुॾल हो। विरांडे जे ॿाहिरें पासे भित सां लॻी मास्टर ढालूमल जी साइकिल बीठी हुई। सुरेश ख़बरदारी सां चइनी पासे ॾिठो। मटकनि में भरण खां पहिरीं पाणी छाणण वारो अछो कपिड़ो ऊंदहि में बि भित ते टंगियल नज़र अची रहियो हो। अॻियां वधी थोरो ज़ोर लॻाए सुरेश उहो को छिके

कहीं वर्तो जैते कपड़ो टंगेल हो। कोके खे मजबूती सा आंगड़ियों में दबाए सुरेश मास्टर ढालूमल जे साइकिल वटायो। जलसे वारे मैदान दा नजर विझी हुन साइकिल जे अगे फीथे में कोको टंगे छड़ियो। तेखा पोए एक पल लाए भी सुरेश उते न बीठो। डुक पाए मैदान में अची हु पंज जगह ते वेही रहियो। जलसो खत्म थींदे थींदे ॾह वॼी विया। छो त सुरेश जो बाबा जलसो ॾिसण आयो हो, तंहिं करे मास्टर ढालूमल जी हालत ॾिसण जी तमन्ना हूंदे बि मन मारे खेसि बाबा सां गॾु घर मोटणो पियो। सुबुह जो 6:30 बजे सुरेश जी अखि खुली। खेसि ताजुब थियो त अमा अॼु उथारे छो न आहे। हू सवट छिके वरी मुंहुं लिकाइण वारो ई हो जो संदसि नज़र लाव जे खट जे बाहीअ ते वेठल बाबा ते पइजी वई। खेसि सौण ठीकु न लॻा। उथी अची बाबा खां पुछई त पतो पियुसि अमा खे राति खां ई तेज़ बुखार आहे। अमा जी बीमारी जी ॻाल्हि ॿुधी सुरेश जे अखियुनि मां बची खुची निंड बि उॾामी वई। हू अमा जे मथनि खां वेही संदसि मथे ते ज़ोर ॾियण लॻो। अमा मूंखे प्यार कंदी आहे, खेसि केतिरी न तकलीफ़ आहे। चुपचाप मुंहुं लिकाए हंध में पई आहे, न कुझु ॻाल्हाए थी ऐं न कुझु चए थी। सोचे सोचे करे सुरेश खे रोअण अचणु लॻो। ॿ ॾींहं सुरेश स्कूल न वियो। टे ॾींहं बाबा स्कूल वञण लाइ चयुसि त हू कुझु ई न सघियो। बेदिलियो स्कूल हलियो वियो, पर संदसि मन ॼण स्कूल में हो ई कोन। हर हर संदसि अखियुनि अॻियां बीमार माउ जो चहिरो तरी पियो वञे। उन ॾींहुं टे पीरियड में मास्टर ढालूमल कोन आयो। संदसि जॻहि ते जेको साईं आयो, तंहिं मां सुरेश खे पतो पियो त जलसे वारी राति साइकिल में पंचर थी वञण करे मास्टर ढालूमल खे ज़बरदस्त सर्दीअ में 7 किलोमीटर पंधु करणो पियो। खेसि निमोनिया थी पई आहे। ॿुधी करे पहिरीं त सुरेश खे ख़ुशी थी, पर पोइ संदसि नज़रुनि अॻियां हंध ते लेटियल सवड़ में मुंहुं लिकाए किंझंदड़ माउ जो चहिरो घुमी वियो। सुरेश खे महसूस थियो माउ जी बीमारी जो ज़िमेवार हू पाण आहे। अमा हुन जे करे बीमार थी आहे। हीअ संदसि कर्णीअ जो ॾंडु आहे जेको अमा भोगे रही आहे। राति जो जॾहिं हू बाबा सां गॾु स्कूल जे जलसे मां मोटियो हो, तॾहिं त अमा बिल्कुलु ठीकु हुई, पर सुबुह ताईं छा थी वियो अमा खे? हीउ सभु इन करे थियो छो त सुरेश साईं जे साइकिल में पंचर करे छॾियो। हेतिरी थधि में 7 किलोमीटर पंधु करण में साईं खे केतिरी न तकलीफ़ थी हूंदी। मोकल खां पोइ सुरेश वञी माउ सां अहिड़ो चिंबड़ियो जो खेसि छॾे ई न। संदसि अखियुनि मां ॻोड़ा पिया वहनि। रोअंदे रोअंदे सुरेश सॼी ॻाल्हि माउ खे चई ॿुधाई। ॻाल्हि पूरी कंदे कंदे हू ओछकारूं ॾेई रोअण लॻो। अमा खेसि चुप कराइण जी कोशिशि कई त सुबका भरे चवण लॻो, मूं ई तव्हांजी तबियत ख़राब कई आहे, मूं ई तव्हांखे बीमार कयो आहे, हाणे मां छा कयां, छा कयां? अमा जे चवण ते शाम जो बाबा सुरेश खे मास्टर ढालूमल जे ॻोठ में संदसि घर वठी वियो। ढालूमल खे सुरेश जी शरारत जे बारे में का ॼाण कोन हुई। सुरेश जे बाबा जॾहिं सॼी ॻाल्हि खेसि ॿुधाई त हुनखे बेहद ताजुब थियो। सुरेश जूं नज़रूं शर्म विचां मथे न पियूं खजनि, संदसि ज़ुबान मां अखर न पिया उकलनि। जॾहिं सुरेश जे बाबा ढालूमल खे चयो त सुरेश खांसि माफ़ी वठणु आयो आहे, त भरियल अखियुनि सां सुरेश साईं जे पेरनि ते किरी पियो। सुरेश जी हालत ॾिसी ढालूमल जे चपनि ते मुश्क तरी आई। हिन मथे खणी सुरेश खे भाकुर में भरे खट ते पंहिंजे पासे में विहारियो। हाणे मूंखे निमोनिया खां का शिकायत कोन्हे। सुरेश खे सही रस्ते ते आणण लाइ हीअ वॾी क़ीमत न ॾियणी पई आहे मूंखे। ढालूमल जा लफ़्ज़ ॿुधी सुरेश खे लॻो हो ज़मीन में खुपंदो थो वञे। साईं केतिरो न महान आहे, खेसि पंहिंजी तकलीफ़ जी चिंता कोन्हे। मूंखे रंजायो सतायो, तंहिं हूंदे बि हू ख़ुशि थियो त मां सही रस्ते ते अची वियुसि। इन हादसे सुरेश जो सोचण जो तरीक़ो ई बदिले

0: मिलियो। हाँ, गर्मियों के मोकलन में जब भाव घर आयो तो सुरेश खेस एतो जरूर चयो, भाऊ अपने तवा के खब पंजे कॉलेज के शरारतन जो गालियो न बुधाजो, खास तौर सा मु जड़न कचड़न के बारन के सामू तो बिल्कुल न।
1: हे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे, तवा भगवान अटलाणी साहब का कहानी बुधी रहा हुआ। हेर पेश आहिन खास खास खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवियन में G7 समिट के मौके ते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कई। स्टेट ऑफ हरमोज की आबनाई ए सामूटी मुसाफिर के हिफाजत जा मसैला नुमाया तौर ते सामू आया। प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ए यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लीयन से बतरफी मुलाकात पण कई। पेरिस में विवाटेक 2026 में इंडिया पवेलियन के इनोग्रेशन ते भारत ए फ्रांस इनोवेशन एआई ए टेक्नोलॉजी सहयोग के संकल्प के बीहर वरजायो। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अमन पसंद मानून ते तशद्दुद की सख्त निंदा करे थो। क्रिकेट में लखनऊ में भारत अफगानिस्तान के बी वनडे मैच में 170 रनसों से शिकस्त दई 2-0 से सीरीज पेंजन नाले कई।

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो 6:30 वॻे। तेसीं ताईं ॾींदा मोकल सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: टेक की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरस दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरस की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की

भी सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप अजय कपिल के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का सुबह के बेला में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आजकल सभी की छुट्टियां चल रही हैं और सभी कहीं ना कहीं पिकनिक के लिए गए हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी जाना है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस है? तो आज के दिन अगर आप कहीं गए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि ये दिन और ये जर्नी आपके लिए बहुत ही सुखद और आनंदमयी हो।

दोस्तों, पिकनिक शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द पिकनिक से हुई है और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब शाही उद्यानों को आम जनता के लिए खोल दिया गया

बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अपना दिन हंसी खुशी से व्यतीत करते हैं तो आपकी पिकनिक तो रोज ही है। और ये दिन जो है हम सभी को अपनी व्यस्त दिनचर्या से ब्रेक लेने और परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ खुले आसमान के नीचे प्राकृतिक वातावरण में भोजन करने और समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, जब साथ में अपने हों तो सफर और भी आनंदमयी हो जाता है।

मौसम प्रकृति की सुंदरता और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है और आधुनिक जीवन शैली में काम के तनाव से दूर अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताने का इससे बेहतरीन अवसर कब हो सकता है।

दोस्तों अब हमारा भी चलने का वक्त हो गया है और अब आप भी अपने पिकनिक का पूरा एंजॉय कीजिए और जो प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का वो भी जल्दी से जाइए। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर मेल करिएगा। और अब मुझे यानी अर्चना सचदेवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आपको छोड़े जाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए। मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम

0: हिस्सा बनेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। वह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कुल्लू नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा के 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा

0: दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हेमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंगू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
5: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िशकियान ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
6: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद फहद। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के

0: बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप कर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है, पत्र लिखता है हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबार की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द है टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है, पत्र लिखता है वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend Viva Tech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. Now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything. So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The Viva Tech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
4: While the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships, he will lead the charge by covering a specialized round

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवाटेक समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहिदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। औरतों के क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनरल मोदी का पुरतपा इस्तेमाल किया। पुरजोश हामियों ने वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैरमकदम किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्को है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब करेंगे। तफसील हमारे निगरानीगर से।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी आज दो तरफा तजारत और इख्तराई शराकत दारियों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक खसूसी गोलमेज इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें भारत

0: के तेजी से फैलते हुए सनअती और टेक्नोलॉजी शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरे का मरकजी हिस्सा आज बाद में वाटेक होगा, जो यूरोप की मुमताज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों समिट में आला सदर की सरगर्मियों की क्यादत करेंगे। इन सरगर्मियों का अख्ताम एक अहम कलीदी खिताब से होगा, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते हुए आलमी डिजिटल असर रसों को उजागर किया जाएगा। यह वसी सफारती दौरा एक बड़े अवामी राबते के प्रोग्राम के साथ इख्ताम पजीर होगा। वजीर आजम वसी पैमाने पर मुनाकिद होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और भारत की तहजीबी विरासत को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर आजम मोदी G7 समिट में कई मुफीद और नतीजा खेज मीटिंगें करने के बाद पेरिस पहुंचे हैं। इन मीटिंगों में उन्होंने हुक्मरानी और पॉलिसी साजी के अहम अमूर पर भारत का मौकफ पेश किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्हें आलमी खुशहाली के लिए तरक्की पजीर ममालिक के साथ करीबी तआवुन की जरूरत पर जोर देने का मौका भी मिला। G7 के आउटरीच इजलास में वजीर आजम मोदी ने G7 मुल्कों भारत और आलमी खित्ते जुनूब की मुश्तरका ताकतों को यकजा करके राबते और तजारत को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क तजवीज किया। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों पर मगरबी एशिया के बहरान के तवील मुद्दती असरात पर तशवीश का इजहार किया। G7 समिट के मौके पर वजीर आजम मोदी ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टार्मर, यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन की आला रहनुमा उर्सुला वॉन डर लेन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आले नहयान और कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी शामिल थे। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जनाब मोदी ने समुद्री अमले के अफाद की सलामती का मामला उठाया और जोर देकर कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के नफाज के दौरान उनके तहफ्फुज को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वजीर आजम मोदी के पेरिस के दौरे से तवक्को है कि खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और आवाम से आवाम के राबते के शोबों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के पहले दिन मोहतरमा मुर्मू मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली समाज को बेख्तियार बनाने से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सदर जमहूरिया इंदौर पहुंचेंगी और फिर बैतूल का सफर करेंगी, जहां वो ब्रह्मा कुमारीज के जेर एहतमाम मुनाकिदा एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। बाद में मोहतरमा मुर्मू ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगी और शाम की आरती में हिस्सा लेंगी। 19 जून को सदर जमहूरिया सिकल सेल एनीमिया के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत करेंगी। 21 जून को मोहतरमा मुर्मू जबलपुर में योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में हिस्सा लेंगी। वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 36वें जलसे तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। इसके बाद वो नई दिल्ली रवाना होने से कबल कुल्लू नेशनल पार्क का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया के बैतूल के दौरे के पेश नजर जिला कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनावने ने सिक्योरिटी इंतजाम के तहत बाज बंदिशें नाफिज की हैं। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। झारखंड कानून साज असेंबली में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 रुकन असेंबली अपना वोट डालेंगे। फिलहाल हुक्मरान इत्तेहाद को 56 MLAs की हिमायत हासिल है, जिनमें JMM, कांग्रेस, RJD और CPI ML शामिल हैं। 24 MLA की हिमायत वाली अपोजिशन में आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी की हिमायत की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामी इक्तिसादी और तजारती माहिदा CETA इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। तजारत व सनत की वजारत ने बताया कि समाजी तहफ़ से मुतालिक यह माहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC भी कहा जाता है, इस पर भी उसी दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
0: तजारत और सनत की वजारत ने बताया कि DCC के तहत छूट की मुद्दत

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज आप सुनेंगे गणेश प्रसाद मिश्रा का गायन ठुमरी राग विश्व भैरवी में। तबले पर संगत की है मिहिर कुमार नट्टा ने और सारंगी पर है शंभू सिसोदिया।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप गणेश प्रसाद मिश्रा का गायन सुन रहे थे राग मिश्र भैरवी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। सुनिए श्री अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफओ, विनिर्माण वित्त विशेषज्ञ से कमल किशोर की ये बातचीत।
1: हम आपका अभिषेक जी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं।
2: नमस्कार कमल जी, थैंक यू सो मच।
1: अभिषेक जी, आजकल देखा जाता है कि जो व्यवसाय में रोज रोज कभी कभी परिवर्तन होते हैं और उसके साथ में चलना पड़ता है, बिजनेस एक्सेलेंस के लिए इसमें कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, वित्तीय रणनीति हम कैसे बनाए इसके लिए, तो आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे?
2: कमल जी, आपने एकदम सही कहा कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें अलग अलग तरह से हमको करना चाहिए और इसमें कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। कि पहली बात तो हम जो भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा आने वाले समय में, हमारे 3 साल 5 साल में, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आने वाला है। सो आरओआई जिसको कहते हैं, आरओआई इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए हमको एक प्लान बना के चलना पड़ता है। और एक होता है इमोशनल डिसीजन और एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन को इमोशनल डिसीजन से पहली बात तो अलग रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वज एक तरह से या हमारे पिता एक तरह से कर रहे थे तो आज के संसार में क्या वो सही है। आज मैं देखता हूं कई सारी एमएनसीज हैं और कई एमएसएमई कंपनी है, यानी कि छोटी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको कहते हैं, वो कई बार फैमिली रन एंटरप्राइज की तरह पुराने ढंग से भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स और पूरी तरह प्लानिंग नहीं करते और वहीं पर उनकी कई बार गलती हो जाती है।
1: यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो सेविंग्स होती है या फिर जो प्लानिंग होती है वो ट्रेडिशनल तरीके की होती है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नई सोच नई तकनीक को अपना नहीं पाते हैं।
2: आज के दिन में जैसे आपने टेक्निक की बात करी, एआई एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हमको यूज करना चाहिए। एआई से बचना नहीं चाहिए क्योंकि एआई हमारे साथ हमारे जीवन में है। इसको हम अच्छे तरह से प्रयोग कैसे कर सकते हैं एंड अगर हम सही तरह से बजट करें, जैसे आपने बजट की बात करी, हम कंट्री का भी बजट, देश का भी बजट बनाते हैं, उसी तरह हमको हर कंपनी का बजट बनाना चाहिए और 3 साल का एक समय लेके चले कि 3 साल में हमको ये इस प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचना है। कोई भी कंपनी आज अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको 3 साल में टर्न अराउंड करना है।
1: हम सबके दिलो दिमाग में भी ये बसा हुआ है कि हमें एक विकसित भारत बनाना है 2047 तक, उसमें वित्तीय यानी कि फाइनेंस का किस प्रकार का रोल होगा?
2: देखिए, अगर विकसित भारत की बात करें तो इकोनॉमी जो होती है वो किसी भी कंट्री की रीढ़ होती है, किसी भी देश की बैकबोन होती है। इकोनॉमी पे फोकस करना सबसे बड़ा उसका काम है। अगर हमको विकसित भारत करना है तो इकोनॉमी हर तरह से आती है। इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सही ढंग से इन्वेस्टमेंट्स आए, बाहर का इन्वेस्टमेंट भी आए, और खाली हम बाहर की कंपनी को अपने यहाँ पे तो जगह दे रहे हैं पर हमारी खुद की कंपनियों को भी एमएनसीज बनना चाहिए। हमारी कंपनियां बाहर जाके व्यवसाय करें, बिजनेस करें और वहां पर कमाई करें, वो बहुत जरूरी है
1: जी। और इसके लिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है, हर जगह स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो हेल्प होता है, असिस्टेंस होता है, उसकी भी सरकार की ओर से मदद की जाती है। तो जो व्यवसाय में जो उत्कृष्टता है, बिजनेस एक्सेलेंस है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए किस प्रकार की वित्तीय रणनीतियां अपनाई जाए?
2: बिजनेस एक्सेलेंस या

0: बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए फाइनेंशियल एक्सीलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आज के दिन में कई सारे सीएफओस, कई सारे सलाहकार मौजूद भी हैं। अगर मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगा उन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज से जो फुल टाइम सीएफओ नहीं भी रख सकते हैं, एटलीस्ट एक सलाहकार जरूर रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पास एक पहले डॉक्टर होता था हमारी हेल्थ देखने के लिए, उसी तरह हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए भी एक सलाहकार होना चाहिए। विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो विकसित भारत के लिए कई सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई हैं, जैसे गिफ्ट सिटी की बात कर सकते हैं जो गुजरात में है, वहां पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें टैक्स में काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं और फेमा के रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं। अब हमको काफी आसानी है हमको अगर हम बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहें और बाहर से कुछ हम कमाना चाहें तो फॉर इंडियन कंपनीज ऑल्सो बहुत ईजी हो गया है बाहर निवेश करना, आउट ऑफ कंट्री निवेश करना। और स्मॉल कंपनीज के लिए या किसी भी कंपनी के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूं और सैप, बेसिकली इसको अगर हम बड़ा करें वो का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्या करना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आर का मतलब होता है रिस्क, जैसे आपने बोला रिस्क, तो हमको लिखना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को पाने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, वो सब आपका रिस्क है। ए का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, जिसमें आपको अकाउंटेबल होना चाहिए कि एक एक डिपार्टमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है उन सबको पता हो। एस का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाइए जिसके हिसाब से आप वो रिस्क को पार कर सकें। और पी का मतलब होता है प्लान, अगर आप प्लान करके चलते हैं और एक एक चीज का जैसे हमने बताया तीन साल के अंदर में, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी कंपनी ब्रेक इवन कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी ला सकती है, कोई नई से नई कंपनी।
1: मुद्रा लोन तो ये किस प्रकार से मददगार साबित हो सकता है छोटी छोटी कंपनियों के लिए खासकर?
0: देखिए छोटी कंपनियों के लिए मुद्रा लोन एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है, ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। और जिस भी कंपनी को, ये छोटी कंपनी है जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा, ये उसका उपयोग ले सकते हैं। वैसे आज के दिन में हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हमारे पास मुद्रा लोन तो है ही, पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज, उनको कभी डाइल्यूशन का भी सोचना चाहिए। 5-7% डाइल्यूट करके अगर हम अच्छी इक्विटी ला सकें या अच्छे लोग ला सकें, प्रोफेशनल्स ला सकें, शायद अच्छा हो सके।
1: स्टार्टअप्स के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार की रणनीति बनाई जाती है, इन स्टार्टअप्स के लिए रणनीति, वित्तीय रणनीति कितना मायने रखती है?
0: स्टार्टअप्स के लिए कोई भी वित्त रणनीति या फिर बिजनेस एक्सीलेंस की बात करें या फाइनेंशियल एक्सीलेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप का जो भी निवेश कर रहे हैं स्टार्टअप में इनिशियली, तो इसीलिए करते हैं कि वो उससे फायदा ले सके, उससे 2-3 साल में उसका कुछ बेनिफिट ले सके और उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ सके। सब इसी के लिए करते हैं। आज के दिन में स्टार्टअप्स को दो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, कोई भी स्टार्टअप बिना टेक्नोलॉजी के ना चले और ना ही आप उसको चलाएं। टेक्नोलॉजी का सहयोग जरूर लें, अगर आपकी पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना है और ये देखना है कि आज हमारे यहाँ क्या परेशानी है, उस परेशानी को अगर आप दूर कर सकें यू कैन डू एनीथिंग। अगर मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करूं तो सी ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले जो हमारी इकोनॉमी थी और आज जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है इंडिया की, वो तो बहुत ज्यादा बदल गई है। और एआई की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जमीन आसमान का फर्क।
1: ऋषभ शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में और अपने वित्तीय मैनेजमेंट के विषय में, बिजनेस एक्सीलेंस किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से किया जाए, इन सबके विषय में आपने विस्तार से बातें की, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनिए वार्ता, वार्ताकार हैं अनुपमा गोरे।
3: आज का हमारा विषय है भारत की नवीनतम औद्योगिक नीतियाँ और विकास की वर्तमान स्थिति। आज का भारत केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि विश्व में तेजी से विकसित होती एक औद्योगिक और तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहा है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों, नई तकनीकों, डिजिटल परिवर्तन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता ने भारत की औद्योगिक नीतियों को भी नई दिशा और गति प्रदान की है। यदि हम भारत के औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति को समझना चाहें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि पिछले एक दशक में देश ने औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन और पड़ाव देखे हैं। भारत सरकार ने विनिर्माण, अवसंरचना, नवाचार, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक पर विशेष बल दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य और गंतव्य बनकर उभरा है। देश को औद्योगिक प्रगति का महत्व केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है बल्कि यह रोजगार, निर्यात, तकनीकी उन्नति और क्षेत्रीय विकास को भी प्रभावित करता है। भारत की नवीनतम औद्योगिक नीतियों में सबसे प्रमुख पहल आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा रही है। इस पहल का उद्देश्य देश को उत्पादन, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है।

कोविड 19 महामारी के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि अत्यधिक विदेशी निर्भरता किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए। इसका लक्ष्य केवल आयात को कम करना नहीं बल्कि भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना भी है। इसी दिशा में मेक इन इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और रेलवे जैसे अनेक क्षेत्रों में निवेश के अवसर बढ़े हैं। मोबाइल फोन निर्माण इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां भारत आज दुनिया के प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में गिना जाने लगा है। कई वैश्विक कंपनियों ने भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं, जिससे देश की क्षमता के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। भारत सरकार की एक और महत्वपूर्ण नीति है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, अर्थात PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस योजना का मूल उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना और वैश्विक प्रतियोगिता में भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाना है। इस नीति के तहत उन कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो भारत में उत्पादन बढ़ाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, दवा उद्योग, दूरसंचार और सौर ऊर्जा, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग जगत के अनेक क्षेत्रों को इससे लाभ मिला है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अब वह केवल उपभोक्ता बाजार ही नहीं बल्कि उत्पादक राष्ट्र के रूप में भी उभर रहा है। यदि हम आधुनिक औद्योगिक विकास की बात करें तो सेमीकंडक्टर उद्योग की चर्चा आवश्यक हो जाती है। आज की डिजिटल दुनिया में सेमीकंडक्टर को तकनीकी विकास की रीढ़ माना जाता है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण और रक्षा प्रणाली सभी में इसका उपयोग होता है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है ताकि देश में चिप निर्माण उद्योग विकसित किया जा सके। यह पहल भारत को उच्च तकनीकी विनिर्माण के क्षेत्र में नई पहचान देने की क्षमता रखती है। औद्योगिक विकास केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं होता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। सरकार ने MSME के लिए आसान ऋण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी सहायता और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में अनेक योजनाएं लागू की हैं। डिजिटलीकरण ने छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद की है। भारत की नवीनतम औद्योगिक नीति में हरित विकास और सतत औद्योगिकीकरण को भी प्रमुखता दी जा रही है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा बल्कि भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाएगा। भारत सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और माल परिवहन को अधिक कुशल बनाना है। जब उद्योगों को बेहतर परिवहन और ऊर्जा सुविधाएं मिलती हैं, तब उत्पादन लागत घटती है और निर्यात क्षमता बढ़ती है। आज भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व की कई कंपनियां उत्पादन के लिए नए विकल्प तलाश रही हैं और भारत इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक स्थिरता, विशाल उपभोक्ता बाजार, कुशल युवा जनसंख्या और डिजिटल प्रगति भारत को निवेश के लिए अनुकूल बनाते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में बढ़ोतरी इस विश्वास का प्रमाण है। हालांकि औद्योगिक विकास की इस यात्रा में कई चुनौतियां भी हैं। कौशल विकास की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, ऊर्जा लागत, पर्यावरणीय संतुलन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं उद्योगों के सामने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा कई छोटे उद्योग अभी भी आधुनिक तकनीक और वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थान मिलकर कौशल विकास और अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। औद्योगिक विकास में डिजिटल परिवर्तन की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और ऑटोमेशन उद्योगों की कार्यप्रणाली बदल रहे हैं। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान ने इस परिवर्तन को गति दी है। आज उद्योग केवल मशीनों पर आधारित नहीं है बल्कि डेटा और स्मार्ट तकनीक पर भी निर्भर होते जा रहे हैं। यह परिवर्तन उत्पादन को अधिक कुशल, सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बना रहा है। यदि वर्तमान स्थिति का समग्र मूल्यांकन करें तो कहा जा सकता है कि भारत

औद्योगिक विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश की नीतियां अब केवल उत्पादन वृद्धि तक सीमित नहीं बल्कि नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन, रोजगार और वैश्विक प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर लोकल टू ग्लोबल तक की यात्रा यह दर्शाती है कि भारत अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर स्थापित करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत के सामने अपार संभावनाएं हैं। यदि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, उद्योगों को पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहयोग और युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाएं, तो भारत विश्व का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सकता है। आने वाले वर्षों में हरित उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उद्योग और डिजिटल सेवाएं भारत के औद्योगिक विकास के प्रमुख स्तंभ बन सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत की नवीनतम औद्योगिक नीतियां देश को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप में सक्षम और वैश्विक प्रतियोगिता में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वर्तमान औद्योगिक स्थिति आशाजनक है, लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए निरंतर सुधार, नवाचार और समावेशी विकास की आवश्यकता होगी। यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर आगे बढ़े तो वह दिन दूर नहीं जब भारत केवल विश्व का सबसे बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रों में भी गिना जाएगा। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक सम्पन्न होता है। वाचक स्वर शालिनी मित्तल और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

0: 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को एकजुट होने और पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया था। 18 जून को हुई इस क्रांति के जोशीले भाषण ने आजादी की लड़ाई को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। गोवा की मुक्ति के लिए एक लंबा आंदोलन चला। अंततः 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहां आक्रमण कर इस क्षेत्र को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त करवाया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 18 जून है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1979 में आज ही के दिन अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा साल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर किए गए। 1999 में आज ही के दिन 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर हुए और लातविया में वाइके फ्रिब्रेमा को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। 2008 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की। 2008 में आज ही के दिन भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के बीच 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 2008 में आज ही के दिन फार्मा कंपनी रेनबैक्सी ने अमरीकी फार्मा कंपनी फाइजर के साथ पेटेंट विवाद को एक समझौते के तहत समाप्त किया। और अब समय है इतिहास याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है मिल्खा सिंह की। उनका जन्म 20 नवंबर 1930 को गोविंदपुरा पंजाब अविभाजित भारत में हुआ था। वे देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में एक जाना पहचाना नाम है। सन 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया था। मिल्खा सिंह ने 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद उसी साल टोक्यो में आयोजित हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1958 में ही इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उस समय आजाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय थे। पद्मश्री से सम्मानित मिल्खा सिंह का गौरवपूर्ण खेल जीवन सदैव युवा खिलाड़ियों को अधिक से अधिक शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेरणा देता है। उन्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं।
1: मैंने 1952 में दौड़ना शुरू किया। 70,000 किलोमीटर के करीब मैं दौड़ा होऊंगा, जो कि एक रिकॉर्ड है। जो आदमी कंपटीशन लड़ता है और जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन जाता, मैं समझता हूं कि उसे प्रैक्टिस जो है पूरे साल ही करनी चाहिए। कोई भी दिन जो है प्रैक्टिस जो है वो बंद नहीं करनी चाहिए।
2: आज तुम जैसे दौड़े हो, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा, तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी।
0: आज जन्मदिन है अरविंद स्वामी का। उनका जन्म 18 जून 1970 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और उद्यमी हैं, जो तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मणि रत्नम की फिल्म थलपति के साथ शुरुआत की। बाद में उन्होंने रोजा और बॉम्बे जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

0: शुभग्राही प्रोग्राम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और अब इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र से पहले कुछ और विशेष दिन के बारे में बात करते हैं। आज गोवा क्रांति दिवस है। यह दिवस 18 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। 18 जून गोवा की आजादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। 18 जून 1946

0: आज पुण्यतिथि है उस्ताद अली अकबर खां की। उनका जन्म 14 अप्रैल 1922 को शिवपुर गांव अविभाजित भारत में हुआ था। वे संगीतकार और सरोद वादक थे। उस्ताद खां पश्चिमी श्रोताओं के समक्ष भारतीय संगीत प्रस्तुत करने में सक्रिय रहे। इनके संगीत की जड़ें भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी उत्तरी परंपरा में जमी है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे।

0: वे ये आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनम्मार से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवाटेक समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तजारती मुआहिदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरब एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सफलत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरसपाक इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत के दायर करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है। तवक्को है कि जनरल मोदी भारत के फरोग पाते हुए जितराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी G7 समिट में कई मुफीद और नतीजा खेज मीटिंगें करने के बाद पेरिस पहुंचे हैं। इन मीटिंगों में उन्होंने हुक्मरानी और पॉलिसी साजी के अहम उमूर पर भारत का मौकिफ पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें आलमी खुशहाली के लिए तरक्की पजीर मुल्कों के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर देने का मौका भी मिला। G7 के आउटरीच इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने G7 मुल्कों भारत और आलमी खित्ते जुनूब की मुश्तरक ताकतों को यकजा करके राबते और तजारत को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क तजवीज किया। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों पर मगरब एशिया के बुहरान के तवील मुद्दती असरात पर तशवीश का इजहार किया। G7 समिट के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय यूनियन के आला रहनुमा उर्सुला फॉन डर लेयन जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी शामिल हैं। सर ट्रंप से मुलाकात के दौरान जनाब मोदी ने समंदरी अमले के अफराद की सलामती का मामला उठाया और जोर देकर कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे के नफाज के दौरान उनके तहफ्फुज को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पेरिस के दौरे से तवक्को है कि खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी अख्तरा और अवाम से अवाम के रबते के शोबों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। फ्रांस एक अरसे से भारत का स्ट्रेटेजिक शराकत दार रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा खलाई तहकीक न्यूक्लियर तक तवानाई और सकाफती तबादलों समेत कई शोबों में इश्तराक जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के पहले दिन मोहतरमा मुर्मू मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में रूहानी बिदारी के जरिए कबायली समाज को बाख्तियार बनाने से मुतालिक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM बैद्यनाथ राम कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड कानून साज असेंबली में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग हो रही है जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 अरकान असेंबली अपना वोट डालेंगे। फिलहाल हुकुमरान इत्तेहाद को 26 MLAs की हिमायत हासिल है जिनमें JMM कांग्रेस RGT और CPIML के अरकान असेंबली शामिल हैं। 24 MLA की हिमायत वाले अपोजिशन ने आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी की हिमायत की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामे इक्तिसादी और तजारती मुआहिदा CETA

साल 15 जुलाई से नाफिजुलामल होगा। तजारत और सनत की वजारत ने बताया है कि समाजी तहफ़ से मुतल्लिक यह वाहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC भी कहा जाता है, इस पर भी उसी दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत बरतानिया जाम इक्तिसादी और तजारती माहदे से भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को काबिल जिक्र तकवीत फराहम होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस माहदे से भारतीय किसानों, वर्करों, MSME, स्टार्टअप्स और इख्तराकारों के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे और विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत की शक्ल देने में मानखेज ताउन हासिल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेजिशियान ने वर्चुअल वसीले से 14 निकाती मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को खत्म करना, आमनाए हुरमुज को दोबारा खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक हतमी वाहिदे के लिए 60 रोजा मुजाकराती अमल शुरू करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांस के सर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस मुफाहमतनामे पर जाती तौर पर दस्तखत किए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकारी ने तस्दीक की है कि मुफाहमतनामे के मतन को हतमी शक्ल देकर दोनों फरीकों की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। इस मुआहदे के तहत अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी और मुतल्लिका पाबंदियों को खत्म करने का अमल शुरू करेगा, जबकि ईरान इब्तदाई 60 रोजा मुद्दत के लिए आबनाए हुरमुज से तजारती जहाजों की महफूज और बिना मुआवजा आमद और रफ्त को यकीनी बनाएगा। आयुष की मरकजी वजारत ने कहा है कि इस महीने की 21 तारीख को मनाए जाने वाले योगा के आलमी दिन की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर 1,70,000 से ज्यादा मुंतजमीन ने योगा संगम पोर्टल पर अपने प्रोग्रामों का इंदराज कराया है। वजारत ने कहा कि लोगों का यह जोश व खरोश मुल्क भर में योगा के पैगाम को फरोग देने में इदारों, तंजीमों और कम्युनिटीज की बढ़ती हुई शिरकत की अक्कासी करता है। इस पहल की अहमियत को उजागर करते हुए आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने कहा कि योगा संगम फलाह बहबूद के जरिए इत्तेहाद का जश्न है। सहगीर खातून मामनवाज पुष्पा महतो ने 21 साल के बाद मगरी बंगाल में कोलकाता पुलिस के सामने खुशपुर्दगी कर दी है। उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। झारखंड के सरांदा जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरक कार्रवाई और मरकजी हुकूमत की मामनवाजों से पाक भारत मुहिम के पढ़ते हुए दबाव की वजह से उसने तशद्दुद का रास्ता तर्क करने का फैसला किया। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर अजय नंदा की मौजूदगी में उसकी ये खुशपुर्दगी मगरबी बंगाल और झारखंड दोनों रियासतों की पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। वजीर आजम मोदी ने मारूफ बौद्ध स्कॉलर रॉबर्ट एफ थुरमान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने जनाब थुरमान की खिदमत ने बौद्ध फलसफे को आलमी सतह पर शोहरत बख्शी और मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान मुफाहमत के मजबूत सिलसिलों को उस्तवार करने में मदद की। वजीर आजम ने कुछ साल पहले न्यूयॉर्क शहर में जनाब थुरमान से अपनी खुशगवार मुलाकातों को याद करते हुए कहा कि उनकी जनाब थुरमान से बहुत अच्छी गुफ्तगु रही थी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज शिमाल मशरकी भारत और जैली हिमालयी मगरबी बंगाल के शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरला, माए, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान लखनऊ में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी फ्रांस के सर इमैनुअल मैक्रों के हमरा पेरिस में वीवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग हो रही है।

0: اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام چرچا کا وشے ہے.
1: چرچا کا وشے ہے. یہ آکاشوانی ہے. चर्चा का विषय है. कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव.
2: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है. एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था. लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी. लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है. अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है. वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है. रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है. निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है. भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं. हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं. आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
3: धन्यवाद.
4: धन्यवाद. जय हिंद.
2: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है. एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कलपुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है.
4: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का. पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं. ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है. जो डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, तैयारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका बरोबर ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ

0: नहीं चलना, अकेडमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना। तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर होते थे, उन प्रोसीजर से जिसे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है, और खासकर वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, यानी कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, इस प्रकार अपने बनाए हुए रिजार्ज ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर्स सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक किया, उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना कुछ करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इसे बनाया है। तो ये जो एक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई। और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, और उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा। और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड भी तब तक 43,000 करोड़, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 करोड़ है, प्राइवेट प्रोडक्शन। इमेजिन 1,78,000 करोड़ में प्राइवेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज़ द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब जो एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास है, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हुआ करते थे, इम्पोर्टर अभी हम रहेंगे, 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कम्प्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कम्प्लीट नहीं हो जाएंगे, हम इम्पोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े स्टेम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ, कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है, यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए तो जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का

0: बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाया उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई है और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिला हो, एलएनटी हो, कल्याणी डॉलर हो, जो अशोक लेलैंड हो, अडानी अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी भी 178,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इस इज ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है। और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात करें, सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो। तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने बनाया हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसका मेंटेनेंस सप्लाई उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड है, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, आईआईटीज है, वहां के बच्चे बड़े होशियार है, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप से वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और भारत के अंदर ही अपने हम यहाँ, जैसे आप कह रहे हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कभी एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स सो इजी, ये बहुत डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्ट्रेंथ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से टीजीएस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा दो साल हो गए, दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए, क्यों? उनके भरोसा, उन्होंने कहा हमने तो फैक्ट्री में बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसलिए मैं कहा अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर एमसीए प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो भी वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत तरक्की है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब चार गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है आईएनएस विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में ही बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी एसएसबीएन जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, आईएनएस अरिहंत और उसके टीम आगे की श्रेणियां बना चुके हैं, ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां पर जंग छिड़ी हुई है। तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी यूएवी बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इम्पोर्ट करने की बजाय एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान

0: के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि पांचवीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में तीन कंपनियों को तीन कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनी को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बियां हम बनाते हैं मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी और उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर B-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की दो श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था 8-10 साल हमें पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडाप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पर पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दिए वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करके ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। इसके आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें जरूर, चाहे स्टार्टअप के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल सिस्टम हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास सोलग्राफिक देते बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप को इंक्रीज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस तो चलता रहना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम ये हमारे लिए है इधर आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग के पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है और वो उस बातें का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब बहुत अच्छा है। तो भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है तो दोनों तरीके के है, हमारे यहाँ तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है। तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो भारत के अंदर करते हैं, इसमें रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस करेगी वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए UAVs को मद्देनजर रखते हुए न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाहे स्पेस है नेविगेशनल है जो जियोस्पेशियल ऑब्जेक्ट हर एक चीज के साथ मिलकर के अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है ये हम भारत के अंदर बनाए और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नेतृत्व रखी तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आधे दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारी शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब जो आकाशवाणी के श्रोता

0: दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की। वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
1: इसके कई सारे आंसर हैं। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी। और सबसे बड़ी बात, अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सबकी जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सबकी जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए। और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल जॉब है, हाईली स्किल जॉब है। कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल जॉब होगा वो। जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया। साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सब कुछ, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
0: जी कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
2: अब तो मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो हमें सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन। कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उनकी तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर वन GDP वाला अगर $22 ट्रिलियन का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 ट्रिलियन का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचते हैं यह हमारा देश है और उस देश को यकीन नहीं है, शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने की लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के चक्के में उन्होंने मारी है और अब मधुमक्खियां जो है दिनभरा में उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आप देखिए कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 फटाफट कौन सा जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया 4.5 जनरेशन, फिर 6th जनरेशन, फिर तो आप देखते किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जब हम भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस तरह जो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAV है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेटप्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स है, जूते है, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोजिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, भारत देशों के साथ मिलता है, भारत के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है, जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है या नहीं, कहीं हुए आपका कपड़े

0: बहुत अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी। मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की और जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मकाम पर जाना चाहिए भारत को, वो मकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है, तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के जो पोते मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पर फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति में जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिससे तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाइप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन की, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरा नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई है उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहां बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहां कि आपने ये बनाना, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर। आप खुद ही टीचर हो तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे, 20 साल लगे, लगते हैं इतने, बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे, अब जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे, जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D वेरी स्ट्रांग, R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा कि ये हमारा है और हमने इसको आगे दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है जो हम ब्राइट फ्यूचर अगले 5 साल के अंदर, एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपने जो इंटरनल जो अपने डिफेंस प्रोडक्शन जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूं ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की यही यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

आशु भोसले की आवाज में ये नगमा भी अपने सच्चा झूठा फिल्म से सुना। अब सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म है गुमनाम।

हम जफी की आवाज में ये नगमा था आया सावन झूमके फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर है लता मंगेशकर को, सुनिए फिल्म है तकदीर।

मेरा नाम नूरजहां है, नूरजहां। ये नाम मुझे कभी पसंद नहीं आया। जिंदगी का एक लंबा सफर गुजरने के बाद आज मुझे आपा की याद आ रही है। आपा, उन दिनों घर में तसद्दुक भाई आए हुए थे, खलेरे भाई, फिर बिट्टू था, छोटा सा शरारती बच्चा। और उस दिन भी बारिश हो रही है।

0: हाँ बिट्टू। अच्छा बोल, तुझे क्या पसंद है?
1: मुझे तो सब पसंद है, खेल पसंद है, नए कपड़े पसंद है।
2: बस खेल पसंद है, पढ़ाई में तो जीरो है। और वाह, क्या नंबर आते हैं इम्तिहान में, वाह।
0: आए अब ज्यादा ना छेड़ो मेरे बिट्टू को। हाँ, मेरा बिट्टू बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा, क्यों बिट्टू?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, बिल्कुल भाईजान की तरह।
2: भाईजान क्यों, आपा क्यों नहीं? आपा को देख कितना काम करती हैं। अच्छा बोल, तू ब्याह किससे करेगा?
1: अम्मी अम्मी, मैं तो ब्याह करूँगा।
0: अच्छा, अभी से ब्याह करेगा? बड़ा आया ब्याह करने वाला, मगर किससे करेगा ब्याह? आपा से।
1: आपा से कौन ब्याह करेगा?
0: क्यों, आपा में क्या कमी है?
1: हम तो साजू बाजू से ब्याह करेंगे।
0: तू पागल, आपा को देख, आपा में क्या कमी है?
1: मैं बताऊँ आपा में क्या कमी है?
0: हाँ बता।
3: ये आग जल रही है ना, और वो उपले हैं, है ना?
2: उपला तो है, तू कहना क्या चाहता है?
0: हाँ बता, ये उपला कहाँ से ले आया?
1: बिल्कुल ऐसी है आपा।
0: बिट्टू तू पागल है, और तेरी साजोबाजी कैसी है?
1: वो तो बिजली का बल्ब है, बल्ब।
2: बड़ा आया 30 मार था। वो ले, तसद्दुक भाई आ गए हैं, अब उनसे पूछ के आपा कैसी है।
4: किसकी बातें हो रही है, ये बिट्टू क्या कह रहा है?
2: तसद्दुक भाई, जरा इससे आपा के बारे में पूछिए।
4: बिट्टू मियाँ, जरा मैं भी सुनूं आप क्या फरमा रहे थे।
1: मैं बताऊं?
0: तू कुछ नहीं बताएगा, तू मेरे साथ चल।
2: अरे रह दे दो ना आपा,
4: अब रोल भी लेने दीजिए।
0: जाने दो बेटा, ये बिट्टू है तो बदमाश, मगर सबका दिल लगाता है। तुम्हारा दिल भी बहल जाता है। मैं कहती हूँ घर में कोई तो है जो सबको खुश रखता है।
4: सो तो है, सो तो है।

वह सारा दिन घर के काम में मसरूफ रहती और कभी अपनी जुबान से उफ तक नहीं करती। अब सोचती हूं आपा के दिल में कितनी गहराई थी। आपा चुप चुप सारा तमाशा देखती थी मगर जुबान से कुछ नहीं कहती थी।

0: अरे भाई, अभी तक चाय क्यों नहीं आई?
1: आपा, मुझे देर हो रही है।
2: आपा, मुझे दलिया चाहिए।
1: आपा, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: अरे देख नहीं रही, बिट्टू के लिए दलिया तैयार कर रही हूँ। अब्बा को चाय देनी है, फिर अम्मी को खाना देना है। कितनी थक जाती है अम्मी।

0: कहानी कैसे शुरू हुई नहीं जानती। पड़ोस में एक मकान था। मकान हमेशा कहकहों से गूंजता रहता था। अब्बा उनके घर से आने वाली आवाजों को गौर से सुनते, फिर अम्मा से सवाल करते।
1: सुन रही हो जी?
2: क्या है
1: ये आवाजें सुन रही हो? कितनी रौनक है साहिरा के घर में।
2: वाह कमाल है, अब यहाँ बैठे बैठे आपको साहिरा के घर की रौनक भी दिखाई देने लगी।
1: तुम समझोगी नहीं, आवाजें सुनो जैसे बहुत से बर्तन हो।
2: बहुत से बर्तन हो तो बजने लगते हैं। आप क्या उस तरफ कान लगाए बर्तन की आवाज सुन रहे हैं?
1: अरे तुम समझी नहीं, माशाल्लाह अपने घर में भी लड़की है। जिस घर में लड़की हो बर्तन बजने लगते हैं और खबर हो जाती है कि फला घर में लड़की है।
2: आपके कहने का मतलब क्या है?
1: माशाल्लाह एक हमारी साजदा है, क्या मजान आवाज बाहर चली जाए।
2: हाँ ये तो है, मेरी साजदा बेटी के तो मुंह में मानो जुबान ही नहीं, खामोश रहती है। पता नहीं क्या सोचती रहती है।
1: हाँ बस अब उसके हाथ जल्दी से पीले हो जाए। क्या कहती हो तुम?
2: जी मैं भी यही सोचती हूँ, आगे अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी में किसको दखल है।

कितना अरसा बीत गया, मुझे आपा की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब्बा सारा दिन हुक्का गुड़गुड़ाकर आपा की तारीफ किया करते। सिर्फ तसद्दुक भाई थे जिनसे बातें करते हुए मजा आता था। बेसुरे थे, आपा को देखकर अक्सर गुनगुनाने लगते थे। आपा उनको गाते देखकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती थी। बिट्टू पास में होता तो झूठ मूठ का उसे थप्पड़ मार देती।

0: ओफो, अब बंद भी कीजिए तसद्दुक भाई।
1: क्यों क्यों?
0: गले को ज्यादा तकलीफ दी तो गला बैठ जाएगा। वैसे किसी ने आपको बताया नहीं कि आप कितने बेसुरे हैं?
2: अरे अच्छा तो गा रहे हैं।
3: क्या, मेरा तो सर दर्द करने लगा और आप कह रहे हैं कि अच्छा गा रहे हैं।
2: बिट्टू तू सिर्फ चुप नहीं रहा जाता।
3: लो अब मैंने क्या किया,

0: आओ ना, वापस आओ।
1: नहीं।
0: अरे आओ ना। हाँ, तो उस दिन तुम ब्याह की बात कर रहे थे।
2: बिट्टू की छोड़िए, आप किससे ब्याह करेंगे?
0: मैं, जो हमसे अंग्रेजी में बात करेगा।
2: वाह, क्या बात है, अंग्रेजी में?
0: हाँ, जो किताबें पढ़ता हो, शतरंज खेलता हो, कैरम खेलता हो और चिड़िया खेलता हो।
1: चिड़िया कैसे खेलते हैं?
0: अरे वो गोल गोल गेंद, चिड़िया नहीं जानता? अच्छा तू क्रिकेट समझ ले। और सुन, मैं तो उससे ब्याह करूंगा जो मजेदार खाना बनाती हो।
1: हम तो साजू बाजी से ब्याह करेंगे।
3: तू चुप कर।
1: और मैं ये भी जानता हूँ।
0: क्या जानता है?
1: कि तुम पापा से ब्याह करोगे।

0: बिट्टू ने गलत नहीं कहा था। अब ये छुपन छुपैया का खेल समझ में आने लगा था। आपा खामोशी से तसद्दुक भाई की हर बात सुनती थी। मैं अब सोचती हूं ये क्या था, जिंदगी में मोहब्बत के बावजूद इतनी खामोशी क्यों होती है, दुनिया एक लम्हे में कैसे तब्दील हो जाती है। लेकिन तसद्दुक भाई के आने से आपा की जिंदगी में कुछ तो तूफान आया था।
1: बिट्टू मिया, तुम्हारी आपा फिरनी बनाती है तो पूरी तरह शक्कर भी नहीं डालती।
2: अब्बा कहते हैं फिरनी में मीठा कम होना चाहिए।
1: अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब वो फिरनी अब्बा के लिए बनती है हमारे लिए नहीं।
3: आपके लिए क्यों बनाएंगी?
1: अरे मेहमान हूँ मैं।
3: हाँ, मेहमान 3 दिन में चले जाते हैं।
1: मैं आपकी आपा से कहता हूँ कि नूरजहाँ मुझे जाने को कह रही है।
3: हाँ हाँ जाइए जाइए, कहिए आपकी मर्जी, मैं भी तो देखूँ आपा से कैसे बात करते हैं आप।
2: मैं आपा को फिरने वाली बात बताने जा रहा हूँ।
1: अरे ठहर ठहर, पूरा ढिंढोरा है, कसम से यार तेरी दोस्ती बड़ी महंगी पड़ती है, अरे समझाओ इसे जहीना।
3: है आपने तो मेरा नाम ही बदल दिया, ऐसे जहीना ये नाम मुझे पसंद है।
1: तुम्हारा नाम सुनकर मुझे लगता था जैसे कोई बासी रोटी खा रहा हो। ये बिट्टू मियां कहाँ भाग गए?
3: वो आपा के पास आपकी चुगली करने गया है।
1: अच्छा एक बात बताओ जहीना, तुमने बर्नार्ड शॉ पढ़ा है?
3: नहीं।
1: तुम्हारी आपा ने हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी है?
3: मैं क्या जानू, आप खुद ही पूछ लीजिए ना।
1: एक बात कहूँ, तुम्हारी आपा को मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए थी।
3: मुझे भी एहसास है, लेकिन आपा पर घर की जिम्मेदारी भी तो है। आपा को जिंदगी में बहुत समझौते करने पड़े हैं और अब तक आपा जिंदगी से समझौता किए ही जा रही हैं।
1: जिंदगी से इतने समझौते भी ठीक नहीं।
0: अब्बा की फिरनी में मिठास बढ़ गई। आपा कहीं से हार्ट ब्रेक हाउस भी ले आई। ये किताब अपनी सिरहानी रखती थी, मुझे भी नहीं दिखाती थी। रात में जब उन्हें यकीन हो जाता कि मैं सो रही हूं, तब किताब निकालकर पढ़ना शुरू करती थी। आपा, ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है?
4: दिल तोड़ने वाला घर।
0: तौबा, ऐसा भी कोई घर होता है?
4: मैं क्या जानू।
0: सुना है दिल टूटने की आवाज नहीं होती।
4: दिल एक बार टूट जाए तो नहीं जुड़ता, और इतनी खामोशी से टूटता है कि पता भी नहीं चलता।
0: आपा उस वक्त तक तसद्दुक भाई के लिए सब कुछ करती रही जब तक इस कहानी में साजोबाजी की एंट्री नहीं हुई थी। साजोबाजी यानी मेरी खालाजाद बहन।

0: आपा, आप ये क्या बना रही हैं? अरे आपा, सारा दिन किचन में खुद को झोंके रखती हैं। देखिए ना, चेहरा भी सिया पड़ गया है।
1: अरे वाह, ये फिरनी कितने मजे की है
0: और ये सलाद किस कदर जायकेदार।
2: तुमने चखा भी नहीं और तारीफें करने लगी।
0: शक्ल बता रही है आपा कि लाजवाब है। चखूंगी बाद में। लाइए जरा तसद्दुक भाई को भी खिलाकर देखूं।
2: तुम ले जाओगी?
0: क्यों, आपको कोई शिकायत है?
2: नहीं नहीं, शिकायत क्यों होगी।
0: फिर लाइए ना, मैं उनका मुंह भी मीठा करती हूँ और सलाद भी खिलाती हूँ। देखते हैं तसद्दुक भाई क्या कहते हैं।
2: ठीक है, क्या वो आए हुए हैं?
0: लो, सारे घर में गुल मचा है और आपा को खबर ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें फिरने खिलाकर आती हूँ।

0: बेईमानी कर रहे हैं।
1: अरे चल बढ़ाया बेईमान कहने वाला,
0: मैं आपसे आपकी शिकायत कर दूंगा।
1: तू सच में ढिंडोरा है।
2: ओहो, तो यहाँ कैरम खेला जा रहा है।
1: आप भी तशरीफ लाइए, हाथ की सफाई दिखाइए।
2: ना, मैं तो ना खेलूं।
1: क्यों क्यों?
2: मैं तो आपको कुछ खिलाने लाई हूँ।
1: अच्छा?
2: चलो बिट्टू, खेल बहुत हो गया, अब बाहर जाकर खेलो।
1: आपकी निगाह खास का मतलब पूछ सकता हूँ?
2: पहले ये फिरने खाइए, आपके लिए बतौर खास मैंने बनाई है।
1: लाइए लाइए लाइए लाइए लाइए। आहा, वल्ला वल्ला, लाजवाब, जायका ही अलग।
2: आपको तो आपा के हाथ की फिरने पसंद थी।
1: अरे पसंद बदलती भी है। अच्छा सुनो, आप जरा ये सलाद का जायका लूं।
2: हाँ रुकिए, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, ये भी लाजवाब। अरे माशाल्लाह, आप तो खाना बनाने के फन में माहिर हैं।
2: सब अम्मी जान की तरबियत है। मेरा तो जी चाहता है आपको हमेशा इसी तरह अपने हाथों से खिलाती रहूं। दरवाजे पर कौन है?

का माहौल बदला, जिंदगी बदली। पापा की जिंदगी में साजोबाजी के आने से एक नया तूफान खड़ा हुआ था। इस तूफान को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैं इस खामोश तूफान से वाकिफ थी।

0: अरे साजो,
1: ये क्या पढ़ रही हो?
2: अरे आप, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। ये बर्नार्ड शॉ की किताब है, हार्ट ब्रेक हाउस।
1: वाह, तुमको भी पसंद है?
2: मुझे तो बहुत पसंद है। दरअसल मैं अंदर से आर्टिस्ट हूँ, लिटरेचर मेरा जुनून है।
1: अरे ये तो कमाल हो गया, तुम्हारे तमाम शौक मेरी तरह हैं।
2: अब मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन सोचती हूँ कि लोग लिटरेचर के बगैर जिंदा कैसे रहते हैं।
1: बिल्कुल सही, अदब हमें जिंदगी देता है, अदब हमारी जिंदगी को संवारता है।
2: जी।
1: वाह वाह, अरे आप पहले कहाँ थी, पहले क्यों नहीं मिली?
2: शुक्र मनाइए, अब तो मिल गई ना।

0: आपा खो गई थी, आपा कहां चली गई थी कुछ मालूम नहीं। वो इसी घर में थी हमारे साथ, लेकिन अचानक झूठ के पर लग गए थे और एक मासूम फरिश्ता खामोशी के पिंजरे में पहले से कहीं ज्यादा उदास हो गया था। मैंने पहली बार आपा को रोते हुए देखा था। अरे क्या बात है आपा?
1: हाँ, कुछ कुछ नहीं नूर।
0: बिट्टू ने कुछ किया क्या?
1: नहीं रे, बस यूं ही आंखों में पानी आ गया।
0: ये किताब यहाँ कैसे आ गई? हार्टब्रेक हाउस?
1: मैं क्या जानू नूर, किताबें हैं, लफ्जों का एतबार नहीं होता। लफ्ज कहीं खो जाते हैं चुपके से, और जब खो जाते हैं तो ख्वाहिशें भी इनके साथ गुम हो जाती हैं। सोचती हूँ नूर, ये मसला दुनिया के लाखों इंसानों का है, ये मसला किसी एक का नहीं। कभी ये भी सोचती हूँ कि तकदीर भी क्या चीज है नूर, सारा खेल तकदीर का है।
0: आपने लफ्जों का एतबार किया आपा?
1: ये क्या सवाल लेकर बैठ गई नूर, लफ्जों का एतबार तो हमेशा करना पड़ता है ना, मगर नाचीज इंसान लफ्जों की अहमियत समझता कहाँ है।
2: अरे कहाँ जा रहा है? बिल्कुल बाहर निकल लो, छोड़ दो। अरे अरे क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पागल
0: है? अरे ये शोर कैसा है?
1: पता नहीं,
0: अब बिट्टू और तसतुक भाई लगते हैं। फिर तो साजो बाजे भी होंगी।
1: साजो के आने से घर में रौनक बढ़ गई है।
0: मैं नहीं जानती। अरे ये बिट्टू भागा हो क्यों? अरे अरे बिट्टू,
3: क्या
0: बोल रहा है?
3: दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं।
0: क्या?
1: चलो तुम इधर आके बैठो, बहुत शरारती हो गए हो, कुछ भी बोल देते हो।

साजो बाजी और तसद्दुक भाई का ब्याह हो गया। दोनों बाहर चले गए। आपा के ऊपर क्या गुजरी नहीं जानती। आपा तो आपा थी, बड़े से बड़ा गम खामोशी से पी जाती थी। जिंदगी भर यही तो करती आई थी आपा। उस दिन सुना तसद्दुक भाई और साजो बाजी आने वाले हैं। आपा टूट गई थी, लेकिन अपनी चुभन को किसी को दिखाना उन्हें गवारा नहीं था।

0: एक बात पूछूं आपा?
1: क्या नहीं नूर,
0: क्या आपको कोई अफसोस है?
1: किस बारे में?
0: आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या पूछ रही हूँ।
1: मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं कभी कोई ख्वाब नहीं देखती। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएगी कौन जानता है नूर। और हाँ, उस दिन मैंने कहा था ना, जिंदगी में एक चीज तकदीर भी होती है। मैं तकदीर का मातम नहीं करती। मेरी तकदीर मुझे कहाँ ले जाएगी नहीं जानती। और जो चीज मेरे बस में नहीं उसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ।
0: आप ग्रेट है। इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। आपा, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं।

0: अरे वाह बिट्टू मिया,
1: तुम तो माशाल्लाह बहुत बदल गए। अब क्या खेल पसंद है?
2: मुझे मुझे तो क्रिकेट पसंद है।
1: अच्छा, और शादी किससे करोगे?
2: साजू बाजी को तो आप ले गए, मैं खेलने जा रहा हूँ।
1: अच्छा जाइए जाइए जाइए। मोर जहाँ, कुछ आपने महसूस किया? इस घर में वो पहले वाली रौनक नहीं रही।
3: रौनक तो आप ले गए, आप तो वैसे भी बहुत कम बोलती हैं।
1: ठीक कहा आपने। एक बात सोच रहा था, याद है जब यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था, एक बार बिट्टू ने हंसते हुए कहा था कि वो साजो से शादी करेगा। हमने पूछा था आपा से क्यों नहीं।
3: हाँ, कैसे भूल सकती हूं। बिट्टू ने कहा था आपा तो उपले जैसी हैं, लेकिन आप पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हैं भाईजान?
1: इसलिए कि उपलों में भी आग रह जाती है। एक छोटी सी चिंगारी कई उपलों के दरमियान दबी रह जाती है।

अभी आपने जनाब मुमताज मुफ्ती की कहानी आपा का रेडियाई अक्स सुना। तरतीबकार थे मुशर्रफ आलम सौकी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे अंजलि, शारदा गुप्ता, डॉ अश्वनी कुमार, रामगोपाल, सुनीता शाहबादी और शोभना भारद्वाज। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन सैयद दानिश असगर जैदी।

0: अब आपने ड्रामा सुना उनवान था आपा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमरा पेरिस में वीवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बरादरी से खिताब भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती माहदा इस साल 15 जुलाई से नाफिज उलमल होगा। इंसानी हकूक से मुतालिक बैन अलाकवामी तंजीम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरम तरीके से मुजाहरा करने वाले अफराद पर पुरतशद्दुद कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। फुटबॉल में फीफा आलमी कप में ग्रुप एल के एक मैच में इंग्लैंड ने क्रोशिया को 2-4 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। और खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में ग्रुप ए के एक मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेन्द्र मोदी भारत फ्रांस इक्तिसादी और सनअती तआवुन को बढ़ाने की कोशिशों के हिस्से

के तौर पर आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं के साथ सिलसिलेवार आला स्तरीय मीटिंगें करने वाले हैं। वजीर आजम सेंट गोबेन के चेयरमैन और सीईओ बेनवर्ट बाजिन के साथ बातचीत शुरू करेंगे, जिसमें माहौलियात के लिए साजगार मैन्युफैक्चरिंग और पायदार बुनियादी ढांचे पर खास तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम स्मार्ट मोबिलिटी और रेल जदीदकारी में तआवुन का जायजा लेने के लिए अल्स्टोम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। टेक्नोलॉजी के शोबे में वजीर आजम मिस्ट्रल एआई के शरीक बानी और सीईओ अर्थर मेंश से मसनूई जहानत इख्तरा और जिम्मेदाराना एआई हुक्मरानी के बारे में बातचीत करेंगे। वो सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोडोल्फ सादी के साथ भी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि इस बातचीत में बहरी तिजारत, बंदरगाहों की जदीदकारी, आलमी मजबूत सप्लाई चेन्स पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इन मीटिंगों से भारत और फ्रांस के दरमियान बढ़ती हुई इक्तिसादी साझेदारी की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पेरिस में वजीर आजम मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमरा वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्को है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ्रांस के शहर एवियान में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि भारत और यूक्रेन हाल ही में वसी पैमाने पर इश्तराक करते रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया और तिजारती ताल्लुकात को जंग से पहले के पैमाने पर ले जाने की जरूरत पर इत्तफाक किया। वजीर आजम ने यह भी कहा कि भारत इंसानी अकदार को बालातर रखते हुए हमेशा अमन की हिमायत करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान वर्चुअल वसीले से 14 निकाती मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को खत्म करना, अबनई हरमूज को दोबारा खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक हतमी मुआहदे के लिए 60 रोजा मुजाकराती अमल शुरू करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस मुफाहमत नामे पर ज़ाती तौर पर दस्तखत किए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि मुफाहमत नामे के मतन को हतमी शक्ल देकर दोनों फरीकों की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। इस मुआहदे के तहत अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी और मुतालिका पाबंदियों को खत्म करने का अमल शुरू करेगा, जबकि ईरान इब्तदाई 60 रोजा मुद्दत के लिए आबनई हरमूज से तिजारती जहाजों की महफूज और बिला मुआवजा आमद रफ्त को यकीनी बनाएगा। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदा CETA इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। तजारत और सनत की वजारत ने बताया है कि समाजी तहफ़ से मुतालिक ये मुआहदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC भी कहा जाता है, इस पर भी उसी दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे से भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को काबिल जिक्र तकवीत मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय किसानों, वर्करों, MSME, स्टार्टअप्स और इख्तराकारों के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे और विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत की शक्ल देने में मानी खेज तआवुन मिलेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आयुष की मरकजी वजारत ने कहा है कि इस महीने की 21 तारीख को मनाए जाने वाले योग के आलमी दिन की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर 1.7 लाख से ज्यादा मुंतजमीन ने योगा संगम पोर्टल पर अपने प्रोग्रामों का इंदिराज कराया है। वजारत ने कहा कि लोगों का यह पुरजोश रद्दअमल मुल्कभर में योग के पैगाम को फरोग देने में इदारों, तंजीमों और कम्युनिटीज की बढ़ती हुई शिरकत की अक्कासी करता है। इस पहल की अहमियत को उजागर करते हुए आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने कहा कि योगा संगम
فلاح و بہبود کے ذریعے اتحاد کا

0: प्रश्न है, इंसानी हकूक की एक सरकर्दा बैन अल्कवामी तंजीम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरअमन मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी हुकाम की पुरतशद्दुद कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। इस माह की 8 से 16 तारीख के दरमियान की गई इस कार्रवाई में 32 से ज्यादा शहरियों के हलाक होने की इत्तला है। इंसानी हकूक के बैन अल्कवामी फाउंडेशन IHRF का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद पूरे खत्ते में इंटरनेट और मोबाइल खिदमात मुअत्तल कर दी गई। इस इदारे का यह भी कहना है कि वफाकी नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया और 100 से ज्यादा कारकुनान और लीडरों को जबरन गिरफ्तार किया गया। इदारे ने इस खत्ते में बाहर से आने वाले लोगों के सफर पर पाबंदी लगाए जाने का भी हवाला दिया। IHRF ने पाकिस्तानी हुकाम से अपील की है कि वो पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के बेजा इस्तेमाल पर फौरी तौर पर रोक लगाएं। IHRF ने शहरियों की मौत के तमाम वाकयात की आजादाना और गैर जानबदाराना तहकीकात के साथ साथ बैन अल-अक़वामी मुशाहिदीन को मुकम्मल रसाई फराहम किए जाने और ताकत के बेजा इस्तेमाल के मुर्तकिब अफराद की जवाबदेही तय करने की भी अपील की। फीफा आलमी कप में अमरीका के अर्लिंगटन में वाकई डल्लास स्टेडियम में ग्रुप एल के एक मैच में इंग्लैंड ने क्रोशिया को 2-4 गोल से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 12वें और 42वें मिनट में पेनल्टी के जरिए 2 गोल किए। इसके बाद क्रोशिया के खिलाड़ी मार्टिन बटोरिना ने 36वें मिनट में, जबकि पीटर मूसा ने हाफ टाइम से महज कुछ पहले 45वें मिनट में गोल करके मैच बराबर कर दिया। ब्रेक के बाद इंग्लैंड ने खेल पर अपना कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। जोड बेलिंगम ने 47वें मिनट में, जबकि मार्कस रैशफोर्ड ने 85वें मिनट में गोल करके इंग्लैंड को फतह दिलाई। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में कल रात लीड्स के हेडिंगली में खेले गए ग्रुप ए के एक मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने स्मृति मंधाना के 74 रन और शिफाली वर्मा के 55 रन की मदद से मुकर्रा 20 ओवर्स में 200 रन बनाए। स्मृति मंधाना को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान लखनऊ में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बरादरी से खिताब भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती माहदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुलअमल होगा। इंसानी हकूक की बैन अल-अक़वामी तंजीम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से मुजाहरा करने वाले अफराद पर पुरतशद्दुद कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब पेश है फिल्मी दोगनों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आंधी फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे। अगली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले को सुनिए फिल्म है कारवां।

ठाकुर और उषा खन्ना की आवाजों में कंगन फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को, फिल्म है अनुराग।

मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था संतान फिल्म से। अब सुनिए किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर को फिल्म है चरित्रहीन।

0: बॉबी फिल्म का नगमा आपने सुना, आवाजें थी लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। हमारा ये प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है बिलग्राम।
1: बरसगीर की बाद मुमताज इन्हीं शख्सियतों के नाम के साथ दिलगरामी का लफ्ज देखकर नई नस्ल के अफराद यकीनन सोचते होंगे कि लफ्ज दिलगरामी क्यों इस्तेमाल होता है। दरअसल ये लफ्ज दिलग्राम से नस्बत को जाहिर करता है। दिलग्राम हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है। ऐसे उत्तर से ही ये छोटा सा कस्बा इल्मी और तहजीबी सरगर्मियों का महवर रहा है। इस कस्बे की तारीख तो बहुत पुरानी है, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में दिलग्राम जदीद तर इल्मी तहरीकात का महवर बना रहा है। मीर गुलाम अली आजाद दिलग्रामी ने लिखा है कि दिलग्राम के सूफिया ने सबसे पहले ख्वाजा अलाउद्दीन और सैयद मोहम्मद सोहरा का नाम आता है। ये दोनों हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काशी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मरीद थे। इन दोनों बुजुर्गों के मजारात दिलग्राम में मौजूद हैं। दिलग्राम 15वीं सदी तक दिल्ली की हुकूमत के जेर इंतजाम रहा। बाद में ये जौनपुर के शर्ती बादशाहों के जेर नजीर रहा। अकबर ने दिलग्राम को लखनऊ और खैराबाद के इलाकों में शामिल किया। आईन अकबरी में अबुल फजल ने दिलग्राम का तस्करा किया है, जिसे अंदाजा होता है कि छोटा सा कस्बा इल्म फजल, शेर व अदब, मौसीकी और फनून लतीफा का मरकज था। 18वीं सदी तक दिलग्राम अपने उलमा, सूफिया और असातज़ा की वजह से ऐसा मकबूल हो चुका था कि दूर दराज के इलाकों से तालिबान इल्म दिलग्राम पहुंचते थे। डॉक्टर निखारी में फारूखी ने दिलग्राम की बाज अहम इल्मी शख्सियात का तस्करा करते हुए लिखा है, सरजमी ने दिलग्राम पर जिन अजीम शख्सियतों ने जन्म लिया उन्होंने एक मुमताज हस्ती सैयद मुर्तजा दिलग्रामी की है, जिन्होंने अरबी लुगत कामूस की नहायत जखीम शरह ताजुल उरूस के नाम से कई जिल्दों में लिखी। ये शरह अरबी लुगत में आज तक एक जबरदस्त कारनामा समझी जाती है। सैयद मुर्तजा दिलग्रामी हिंदुस्तान से हिजरत कर गए थे और मिस्र में उन्होंने अपना खासा असर व इख्तदार कायम कर लिया था। दूसरी अहम शख्सियत मीर अब्दुल जलील दिलग्रामी की है। ये औरंगजेब के

जुर्म फिल्म का नगमा भी अपने अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में सुना। अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा। इसे हमने लिया है प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से।

कार्रवाई के बाद पूरे खत्ते में इंटरनेट और मोबाइल खिदमत मुअत्तल कर दी गई। इस इदारे का यह भी कहना है कि वफाकी नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया और 100 से ज्यादा कारकुनान और लीडरों को जबरन गिरफ्तार किया गया। इदारे ने इस खत्ते में बाहर से आने वाले लोगों के सफर पर भी पाबंदी लगाए जाने का भी हवाला दिया। IHRF ने पाकिस्तानी हुकाम से अपील की है कि वो पुरम मुजाहिदीन के खिलाफ ताकत के बेजा इस्तेमाल पर फौरी तौर पर रोक लगाएं। IHRF ने शहरियों की मौत के तमाम वाकयात की आजादाना और गैर जानबदाराना तहकीकत के साथ साथ बैन अल-अक़वामी मुशाहिदीन को मुकम्मल रसाई फराहम किए जाने और ताकत के बेजा इस्तेमाल के मुर्तकिब अफराद की जवाबदेही तय करने की भी अपील की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के खुराक से मुतालिक इदारों ने इंतबाह दिया है कि तनाज़ात, आबोहवा और फंड की किल्लत जैसी वजूहात के नतीजे में आने वाले महीनों में दुनिया के 13 मुल्कों में भूख का एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। खुराक और ज़राअत से मुतालिक तंजीम और आलमी खुराक प्रोग्राम ने अपनी एक मुश्तरका रिपोर्ट में बताया कि 26 करोड़ 60 लाख अफराद को पहले ही खुराक की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। सूडान, जनूबी सूडान, यमन और फलस्तीन जैसे मुल्क पहले ही गहरी तशवीश का मरकज बने हुए हैं और अब नाइजीरिया और सोमालिया जैसे मुल्क भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जहां कैद का बहुत ज्यादा खतरा लाइक है। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामा इकतसादी और तजारती माहिदा सेटा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। तजारत व सनत की वजारत ने बताया कि समाजी तहफुज से मुतालिक यह माहिदा जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC भी कहा जाता है इस पर भी उसी दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बरतानिया जामा इकतसादी और तजारती माहिदे से भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तजारत और सरमाकारी को काबिले जिक्र तकवीत हासिल होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस माहिदे से भारतीय किसानों, कारकुनान, वर्करों, MSMEs, स्टार्टअप्स, इदारों और इख्तियाकारों के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे और विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत की शक्ल देने में मानी खेज तावन मिलेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और मध्य प्रदेश के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह इंदौर पहुंची। इंदौर हवाई अड्डे उनका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पहुंचने पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव और आला हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली मुआशरे को बाख्तियार बनाने के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल 10,000 टन वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रजन प्रेस का संग बुनियाद रखेंगे। ये संग बुनियाद नागपुर में अम्बाझारी के मकाम पर यंत्रा इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रखा जाएगा। मुजविजा एक्सट्रजन प्रेस दिफाई साजो सामान की तैयारी के शोबे में एक बड़ा कौमी असासा होगा। वजारत दिफा का कहना है कि उसकी मदद से अहम एल्यूमिनियम की दरामदात पर इसार भी कम होगा। आयुष की मरकजी वजारत ने कहा है कि इस माह की 21 तारीख को मनाए जाने वाले योग के आलमी दिन की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर 1.7 लाख से ज्यादा मुंतजमीन ने योग संगम पोर्टल पर अपने प्रोग्रामों का इंदराज कराया है। वजारत ने कहा है कि लोगों का यह पुरजोश रद्द अमल मुल्क भर में योग के पैगाम को फरोग देने में इदारों, तंजीमों और कम्युनिटीज की बढ़ती हुई शिरकत की अक्कासी करता है। इस पहल की अहमियत को उजागर करते हुए आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम फराह बहबूद के जरिए इत्तेहाद का जश्न है। इंसानी हकूक की एक सरकर्दा तंजीम बैन अल-अक़वामी तंजीम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरम मुजाहिदीन पर पाकिस्तानी हुकाम की पुरतशद्दुद कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। इस माह की 8 से 16 तारीख के दरमियान की गई इस कार्रवाई में 32 से ज्यादा शहरियों के हलाक होने की इतला है। इंसानी हकूक के बैन अल-अक़वामी फाउंडेशन IHRF का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद पूरे खत्ते में इंटरनेट और मोबाइल खिदमत मुअत्तल कर दी गई। इस इदारे का यह भी कहना है कि वफाकी नीम

0: दस्तों को तैनात किया गया और 100 से ज्यादा कारकुनान और लीडों को जबरन गिरफ्तार किया गया। इदारे ने इस खत्ते में बाहर से आने वाले लोगों के सफर पर भी पाबंदी लगाए जाने का हवाला दिया। IHRF ने पाकिस्तानी हुकाम से अपील की है कि वो पुरम मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के बेजा इस्तेमाल पर फौरी रोक लगाए। फीफा आलमी कप 2026 में कोलंबिया के ग्रुप के 3-1 से उज्बेकिस्तान को हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। ये मैच आज सुबह मेक्सिको शहर में स्टाडियो अजटेका में खेला गया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के हमरा पेरिस में वाइवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। इंसानी हकूक से मुतालिक बैनुल-अक़वामी तंजीम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरम तरीके से मुजाहरा करने वाले अफराद पर पुरतशद्दुद कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। इसके साथ ही आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रों के हमरा पेरिस में विवाटेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से खिताब भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती मुआहदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है मुगले आजम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने मुगले आजम के किरदारों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया, लेकिन मुगले आजम की शुरुआती स्टार कास्ट कुछ और थी। फिल्म पर काम 1940 के दशक में शुरू हुआ था और उस समय चंद्रमोहन, डीके सप्रू और नरगिस जैसे कलाकारों को लिया गया था, लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद फिल्म का निर्माण रुक गया। बाद में जब फिल्म दोबारा शुरू हुई तो अकबर के रूप में पृथ्वीराज कपूर, शहजादा सलीम बने दिलीप कुमार और अनारकली के रूप में नजर आई मधुबाला। इसके अलावा दुर्गा खोटे, अजीत, नाजिर, जॉनी वॉकर, बेबी तबस्सुम और शीला दलाया साथी कलाकारों के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म को यादगार बनाने में कलाकारों की मेहनत का भी बड़ा योगदान रहा। फिल्म के क्लाइमेक्स में काल कोठरी वाले सीन के लिए मधुबाला को असली लोहे की भारी जंजीर पहननी पड़ी थी। लंबे समय तक उन्हें पहनकर शूटिंग करने की वजह से उनके हाथों पर निशान तक पड़ गए थे। वहीं दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर ने भी अपने किरदारों को वास्तविक दिखाने के लिए भारी पोशाकों और कवच में शूटिंग की। किया सिर्फ अपने काम में किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। पृथ्वीराज कपूर का सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले सीन को तपती धूप और गर्म रेत पर फिल्माया गया था। किया सिर्फ ने कहा था कि अगर तकलीफ ज्यादा हो तो इशारा कर दीजिएगा, शूटिंग रोक दी जाएगी, लेकिन पृथ्वीराज कपूर बिना रुके शॉट को पूरा किया। शॉट खत्म होने के तक उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। यह घटना बताती है कि उस दौर के कलाकार अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए कितनी लगन से काम करती थी। शायद यही वजह है कि आज भी जब मुगले आजम का जिक्र होता है तो उसके कलाकारों के समर्पण को उतने ही सम्मान और प्यार के साथ याद किया जाता है जितना फिल्म के रिलीज के समय किया जाता था। और अब बात फिल्म के बेहद लोकप्रिय गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इस गीत को तैयार करते समय खास ध्यान रखा गया था कि इसमें पुराने दौर की ठुमरी और दादरा की झलक दिखाई दे। वहीं इस गीत में कथक की खूबसूरती को दिखाने के लिए गीत निर्देशक लच्छू महाराज जी ने मधुबाला को घंटों कथक का अभ्यास कराया ताकि गीत का हर भाव पर्दे पर परफेक्ट लगे। खास बात यह रही कि पूरे गीत की शूटिंग मधुबाला ने खुद की, किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। आइए सुनते हैं इसी सदाबहार गीत को।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के बाद आप खुद भी समझ गए होंगे कि इस गीत में और इसके दृश्य जब ये नृत्य हो रहा था और मधुबाला जी ये नृत्य कर रही थी, तो आपने भी अगर ये फिल्म देखी होगी या ये गीत सुना होगा तो देखा होगा कि मधुबाला ने कितनी सुंदरता से इस कथक के भावों को उतारा है और कितनी सुंदरता से ये डांस को किया है। श्रोताओं, आगे बात करते हैं। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच मुगल काल में पहुंच गए हैं। क्या आसिफ के परफेक्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1952 में दोबारा शुरू हुई इस फिल्म को पूरा होने में करीब 8 साल लग गए। फिल्म में युद्ध के दृश्यों को वास्तविक दिखाने के लिए बड़ी संख्या में घोड़ों, ऊंटों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, कुछ दृश्यों के लिए भारतीय सेना की भी मदद ली गई थी। उस दौर में जब ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग एक या दो कैमरे से होती थी, मुगले आजम की कई दृश्यों को फिल्माने के लिए एक या दो नहीं बल्कि मल्टी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह थी कि हर सीन बड़े पर्दे पर इतना प्रभावशाली दिखाई दिया। फिल्म के सेट, पोशाकें और गहनों पर भी खास ध्यान दिया गया था। देश के अलग अलग शहरों के कारीगरों ने मिलकर इन चीजों को तैयार किया था। हर छोटी सी छोटी चीजों में भी शाही अंदाज दिखाई दे, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। अकबर का किरदार निभा रहे पृथ्वीराज कपूर के लिए उन्होंने लगभग 4000 रुपए के खास जूते बनवाए थे। जब कैमरामैन आरडी माथुर ने आसिफ से कहा कि ये जूते तो पर्दे पर ठीक से दिखाई भी नहीं देंगे, तो आसिफ जी का जवाब था, मेरे अकबर को तो पता होगा कि उसने क्या पहना है। और वही एहसास उनकी चाल में एक मुगल शहंशाह की शान बनकर नजर आएगा। कहा जाता है कि फिल्म में दिखाई गई भगवान कृष्ण की मूर्ति भी शुद्ध सोने की बनी हुई थी। तो श्रोताओं, चलते ही अगले गीत की ओर, लेकिन उस गीत से पहले सुनेंगे एक छोटा सा संदेश।

0: सड़क अभियान रिक्शे मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना रिक्शे मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: रिक्शे मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी रिक्शे मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और आज की जो फिल्म है वो है मुगले आजम और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है मुगले आजम। श्रोताओं, मुगले आजम का सबसे चर्चित सेट था शीश महल, जिसे बनने में लगभग 2 साल का समय लगा। के आसिफ को इसकी प्रेरणा जयपुर के आमिर किले के शीश महल से मिली थी, लेकिन उन्हें भारत में वैसा शीशा नहीं मिला जैसा वे चाहते थे, इसलिए विशेष शीशा बेल्जियम से मंगवाया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्म को बेहतर बनाने पर था। वहीं फिल्म की लागत करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जो उस समय के हिसाब से बेहद बड़ी रकम थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी ने तय किया कि वो फिल्म का निर्देशन आसिफ से लेकर सोहराब मोदी को दे देंगे, लेकिन मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों ने के आसिफ का साथ दिया और कहा कि फिल्म को पूरी वही करेंगे। मुगले आजम को हिंदी, तमिल और अंग्रेजी 3 भाषाओं में बनाया जा रहा था। हर दृश्य और संवाद को 3-3 बार शूट किया जाता था। इसी वजह से फिल्म की शूटिंग के दौरान इतने फुटेज रिकॉर्ड हुआ कि उससे कई और फिल्में बनाई जा सकती थी, लेकिन के आसिफ ने वही दृश्य चुने जो उनकी नजर में सबसे बेहतरीन थे। और शायद यही वजह है कि मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अध्याय बन गई। तो श्रोताओं, चलिए चलते हैं इसी फिल्म से एक और बेहतरीन गीत सुनते हैं।

फिल्म का संगीत तैयार किया था नौशाद ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। दोनों की ये जोड़ी उस दौर में कई यादगार गीत दे चुकी थी, लेकिन मुगले आजम उनके करियर की सबसे खास फिल्मों में गिनी जाती है।

कहा जाता है कि जबकि आसिफ इस फिल्म का सपना लेकर नौशाद के पास पहुंचे तो वे अपने साथ पैसों से भरा एक ब्रीफकेस भी ले गए थे। आसिफ चाहते थे कि फिल्म का संगीत ऐसा हो जिसे लोग बरसों तक याद रखें, लेकिन पैसों की बात सुनकर नौशाद नाराज हो गए। बाद में दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हुई और फिर नौशाद ने इस फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। नौशाद ने फिल्म के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास, लोक संगीत की सादगी और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा की भव्यता को खूबसूरती से पिरोया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के गीत इतने महत्वपूर्ण थे कि वे फिल्म की कुल अवधि का लगभग एक तिहाई हिस्सा बन गए। फिल्म के अधिकांश गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था लता मंगेशकर ने। वहीं मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे महान कलाकारों की आवाजों ने भी इस संगीत को और भी यादगार बना दिया। दोस्तों, मुगले आजम के संगीत से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी है कि आसिफ चाहते थे कि फिल्म में तानसेन की आवाज के लिए किसी ऐसे कलाकार को लिया जाए जिसका शास्त्रीय संगीत में कोई मुकाबला न हो। नौशाद इसके लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का नाम सुझाया, लेकिन शुरुआत में उस्ताद फिल्म के लिए गाने को तैयार नहीं हुए। काफी कोशिशों और बातचीत के बाद वे राजी हुए। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा फीस मांगी जिसे सुनकर उन्हें लगा शायद कि आसिफ पीछे हट जाए। उस दौर में 25,000 रूपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन उस्ताद की बात सुनते ही के आसिफ ने बिना एक पल गवाए अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और कहा बस सिर्फ 25,000 रुपए मंजूर है। इसके बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने फिल्म के लिए प्रेम जोगन बनके और शुभ दिन आयो, राज दुलारा जैसी यादगार रचनाएं रिकॉर्ड की जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के इतिहास में विशेष स्थान रखती है। तो चलिए सुनते हैं एक और यादगार गीत।

दोस्तों, मुगले आजम कितनी शानदार फिल्म थी, इसका अंदाजा इसकी रिलीज के समय दर्शकों के उत्साह से भी लगाया जा सकता है। साल 1960 में जब फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। तेज बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। उस दौर में 75 पैसे और 2 रूपए से मिलने वाले टिकट ब्लैक में 100 से 200 रूपए तक बिके थे। 4 अगस्त 1960 को जब फिल्म का भव्य प्रीमियर हुआ तो इसके प्रिंट को हाथी पर रखकर मराठा मंदिर थिएटर तक लाया गया। वो अपने आप में एक अनोखा दृश्य था और पूरे शहर में इसकी चर्चा थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के भव्य प्रीमियर में इसके 2 सबसे बड़े सितारे दिलीप कुमार और मधुबाला मौजूद नहीं थे।

शुतनु इस फिल्म को 3 अवार्ड्स मिले, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, साथ ही फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट डायलॉग के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगा सकता

इसी के साथ ही आज के सफर को यही विराम देते हैं। अपने दोस्त राखी बैनर्जी को भी अनुमति दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।

अमेरिका के रणवीर सिंह के तहत जनबंदी समझौता लागू हो गया है। इससे उत्तर पर व्यापक शांति समझौते का दायदा फिर 60 दिन का समय दिया गया है। स्विटरलैंड एक मीटिंग के पहले इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत करते हुए कह रहे हैं कि समझौते में तुरंत जनबंदी शामिल है। इस समझौते में ईरान के परमाणु प्रोग्राम के क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को हल करने का ढांचा तय किया गया है। समझौते तहत अमरीका और

0: राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के पीपल हासिल करने लिए कोई जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास यात्रा के पीछे न रह जाए।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता कोई भी समाज पीछे न रह जाए।
0: उन्होंने कहा कि समाज आदिवासी भाईचारे तो प्रतिभा संभाल के कुदरत में एक सुरता बतौरना बहुत सख्त सजा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रविन्द्र बोस वालों बागी तृणमूल कांग्रेस विधायक ऋतव्रत बैनर्जी विरोधी धिर नेता नियुक्त करने के फैसले से कोई अंतिम रोक लाने का इंकार कर दिया है। जस्टिस कृष्णा राव के बेंच ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय वालों दायर पटीशन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने विरोधी धिर के नेता लिए उन्होंने नामजद भी रद्द करन और ऋतव्रत बैनर्जी ने नियुक्ति में चुनौती देने वाली पटीशन दायर की। अदालत ने प्रतिवादियों ने 3 हफ्ते अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जबकि पटिशनकर्ता ने जवाब दायर करने के 2 हफ्ते होर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई में होगी। ये खबरें तुम आकाशवाणी से सुन रहे हो। सदा चैनल @KLR भारत ने पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश अगुवाई है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों राही संचालित शानदार तब्दीली की है। इस समय मोदी सरकार ने गरीबों किसानों

0: मोदी सरकार दिन ताल मेल वाली मोबक की रणनीति कैलिब्रेटेड सुरक्षा कार्यों नक्सलवाद के माली वसीले में रोकों अति तेज विकास की कार्रवाई दे सुमेल दे नतीजे बचों देश नक्सलवाद के माओवादी दहशत तो मुक्त हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा तो ये वादा हुन पूरा हो गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक निवासी ने सरकार दे यतना दी शलाघा करते किया कि इसने देश को नक्सलवाद तो मुक्त करने अपने वादे में लगाया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
0: झारखंड के गुमला जिले के निवासी

0: राव ने किया कि जब तो मोदी सरकार बनी है नक्सलवाद हौली हौली खत्म हो गया, आते लोग शांति के सरकार में मिल रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के जब्त में था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गाँव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है।
0: आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी दहाके भी हिंसा दौरान लोकतंत्र विकास के संविधान दी जीत का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबर जलंधर।
2: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के 4 पुरुष और 3 औरतें शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा रात्रि 2 बजे के करीब हुआ था। उन्होंने भी जांच में पता लगा है कि हादसा उस समय हुआ था जब ड्राइवर का वाहन का कंट्रोल नहीं रहा था, एक खाद में टूट पाया। पुलिस और स्थानीय निवासियों की मदद से सारी लाशों खाद में कढ़ लिया गया है।

के अधिनियमित करने का सदा कोई अंतर रूप नहीं पहुंचा सकता। एफएच महिला नेशंस का प्रतिबद्ध भारत यूरोपियन केंद्र में रहकर सामने पहुंच गया। इस तरह राष्ट्रीय खबरें

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स करेंगे। वो वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा, जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रतभ्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई उमूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामा का अमल शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अमन मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। और हॉकी में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराया, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड में FIH खवातीन के नेशंस कप में सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ बहुत सी आला सतह की मीटिंगें करेंगे। वो भारत फ्रांस इक्तिसादी और सनअती तआवुन को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म सेंट गोबेन के चेयरमैन और CEO बोराइट बेजीन के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि इसमें

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा।

0: सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रूपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। यह शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षो में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्मकुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगे। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की

हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे।

0: पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बात उस शख्सियत की जिनकी आवाज में अपनापन था, शरीर में ताकत और चेहरे पर सरलता। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया में ऐसा नाम बनाया कि लोग उन्हें ताकत, सादगी और भारतीयता की मिसाल मानने लगे, साथ ही जिन्होंने कुश्ती में देश का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं दारा सिंह की, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई।

more.

भाई मोदी ऐसा कहता हूँ, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला तुझे दुश्मन का मारे।

दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के गांव धर्मुचक में बलवंत कौर और सूरज सिंह रंधावा के यहां हुआ था। कम आयु में ही उनका विवाह उनसे आयु में बड़ी लड़की से करा दिया गया। 17 वर्ष की उम्र में ही वो प्रद्युम्न रंधावा नामक बेटे के पितृव्य बन गए। दारा सिंह का छोटा भाई सरदारा सिंह, जिसे सब रंधावा कहते थे, दोनों ने मिलकर पहलवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के दंगलों से निकलकर शहरों तक उन्होंने अनेकों कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम किया।

1947 में दारा सिंह सिंगापुर आ गए। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियनशिप तरलोक सिंह को पराजित कर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। 1952 में वो भारत लौट आए और 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। इसके बाद ओरिएंटल चैंपियन किंग कॉन्ग को भी परास्त किया। 1968 में अमेरिका के विश्व चैंपियन लाओ थेस को पराजित कर वे फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में से किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 1963 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीता और ज्ञानी जैल सिंह के हाथों अपराजय पहलवान का खिताब बरकरार रखते हुए कुश्ती से संन्यास ले लिया।

आज के कलाकार हैं दारा सिंह। दोस्तों, दारा सिंह की पहचान सिर्फ ताकत नहीं, अनुशासन भी था। कहा जाता है कि वो नियमित व्यायाम और बेहद सादगी भरा जीवन जीते थे। कुश्ती की लोकप्रियता ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचाया। शुरुआती दौर में वो एक्शन और स्टंट फिल्मों के बड़े सितारे बने। उनकी शुरुआत हुई फिल्म संग दिल से, बाद में लीड रोल वाली फिल्म किंग कॉन्ग आई। उनकी अधिकतर फिल्में मुमताज के साथ आईं। करीब 16 फिल्में साथ करने के बाद ये हाईएस्ट पेड कपल था, जिन्हें करीब 4 लाख एक फिल्म का मिलता था।

अरे बड़े आपके मेल शामिल करने की हमें बहुत सारे श्रोताओं के मेल मिल रहे हैं, तो उनमें से हमने कुछ मेल्स को लिया है और ये मैसेज हमें मिला है। अपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अब्बासी और अरजान अब्बासी, उनके परिवार के सभी लोग और ये कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। आप है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और पवन नायक, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। आप है सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत भारत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जयेंद्र से। और ये मैसेज हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चिमरी कुरासिया कालरी से निभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहुअर, नारायण प्रसाद लहरे और दिनेश प्रसाद लहरे, साथ में है कालिंदी लहरे। बडेंखेड़ा पंजाब से टिम्पू मोर टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और बढ़ते हैं दारा सिंह जी के बारे में जानकारी के साथ। दारा सिंह ने 1980 के दशक में उनका रुख टेलीविजन की तरफ हुआ, जिसमें धारावाहिक रामायण में उन्होंने हनुमान का किरदार निभाया। इसके अलावा वीर भीमसेन और महाभारत फिल्म में भीम का किरदार निभाया। कई धार्मिक फिल्मों में उन्होंने भगवान शिव का किरदार भी निभाया। उनकी आखिरी फिल्म थी जब भी मैट, उनकी आखिरी पंजाबी फिल्म थी दिल मेरा पंजाबी और उन्होंने नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मैं मां पंजाब दी में भी काम किया। एक्टिंग के साथ साथ दारा सिंह ने भक्ति निशक्ति और रुस्तम का निर्माण और निर्देशन दारा फिल्म्स के तले किया।

फिल्मों कुश्ती के अलावा दारा सिंह ने 1998 में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया। राज्यसभा द्वारा मनोनीत दो वो पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने। 2003 से लेकर 2009 तक उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया। दारा सिंह ने दो शादियां की जिनमें 3 बेटे और 3 बेटियां थी। उनका पुत्र इंदु दारा सिंह भी फिल्मों में नजर आते हैं। दारा सिंह ने हिंदी ही नहीं बल्कि पंजाबी सिनेमा में भी खूब काम किया और लंबे समय तक दर्शकों के प्रिय बने रहे। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं किंग कॉन्ग, रुस्तम ए हिंद, शेरदिल, हरकुलस, मेरा नाम जोकर, आनंद, मर्द, कल हो न हो जैसी फिल्में रहीं।

लोग उन्हें अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन दारा सिंह सामाजिक जीवन में भी सक्रिय रहे। वे सार्वजनिक जीवन से जुड़े और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, इसलिए ही वो रुस्तम ए हिंद जैसे सम्मान के हकदार थे। 1912 से 1912 में 83 वर्ष की आयु में 2012 में 83 वर्ष की आयु में दारा सिंह दुनिया से चले गए। दारा सिंह सिर्फ अभिनेता नहीं, उस दौर की पहचान थे जब मेहनत, संघर्ष और व्यक्तित्व इंसान को महान बनाते थे। उन्होंने साबित किया कि अखाड़े की मिट्टी से निकला इंसान भी पर्दे पर अमर हो सकता है।

वजीर आजम फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों के साथ वाइवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। ये समिट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की यूरोप की सबसे बड़ी तकरीब है, जिसमें उम्मीद है कि जनाब मोदी भारत के इख्तिरा से मुतालिक तरक्की पाते हुए इको निजाम और टेक्नोलॉजी की पेशरफ को उजागर करेंगे। वाइवा टेक समिट में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन है, जो भारत और यूरोप के दरमियान इख्तिरा से मुतालिक इको निजाम की शराकत दारी के बड़े इम्कान की एक अलामत है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा का 5 रोजा दौरा शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के पहले दिन वो बैतूल पहुंची, जहां उन्होंने रूहानी बेदारी के जरिए कबायली तबकों को बाख्तियार बनाने के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम का एहतमाम प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिया विश्वविद्यालय ने किया था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद कबायली अफराद को बाख्तियार बनाना है और ये न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरे मुल्क और मुआशरे के लिए अहमियत का हामिल है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि भारत को तरक्की याफ्ता बनाने का मकसद हासिल करने के लिए जरूरत इस बात की है कि मुआशरे के सभी तबके को तरक्की के सफर में पीछे न छोड़ा जाए। मरकज माली साल 2026-27 के दौरान देही इलाकों में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तामीर करेगा। ये देही तरक्की की वजारत के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और देही इलाकों में मुतालिका सरगर्मियों के लिए 18,900 करोड़ रूपये से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। आला सतह की एक मीटिंग में देही इलाकों में सड़कों से मुतालिक प्रोजेक्टों की पेशरफ का जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत देही तरक्की के महकमे के सेक्रेटरी रोहित कंसल ने की। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई रियासतों के आला एहलकारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने अमृतसर में एक घर को कुर्क किया है, जिसका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा के कारिंदे से है। ये शख्स सरहद पार मुनशात और दहशतगर्दी के नेटवर्क के एक केस में मुलविस है। ये नेटवर्क पाकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों में फैला हुआ है। सरकारी जराये के मुताबिक ये कारिंदा अंकश कपूर इस नेटवर्क का भारत में एक बुनियादी कारिंदा है। NIA की तफ्तीश से इंकशाफ हुआ कि अंकुश के राबते दुबई में मुकीम एक मुलजिम से हैं, जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा से है। अंकुश को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जिसकी शनाख्त एक साजिश तैयार करने वाले एक बहुत ही अहम कारिंदे के तौर पर की गई, जिसका ताल्लुक नशीले मादों की स्मगलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और तकसीम से था। तहकीकात से यह भी मालूम हुआ है कि इन सारे कामों से होने वाली आमदनी को भारत में दहशतगर्दाना सरगर्मियों की माली मदद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब की हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 अवार्ड अता किये। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्दी नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान एक अहम मुफाहमतनामा लागू हो गया है, जिसके तहत लगभग 4 माह से जारी लड़ाई फौरी तौर पर खत्म हो गई है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान एक जामे अमन समझौते की खातिर 60 दिन तक गुफ्तगू जारी रहने की भी गुंजाइश रखी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्विट्जरलैंड में तयशुदा मीटिंग से पहले एक 14 निकाती समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक वसीले से दस्तखत किए गए। समझौते के तहत फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाएगी। दोनों मुल्क दुश्मनाना कार्रवाईयों से गुरेज करेंगे। इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे को हल करने के लिए एक खाका तय करेंगे। मुफाहमतनामे के तहत अमरीका ईरान के गिरदोनवाह में

0: अदब एक तरह से साइडलाइन होता जा रहा है। साहित्य लिटरेचर अब सबसे आखिरी तरजीह में से है, अदब अब किसी की पहली तरजीह नहीं है। अगर आप दानिशगाहों को देखें तो दानिशगाहों में जो डिसिप्लिन, जो उलूम, जो मजामीन वहां ऑफर किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनमें आप देखें कि अदब सबसे पिछले पायदान पे एक तरह से है, सबसे बिल्कुल लिस्ट प्रायोरिटीज में अदब है, सबसे कम तरीन जो तरजीहात में से है अदब। जिसको कहीं कुछ नहीं मिला वो अदब की तरफ आ गया, लिटरेचर की तरफ आ गया, लैंग्वेज की तरफ आ गया। तो इस तनाजर में अगर आप देखें तो अदब लगता है कि अब हमारी जिंदगी की जरूरत नहीं है, या अदब का पढ़ना पढ़ाना, अदब तख्लीक करना गोया एक तरह से कार्य लाहासिल है, बेकार है। इससे जो संजीदा लोग हैं, संजीदा जहन रखने वाले, माशरे को, इंसानी जिंदगी और कायनात को संजीदगी से देखने वाले जो अफराद हैं, वो उनके लिए बहुत ही एक तशवीश का एक सबब है। क्योंकि अदब हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि अदब अगर न हो हमारी जिंदगी का हिस्सा, न बने, अदब क्या है, माशरे का तर्जुमान होता है, फर्द का भी तर्जुमान है, माशरे का भी तर्जुमान है। तो उस तरह से अगर आप देखें कि जिंदगी में अदब की हमारी अहमियत क्या है, यानी अदब हम क्यों पढ़ते हैं, अदब हम क्यों लिखते हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं कि एक फर्द अपने अफकार, अपने तसव्वुरात, अपने ख्यालात का इजहार करता है। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि अदब तो एक फर्द का इजहार है, एक फर्द वाहिद का इजहार है, एक फनकार का इजहार है, लेकिन वो इस पहलू को भूल जाते हैं कि वो फनकार इसी माशरे का हिस्सा होता है और उस माशरे के वो तमाम जो लवाजमात हैं उससे उसका एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो उन सब के साथ वो जी रहा होता है। तो वो जब इजहार करता है अपना, वो जाती इजहार ही क्यों ना हो, अपनी जात के हवाले से ही वो इजहार क्यों नहीं कर रहा हो, वो इजहार एक तरह से इज्तमाई इजहार का मजहब भी बन जाता है, क्योंकि वो उसी माशरे में जी रहा होता है। तो जब हम अदब की बात करते हैं, अदब के वजूद की बात करते हैं, अदब की अहमियत की बात करते हैं, अदब क्यों की बात करते हैं, तो जो जहन में सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर हम अदब जब पढ़ते हैं तो हम क्या हासिल करते हैं, एक कारी के तौर पर, एक सामे के तौर पर, और एक तख्लीकार के तौर पर भी। तख्लीकार जब लिखता है तो उसके सामने भी कुछ मकासिद होते हैं, वो किसी मकसद को पेश नजर रख करके अदब तख्लीक करता है, बेमकसद अदब नहीं हो सकता, ऐसी कोई लकीर दरमियान में नहीं खींची जा सकती कि ये अदब मकसदी अदब है और ये जो है गैर मकसदी अदब है, बगैर मकसद के अदब की तख्लीक मुमकिन ही नहीं। तो हर अदीब एक मकसद के तहत अदब तख्लीक करता है, कारी भी जब उसे पढ़ता है तो उसका भी एक मकसद होता है
1: जी।
0: हर तरह के अदब को हर कारी नहीं पढ़ सकता
1: जी,
0: हर कारी का अपना अलग जौक होता है। बाज़ कारी ऐसे होते हैं जिनकी दिलचस्पी सिर्फ शायरी में, अदब के सिर्फ एक पहलू शायरी में, बाज़ लोगों की दिलचस्पी सिर्फ नावल पढ़ने में, बाज़ लोगों की दिलचस्पी सिर्फ अफसाना पढ़ने में है। तो जाहिर है कि उसी तरह से और भी दीगर असनाफ की तरफ है। तो ये जो जौक है लोगों का, ये जौक क्या है, इस जौक के तकाजे क्या है, वो अदब तख्लीक करने का जौक हो या अदब पढ़ने का जौक हो, ये हमारी जो फिक्र है, हमारा जो जज्बा है, हमारे जो एहसासात हैं, ये हमारी जो जमालियाती एक कहने की एक जरूरत है। जमालियात इंसानी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अंसुर है, बहुत अहम अंसुर है। हम एस्थेटिक्स को जमालियात को अलग रख करके इंसान का तस्वीर नहीं कर सकते, इंसान जमालियात के बगैर जी नहीं सकता है। उसकी अपनी जो पसंद और नापसंद है और जो खूबसूरती है दुनिया की, कायनात की, जिंदगी की, गिर्दोपेश की, वो उसकी तरफ फितरी तौर पर मायल होता है और उस खूबसूरती में इजाफा भी करता है अपनी फिक्र से, अपने एहसासात से, अपने जज्बात से। तो अदब को अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर है कि अदब पढ़ना इसलिए जरूरी है और अदब की जरूरत इसलिए महसूस होती है कि अदब हमारी फिक्र को सैकल करता है, हमारे जमाल को सैकल करता है, उसको संवारता है और एक बेहतर इंसान, एक बेहतर हिस्सियत वाला इंसान बनने में अदब मदद करता है।
1: कुरबान अली साहब, आप तो सहाफी होने के साथ साथ एक मुसन्निफ भी हैं, कई अहम किताबें आपने लिखी हैं। प्रोफेसर पाशा जो बात कह रहे हैं कि आज हमारी तरजीहात बदल गई हैं शायद और अदब जो है वो बहुत पिछले पायदान पे है, क्या भी इतफाक रखते हैं? दानिशगाहों के हवाले से आपने इजहार ख्याल किया, आपकी क्या राय है?
2: मैं अनवर पाशा साहब से थोड़ा सा इतफाक नहीं करूंगा
1: जी,
2: कि चीजें हो रही हैं दुनिया में, लेकिन हम इसी दौर में ये भी देख रहे हैं कि अदब की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है
1: जी।
2: चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो सहाफत हो
1: जी,
2: चाहे वो पार्लियामेंट की डिबेट्स हों
1: जी,

0: जी वो कौन लोग हैं जो अदब तख्लीक करते हैं? वो समाज के वो लोग होते हैं जो बहुत हसास होते हैं
1: जी,
0: जिनकी निगाह बड़ी बारीक भी होती है और जो अपनी सोच का दायरा बहुत वसी रखते हैं। वो महज इसको इस चीज से नहीं नापते कि उन्हें कोई फनपारा या शहपारा तख्लीक करने का मुआवजा क्या मिल रहा है।
1: जी
0: खासतौर से हम जिस जबान में काम करते हैं
1: उससे बेनियाज होकर वो अदब तख्लीक कर रहे हैं।
0: तो आप ये देखिए कि चाहे हमारा क्लासिकल लिटरेचर हो
1: जी,
0: चाहे और दूसरा पिछले जमाने का, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि आज जो अदब तख्लीक हो रहा है ज्यादातर हमारे जो लिखने वाले हैं वो अदब तख्लीक करने के बजाय खुद को तख्लीक करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पॉपुलर लिटरेचर है हमारा
1: जी,
0: उसकी मकबूलियत ने जो रिकॉर्ड कायम किए, चाहे वो जासूसी दुनिया हो
1: जी हाँ,
0: चाहे वो दूसरी चीजें, लेकिन उसके मुकाबले में आज जब आप देखिए, आपको रिसाला उठा के देखिए, उसमें कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो अदब के दायरे में आती हैं
1: जी,
0: कोई तख्लीकियत उसमें नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, देखिए जिंदगी में जो कशाकश है, जो पेचीदगी है और जो परेशानियां और हंगामा आ रही हैं, इंसान सबसे ज्यादा इस वक्त जिंदगी कशाकश से परेशान है
1: जी,
0: और वो ये सोचता है कि इससे कैसे पनाह हासिल की जा सके। एक शख्स है आयजुल करनी, अरबी का एक अदीब है
1: जी,
0: उसने एक किताब लिखी ला ताहजनु, ये कुरान का एक
1: जी
0: है, उसका उर्दू तर्जुमा होता है गम ना करें, वो किताब उर्दू में छपी
1: जी।
0: मैं समझता हूं कि वो बेस्ट सेलिंग किताब है इस वक्त, गम ना करें,
1: वो
0: गतरीफ शहबाज नदवी ने उसका तर्जुमा किया
1: जी।
0: वो ये बताता है अदब के हवालों से, शेर के हवालों से और जिंदगी की मुख्तलिफ रवैयों के हवाले से कि इंसान जो सबसे ज्यादा गम में मुबतला है उसकी उसने तरदीद की है कि इंसान को गम नहीं करना चाहिए, और मुख्तलिफ वाकयात बयान किए हैं और ऐसी गजब की उसकी सोच है कि मैंने जब वो किताब पढ़ी
1: जी
0: तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि इंसान की जिंदगी में रंज और गम जो है ये बिल्कुल फजूल चीज है, क्योंकि उसके कंट्रोल में कोई चीज है नहीं
1: जी।
0: जो कुछ होता है वो कुदरत की तरफ से होता है और कुदरत ही चीजों को क्रिएट करती है, वही उनको सॉल्व करती है।
1: वो एक तरह इलाज भी कर रहा है, मुआलिज है आपका,
0: इलाज भी कर रहा है,
1: वो मुआलिज है अदब के जरिए,
0: और अदब के हवालों से ही कर रहा है
1: जी हाँ।
0: तो ये इसका एक पहलू है, तो हमें इस बारे में ये सोचना चाहिए कि अदब जिंदगी के लिए कितना
1: जरूरी है। कोई एक अब तक अपने प्रोफेसर अनवर पाशा से बात की, कुर्बान अली साहब की बात सुनी, मासूम मुरादाबादी साहब की बात सुनी ऑल इंडिया रेडियो के इस बहस में कि अदब क्यों जरूरी। इतनी बात तो वाजह है कि अदब जरूरी है, और अगर नई नस्ल में किसी भी वजह से अदब से दूरी हो रही है या अदब नहीं पढ़ना चाहते हैं या अदब कम पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई सर्वे हमारे पास हो तो यकीनी तौर पर हमें रागिब करने की भी जरूरत है कि नई नस्ल भी अदब पढ़े। अदब का एक कमाल यह भी है कि वह हमारी तहजीब करता है, नजर दिल को उसत देता है, हमारे रवैयों को मोतदिल बनाता है, हमारी रूह और फिक्र को बालिदगी अता करता है। गोया अदब का मुताला हमें आदमी से इंसान और इंसान से और बेहतर इंसान बनाता है, और इसीलिए अदब को तमाम यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर पाशा खुद एक बहुत ही मुमताज यूनिवर्सिटी में जबान व अदब के उस्ताद हैं, यूनिवर्सिटी के निसाब में न सिर्फ शायरी, नॉवेल, अफसाने और गैर अफसाने में जो अदब है वो भी शामिल है, खाके हैं, उनसे हमें उसत मिलती है। पाशा साहब, अदब पढ़ाते हुए जब तालिब इल्मों से जो रुझानात सामने आते हैं, उनके जो तासुरात सामने आते हैं, उसकी क्या नवीयत होती है?
2: इससे कबल के आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक गलतफहमी का इजाला कर दूं। कुरबान भाई ने एक बात कही कि शायद मैंने अदब को दरकिनार कर दिया और अदब की अहमियत से इनकार किया। मैंने अपनी गुफ्तगू में अदब की अहमियत से इनकार नहीं किया, मैंने इस हकीकत का इजहार किया है कि अदब आज की जो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, साइंस का जो दौर है
1: जी,
2: तो उसकी रीच जो है वो महदूद होती जा रही है
1: जी,
2: उसकी तरफ लोगों की जो रगबत है वो महदूद होती जा रही है, कम होती जा रही है। अदब अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जो इंसान की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप निकाल नहीं सकते इंसान की जिंदगी से, इंसान की तखलीक में
1: जी।
2: तखलीक सिर्फ ये नहीं कि हम पैदा हो जाते हैं, इंसान बनने में आप देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है जब वो 3-4 साल का होता है तो उसकी अम्मा या उसकी दादी या उसकी नानी, पहले जो ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, वो बच्चों को कहानियां सुनाती थी, वो उनको नज्में सुनाती थी, जो आज भी स्कूलों में जब जात बच्चों को डालते हैं प्ले स्कूल में या दूसरे, तो वहां राइम्स उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है सबसे पहले। सबसे पहले छोटी छोटी कहानियां, जो हमारे यहां पुरानी जो किस्से कहानियां होती थी, हकायतें होती थी, चाहे पंचतंत्र के तर्जुमे उससे हुए हों, हितोपदेश के तर्जुमे वगैरह हुए, उन सब पे उन्हीं पर बेस्ड अलग अलग कहानियां बनानी लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से, वो पढ़ने को दिया जाता है। तो गोया अदब तो इंसानी जहन की तख्लीक में, उसकी तश्कील में, बच्चों की शख्सियत की तामीर में एक बड़ा रोल प्ले करता है। अदब का रोल बहुत कलीदी है हमारी जिंदगी में, उसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। मैं तो सिर्फ

0: ये कह रहा था कि अदब को लोगों ने बिल्कुल एक तरह से लास्ट तरजीहात में डाल दिया है,
1: जी
0: उसके पढ़ने का जो अमल पहले सिलसिला जो था वो धीरे धीरे
1: तो
0: मुड़ता
1: क्या हमें
0: हुआ है।
1: तरगीब देना चाहिए नई नस्ल की कि
0: अब आप
1: वो
0: देखिए कि
1: उसको
0: प्रेमचंद, प्रेमचंद को देखें आप, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं
1: जी
0: उनको उठा के देखें, और भी मिसालें ली जा सकती हैं, इकबाल की मिसालें आप देख लें, सर सैयद के जमाने के जो हमारे दूसरे लिखने वाले थे उनको देखें, तरक्की पसंदी के जमाने के अदीबों की तरीरों को देखें, उनकी एक बड़ी रीच थी।
1: जी
0: प्रेमचंद पहला ऐसा फनकार थे कि जिनके कारीन का हलका बहुत वसीतर था।
1: जी
0: उसकी वजह यह थी कि प्रेमचंद जिस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया वो दौर हिंदुस्तान में तालीम की तौसी का एक जमाना था। उससे कबल तालीम बहुत महदूद थी, नए नए स्कूल कायम हो रहे थे, जाहिर 1857 की जो तहरीक चली थी उसके उसके नतीजे में बहुत सारी इस्लाही तहरीकें चली और स्कूल कायम हुए, बहुत सारे मकतब कायम हुए, तालीम इदारे कायम हुए, तो एक बड़ा हलका पैदा हुआ तालीम हासिल करने वालों का। और तालीम हासिल करने वालों का हलका जब पैदा हुआ तो अदब के पढ़ने वालों का भी हलका उसी से बना। और प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी वो गांव की कहानियां लिखी, गांव से जाहिर है
1: जी
0: कि जोड़ा जिंदगी को अदब को, और उसमें जो कहानियां हैं अदब उनकी, बहुत से मसायल होते हैं हमारे, हमने उन मसायल को कभी अपनी जिंदगी में उस तरह से संजीदगी से उसको देखने का हमने कोई रवैया कायम नहीं किया था।
1: जी
0: हमने मसलन दलित मसायल को आप देख लें, दही जिंदगी की जो माशरत है, वहां की जो लोगों की जिंदगी की तकलीफ और मुसीबतें हैं, उनको प्रेमचंद जिस तरह से पेश किया उसकी वजह से हम सेंसिटाइज्ड हुए।
1: जी
0: कारी उस जमाने का सेंसिटाइज्ड हुआ, यानी उसके अंदर हसासियत उसकी बढ़ी कि दलित ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, हम तो अपनी दुनिया में मगन थे, प्रेमचंद ने हमारी तवज्जो उस तरफ की कि हम उनकी जिंदगी को भी देखें, इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें। तो अदब का दायरा, अदब मैं तो कहता हूं
1: जी
0: कि अदब जो है वो जितने भी उलूम हैं उन सब की मां है अदब। लिटरेचर इज द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। लिटरेचर को आप सिर्फ लिटरेचर तक महदूद करके मत देखिए,
1: जी
0: बल्कि उसका इम्पैक्ट साइंस पे भी है, उसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे भी है। आपने फिल्म की बात की, फिल्म के अदब ही तो है, ये जो हमारे सीरियल्स हैं वो सब अदब ही है, ड्रामे क्या है वो सब अदब ही है, बगैर अदब के इनकी तख्लीक
1: जी
0: या इनका तस्वूर नहीं कर सकते आप। तो अदब की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो ग्राफ गिर रहा है अदब की अहमियत का ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, पार्लियामेंट में शेर पढ़ देना अलग चीज है,
1: जी
0: लेकिन अदब को बचा के रखना, अदब के तख्लीकी सफर को और इर्तका की तरफ ले जाना, ये संजीदा लोगों की उनके लिए तश्वीश का सबब है।
1: मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपका इलाज क्या है, अगर अदब के तहीं लोगों के रुझान कम हुए हैं या उधर दिलचस्पी कम हुई है तो कोई एक इलाज भी आप जरा इस पे कि कैसे उनको रागिब किया जाए इस तरह।
0: इलाज तो ये देखिए, लिखने वाले लिख
1: नहीं
0: रहे हैं आज
1: सब
0: भी
1: जी।
0: और बहुत अहम
1: इस पे कुर्बान साहब से भी
0: बहुत अहम अदबी सहीफे लिखे जा रहे हैं
1: जी।
0: आज भी नॉवेल, जाहिर है कि चाहे वो मगरिब से या हमारे यहाँ के अपने अदीबों के जरिए लिखे गए जो नॉवेल हैं, अरुंधति

0: है या सिमट्रा इन जनरल,
1: ये एक सवाल
0: मेरा
1: है,
0: ख्याल
1: एक
0: ये
1: बड़ा सवाल है
0: उसके लिए आपने कहा ना कैसे इसको
1: जी
0: कायम किया जाए,
1: जी
0: बढ़ाया जाए। अदब की जानिब से जो एक तरह से लोगों के अंदर बेरुखी है या
1: जी
0: बेतवज्जुही है, उसकी वजह जो ये जो जमाना है मसरूफियत का,
1: जी
0: मशीनी जो दौर है वो भी, और आज इंटरटेनमेंट के बहुत सारे वसीले हैं,
1: बस
0: आज इल्म हासिल करने के बहुत से वसीले हैं, इसलिए वो उनकी तरफ भी लोग रागिब हो रहे हैं।
1: जी
0: और अदब के लिए कम से कम वक्त है, आज मोबाइल है आपके पास
1: जी हाँ
0: और दिगर तमाम लैपटॉप है, दुनिया आपके सामने है, अपनी अपनी तरजीह के मुताबिक आप उस तरह की चीजों को उससे देख लेते हैं और पढ़
1: जी
0: लेते हैं।
1: जी
0: अदब पढ़ने का जाहिर है क्या प्रेमचंद का दौर लौट के नहीं आ
1: जी
0: सकता,
1: हाँ
0: तहरीरी अदब को पढ़ने की तरफ लोग अब फिल्में देख लेते हैं, लोग अब ड्रामे देख लेते हैं, और सब कुछ अवेलेबल है आपके हाथ में,
1: जी
0: सब
1: हाँ
0: कुछ मौजूद है, तो वो सिलसिला तो
1: पूरा
0: है,
1: तनाजुर ये
0: अदब
1: बदला
0: है
1: है
0: अपनी जगह पे,
1: जी
0: अदब की शक्लें बदली
1: जी
0: हुई हैं,
1: शक्ल
0: यकीन
1: बदल
0: इसमें दो राय नहीं।
1: जी
0: मैं बिल्कुल सत फीसद इतफाक करता हूँ कुरान साहब से कि अदब की बदली हुई शक्लें हैं टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में,
1: जी
0: वो एक उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदब, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि अदब इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद करता
1: मदद
0: है,
1: बिल्कुल
0: उसकी फिक्र को सैकल करता है,
1: बिल्कुल
0: उसकी हसासियत को वो और सैकल करता है, पॉलिश करता है।
1: जी
0: एक बेहतर इंसान वो है जो हिस्सियत जिसके अंदर हो, एक जो हिस्सियत से बिल्कुल मुबर्रा इंसान अगर है तो मैं उसको इंसान नहीं मानता।
1: बिल्कुल
0: अगर वो किसी को दुख में देखकर उसको तकलीफ नहीं होती है, माशरे में बेहंगमी को देख के अगर उसको फिक्र

0: उठो इसके लिए अदब बहुत जरूरी है, अदब की तख्लीक भी जरूरी है, अदब का मुताला भी जरूरी है। मैं एक चीज अक्सर कहता हूं जब जाता हूं कहीं, तो ये बात मैं कहता हूं कि आप साइंस को उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, साइंस बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, लेकिन साइंस इंसान तख्लीक नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी इंसान तख्लीक नहीं कर सकती। आप रोबोट बना सकते हैं लेकिन आप इंसान को इंसान नहीं बना सकते बगैर अदब के। अदब वो काम करता है एक बहुत ही, जिसे कह लें कि एक गैर महजब इंसान को अगर अदब पढ़ने की लत लग जाए तो वो, मुझे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वो एक बेहतर महजब इंसान बन सकता है। अदब में ये सिफत है, साइंस में ये सिफत नहीं है। ये अदब का मरतबा साइंस से बाला तर
1: है। एक अहम बात की तरफ इशारा प्रोफेसर पाशा ने किया। कुरबान साहब, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, हम अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जल्दी से एक रिमार्क आपकी तरफ से इस हवाले से।
2: नहीं, जो अनवर पाशा साहब ने कहा

0: तख्लीक कर रही है, लेकिन अब कैसा होगा वो और उसको आने वाली नस्लें किस तरह से लेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अदब की अहमियत अपनी जगह सादिक है, वो रहने वाली है।
1: ये इस पे एतबार है। और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, अदब के हवाले से इस पे बहस हो रही है इस वक्त कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदब को फरोग देने का काम करेगा या अदब पे रुकावट आएगी, ये आने वाला वक्त शायद बताएगा। मासूम साहब, क्या राय है आपकी?
2: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से तो बहुत सारे खदशात हैं
1: जी,
2: इसके मुस्बत पहलुओं पर लोगों की कम तवज्जो है और इसके मनफी पहलुओं पर ज्यादा है कि क्या तबाही मचने वाली है माशरे के अंदर। एक बात अनवर पाशा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं, मेरे घर में उर्दू के बच्चों के रसाइल भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। मेरा एक पोता है 3.5-4 साल का
1: जी,
2: और वो एक उर्दू का रिसाला उठा के लाता है और अपनी दादी से यानी मेरी बीवी से कहता है कि दादी कहानी सुनाओ
1: जी,
2: और वो दादी उसको कहानी सुनाती है और वो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे इतनी तवज्जो से उस कहानी को सुनता है
1: जी। हाँ,
2: तो इंसान की जो सरिश्त है, यानी अभी वो 3.5-4 साल का बच्चा
1: जी,
2: अभी स्कूल भी नहीं जाना शुरू किया है, लेकिन वो कहानियों से अल्फाज भी सीख रहा है।
1: उसकी तरफ प्रोफेसर पाशा ने इशारा किया था
2: जी,
1: बच्चे कान में कहानी जी। हाँ,
2: तो अदब इंसान की कितनी बुनियादी जरूरत है, वो इंसान को मुकम्मल बनाने में, जिसे अल्लामा इकबाल ने इंसान कामिल कहा है
1: जी,
2: वो अदब ही बनाता है। अदब के अंदर फलसफा, मंतिक और तमाम किस्म के जो उलूम है, चाहे कदीम उलूम हो चाहे जदीद उलूम हो
1: जी,
2: और जो साइंस की जैसे बात की जा रही है, साइंस का भी इसमें एक रोल है, आज की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल
1: जी,
2: है। लेकिन अदब के बगैर कोई भी जिंदगी का मैदान मुकम्मल नहीं होता। अदब हमारी बुनियादी जरूरत है,
1: बिल्कुल,
2: हमारे शऊर को बेदार करने में, हमारी हिस को बेदार करने में और हमें एक मुकम्मल इंसान बनाने में अदब एक कलीदी किरदार अदा करता है।
1: बिल्कुल,
2: इसलिए अदब की अहमियत से, फादियत से आप किसी भी तौर इनकार नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
3: एक पहलू अदब का जो आपने कहा कि कैसे उसका मुस्तकबिल कैसा हो
1: जी,
3: कैसे उसको बचा के हम रख सकते
1: जी
3: हैं या कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं,
1: बदलते
3: आप जमाने पर, जमाने तब्दीली पर आप कोई रोक नहीं लगा सकते
1: जी। हाँ,
3: तब्दीली का अपना निजाम है, वो होती रहेगी तब्दीली, चेंजेस आती रहेंगी। ये साइंस टेक्नोलॉजी ये सारी जाहिर है, आज से 100 साल पहले का तनाजुर देखिए, मंजरनामा आज का देखिए, फर्क नजर आएगा। और ये कुदरत का निजाम है, लेकिन उसी निजाम के साथ हमें अपने सर्वाइवल के लिए भी गुंजाइशें पैदा करनी है
1: जी। हाँ,
3: चाहे वो इंसान की जिंदगी के तौर पर बहसत इंसान हम उसकी फिक्र करें या बहसत इल्म, बहसत अदब एक डिसिप्लिन के तौर पर, आज लोग उसके साथ अपने आप को हमाहंग कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ भी लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ लोग सही रखे। आज आप देखें प्रिंटेड फॉर्म में अदब जो है अब कम है इस वक्त, ज्यादातर डिजिटल फॉर्म में आपके सामने, गजल हमारी मुकम्मल हुई फौरन हमने डाल दिया उसे फेसबुक पे, फौरन हमने उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया, फौरन हमने ट्विटर पे उसको डाल दिया, तो उसकी रीच बढ़ रही है, उस तरह से बढ़ रही है।
2: बल्कि तो, मैं एक बात कता कलाम कहता हूँ, डिजिटल का एक बड़ा फायदा यह है, आपकी कोई चीज छपती है कहीं उस पर आपको रेस्पॉन्स नहीं पता चलता
3: जी,
2: लेकिन आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर
1: अपनी सोशल मीडिया के जरिए,
2: मैंने एक पोस्ट कल डाली थी तो तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों ने उस पर कमेंट्स की
1: जी।
3: और ये कमेंट सिर्फ आपके हिंदुस्तान के, अपने मुल्क के, अपने इलाके के नहीं है
1: जी जी,
3: वो कोई कमेंट अमेरिका से कर रहा है, कोई इंग्लैंड से कर रहा है, कोई फ्रांस से कर रहा है, कोई जर्मनी से कर रहा है, कोई अरब मुल्क से कर रहा है, यानी उसकी रीच बढ़ी है। तो हमें इस पे संजीदगी से सोचना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे खुद को ज्यादा हम आहंग करें और उसका फायदा उठाएं और अपने अदब की रफ्तार को और ज्यादा,
2: जैसा कुरान भाई ने रेख्ता का भी जिक्र किया,
3: वो भी एक शक्ल
2: है लोग
1: जी,
3: नॉन उर्दू हल्का, नॉन उर्दू
0: पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया कि उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट
1: हिन्दुस्तान में, हमारे पास उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट। बिल्कुल, अदब क्यों जरूरी, इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे। साथी तौर पे मुझे शफी अय्यूब को खुशी इस बात की है कि हमारे जो आज के माहिरीन हैं वो बिल्कुल मायूस नहीं है इस हवाले से, और उनकी ये मुस्बत राय है कि बहरहाल अदब की जरूरत है, अदब की जरूरत कल भी थी, अदब की जरूरत आज भी है और अदब की जरूरत कल भी रहेगी। अदब अपनी शक्लें बदल सकता है, नॉवेल या शायरी, अफसाने या खाके या सफरनामे किताबी शक्ल में छपते थे, किताबें कम छपें या ज्यादा छपें, हम डिजिटल फॉर्म में पढ़ें, लेकिन बहरहाल अदब की जरूरत है। हमारे साथ स्टूडियो में अदब क्यों जरूरी के मौजू पे बात करने के लिए प्रोफेसर अनवर पाशा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, साबिक चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जनाबे कुर्बान अली साहब, मुल्क के जाने माने सहाफी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यकसाम मकबूलियत रखने वाली शख्सियत, جناب امام

ख्वाहिशें सुनी चांदनी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और बाबला का गाया हुआ। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी शिव हरी की।

स्टोरी फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। और ये जब सुनिए बेताब फिल्म का नगमा शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ।

आज के सरकर्ता ताजिरों के साथ बहुत सी आला सतह की मीटिंगें कर रहे हैं। ये मीटिंगें वो भारत फ्रांस इकतसादी और सनअती ताउन को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर कर रहे हैं। वजीर आजम फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों के साथ वाइवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। ये समिट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की यूरोप की सबसे बड़ी तकरीब है, जिसमें उम्मीद है कि जनाब मोदी भारत के इख्तरा से मुतालिक तरक्की पाते हुए इको निजाम और टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त को उजागर करेंगे। वाइवा टेक समिट में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन है, जो भारत और यूरोप के दरमियान इख्तरा से मुतालिक इको निजाम की शराकत

भी मुल्कों को यूरोप का रिवायती एतबार से दिफा करने के लिए पेश पेश होने के अलावा नेटो के फौजी इत्तेहाद और उसकी सलाहियतों को मुस्तहकम करने के लिए भी काम करना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान एक अहम मुफाहमतनामा लागू हो गया है जिसके तहत लगभग चार माह से जारी लड़ाई फौरी तौर पर खत्म हो गई है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान एक जामे अमन समझौते की खातिर 60 दिन तक गुफ्तगू जारी रहने की भी गुंजाइश रखी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्विट्जरलैंड में तयशुदा मीटिंग से पहले एक 14 निकाती समझौते पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए हैं। समझौते के तहत फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाएगी, दोनों मुल्क दुश्मनाना कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे, इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे को हल करने के लिए एक खाका तय करेंगे। मुफाहमतनामे के तहत अमरीका ईरान के गिर्दो नवाह में बहरी नाकाबंदी खत्म करना शुरू कर देगा और अबनाए हुरमुस के रास्ते बहरी जहाजों के आमदोरफ्त को 30 दिन के अंदर अंदर मामूल पर लाने के लिए काम करेगा। अकलीती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब के हज और उम्र की वजारत ने भारत को दो बावकार अवार्ड अदा किये। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामे इकतसादी और तजारती मुआहदा सेटा इस साल 15 जुलाई से नाफिज अमल हो जाएगा। तिजारत और सनअत की वजारत ने बताया कि समाजी तहफ़ुज़ से मुतालिक यह मुआहदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कॉन्वेंशन DCC भी कहा जाता है, इस पर भी उसी दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे से भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमाकारी को काबिल जिक्र तकवीत मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मायदे से भारतीय किसानों, वर्करों, MSMEs, स्टार्टअप्स इधारों और इख्तियारकारों के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे और विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत की शक्ल देने में मानी खेज तावन मिलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के गुज़िश्ता 12 साल तरक्की और विरासत के इम्तिजाज का एक सुनहरी दौर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि इन 12 वर्षों में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक की तामीर की गई, जबकि आलमी मैयार की कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और मेक इन इंडिया जैसी पहलकदमियों की बदौलत मुल्क की तरक्की के सफर को गैर मामूली रफ्तार मिली। जनूबी कोरिया ने साल की दूसरी शिशमाई से LNG और LPG की दरामद पर से महसूल खत्म कर देने का ऐलान किया है।

0: कर रहे हैं। वो वाइवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान जामा इक्तिसादी और तिजारती समझौते पर अगले माह की 15 तारीख से अमल शुरू होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान एक समझौते पर अमल शुरू हो गया है और आइंदा बातचीत भी जारी रहेगी। और हॉकी में भारत उरुग्वे को 3-2 से हराकर न्यूजीलैंड में जारी एफआईएच खवातीन के नेशंस कप में सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मेरे मेज 1071 किलो खर्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडेज पर आप हमारी नशा सुन रहे थे। शाम के 5 बजे आते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पसीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दिए पंजाबी सेवाएं शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत करिया सराय के प्रोग्राम दे नाल। समा समाओ जोक माहिती।

ये ऑल इंडिया रेडियो दे विदेश प्रसारण सेवा का सिराइकी प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते इस्तकबाल करेंगा। आज असा हाजिर है आप सब दे नाल सिराइकी सूफी संगीत दे नाल। असा दे नाल हैं आज रूपेश चोपड़ा जी, वो असा को कुछ सूफी संगीत अपनी मिठड़ी आवाज सुने से। सबसे पहले वो पेश करें दे पेन सुल्तान शाह हुसैन साहब जी का हिंगावन, वाहिनी मैं किलो आखा दर्द विछोड़े दा हाल नहीं।

ਬਾਵਲ ਆਇਆ ਨਮਾਹੀ ਮਰ ਸਨ ਖਾ ਕਰ ਫਾਹੀ ਮਰ

0: स्वामी झूलेलाल की इबादत विच गाया वंजन वाला है गीत दमादम मस्त कलंदर। मतलब भी कोई सिराय की बिरादरी विच ऐसा बंदा हो सी जे ना सुन रखा हो सी। बहुत वड्डे वड्डे गायकों ने एक गीत गाया है पर असा को रूपेश चोपड़ा जी ये गीत गा के सुने सन दमादम मस्त कलंदर।
1: लाल मेरी पत्र रखियो बला झूले लाल सिंदरी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी पत्र रखियो बला झूले लाल लाल मेरी पत्र रखियो बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर ईदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर हो।

चराग तेरे बलन हमेशा, चारे चराग तेरे बलन हमेशा, चारे चराग तेरे बलन हमेशा, चारे चराग तेरे बलन हमेशा, चारे चराग तेरे बलन हमेशा, चारे चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आइया बला झूले ला।

लाली हो लाली मेरी। धनन धनन तेरी नौबत बाजे, धनन धनन तेरी नौबत बाजे, धनन धनन तेरी नौबत बाजे, धनन धनन तेरी नौबत बाजे, धनन धनन तेरी नौबत बाजे, धनन धनन तेरी नौबत बाजे, नाल बजे गए।

सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, हो लाले मेरी, हो लाले मेरी, लाले मेरी पत रखियो बाला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाले मेरी।

हाय रात धम्मे लुटे जान दिए, हाय रात धम्मे लुटे जान दिए। नींदर ते कईया कईया चौका लाइया, हाय रात धम्मे लुटे जान दिए, हाय रात।

वाह जी वाह वाह वाह वाह रूपेश चोपड़ा जी बहुत बढ़िया यार दाढ़ी इश्क आतिश लाई है बहुत बढ़िया सूफी संगीत तुसा को सुनवाए असा को इजाजत दे प्रोग्राम खत्म थी वेला थी गए मैं रूपेश चोपड़ा जी आप सब सुनने वाले कानू इजाजत मंगते हैं सलाम नमस्ते सत श्री अकाल मिलसू इन्हें ही कोई बे प्रोग्राम के नाम राम जी।

0: गर्दन अगे कट के बैठो दी आदत नो ए आसन ठीक करता है। फिर आ जाता जी मार्जरी आसन कैट काउ पोज जिन्हों कहते हैं गोडिया ते हथा दे पार टेबल पोजिशन पाओ। ए गर्दन अते रीढ़ दी हड्डी दोहा लई सब तो वधिया है। हुण गल करदे हैं पिट दे दर्द लई केड़े केड़े आसन फायदेमंद होंदे ने। हुण आ जांदी इहदे विच भुजंग आसन अर्ध मत्रिंद आसन ते पहले करदे हैं कोबरा पोज यानी भुजंग आसन दी गल। पेट दे पार लेट के दोवे हाथ छाती दे कोल रखो ते नाभे तक दे हिस्से नूं उपर चुको। लोअर बैक दिया मांसपेशियां नूं मजबूत कर सके दर्द हटाउंदा है। अर्ध मस्त्रेंद आसन सिटेड स्पाइनल ट्विस्ट जमीन ते बैठ के एक लत दूजी दे उपर रखो अते पूरे शरीर नूं उसे पासे ट्विस्ट करो। ए रीढ़ दी हड्डी दा तनाव तुरंत खत्म कर देंदा है। फिर आ जांदा है जी चाइल्ड पोज यानी बाल आसन गोड्या पर बैठ के हथा नो अगे वाल फैलाउंदे हुए चुको। ए पूरी पिठ नो आराम दिंदा है। बिल्कुल आसन उही ने पर कुछ खास आसन कुछ खास तरह दे दर्द नो ठीक करदे ने इसलिए इन्हां नो जानना बहुत जरूरी है। कुछ होर तरीके ने जिवें बैठन दा सही तरीका स्क्रीन दा लेवल सही होना चाहिदा है। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन नो अखां दे बराबर रखो ताजो गर्दन हेठा ना चुकानी पवे। कुर्सी ते बैठन वेले लोअर बैक दे पिछले पिछे छोटा जिहा कुशन जां तौलिया रोल करके रखो। मोढे ढीले रखो काम करदे समय अक्सर मोढे उपर वल सख्त हो जांदे ने इन्हां नूं हेठा अते आरामदायक पोजिशन च रखो। फिर कुछ एहतियात वरतनी जरूरी है जे दर्द बहुत ज्यादा है जां लत्तां बाहां विच सुन्नपन आ रहा है तां योगा करन तों पहला डॉक्टर जां फिजियोथेरेपिस्ट दी सलाह जरूर लो। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
1: दोस्तों जीआई नूं प्रोग्राम च हर हफ्ते असीं तुहाडी मुलाकात बहुत ही मायनाज शख्सियतां दे नाल करवाउने आ। इसे सिलसिले च अज जिस शख्सियत दे नाल तुहाडी मुलाकात करवा रहे हां उस शख्सियत दे बारे च कुछ कहना कुछ इंट्रोडक्शन देना शायद मुनासिब नहीं होएगा। जिवें एक गीत दे बोल ने ना कि मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे कुछ यही आलम इस फनकार दा है। इस फनकार नूं लोकी रिश्तियां दा गायक भी कहंदे ने। इस फनकार नूं लोकी सच्ची सुची पंजाबी गायकी दा मुदई भी कहंदे ने। इस फनकार नूं बुलंद आवाज दा मालिक भी कह के सत्कारिया जांदा। इह फनकार कौन है इह अपनी पछाण आपे हो जाएगी।
2: मां भी कह दित्तियां ताई मर जानियां बापू भी कहंदा तियां ताई मर जानियां परे है दुखड़े हंडाउन जोगियां पुत्तां ताई जिउण जोगे कहण वालियो कदे तियां नूं भी कहा करो जिउण जोगियां पुत्तां ताई जिउण जोगे कहण वालियो कदे तियां नूं भी कहा करो जिउण जोगियां।
1: जी दोस्तों तुसीं बखूबी समझ गए होवोगे कि इस वेले साडे स्टूडियो च मेरे नाल जे ओ फनकार ने जिन्हां दी आवाज तुसीं सुनी है इज नन अदर देन ही इज ਪਾਲੀ ਦੇਤ ਵਾਲੀਆ। ਪਾਲੀ ਦੇਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ।
2: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖੀ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
1: ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ
1: ਜੀ
2: ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੀ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਤਵਾਲੀ ਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਤਵਾਲਾ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਿਆਰਾਂ
1: ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੇਤਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ।
2: ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਜਗਰਾਓ ਰੋਡ ਤੇ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ।

0: मेरा पिंड
1: जी
0: में, मेरा शहर वर्गा पिंडा, मेरा पिंड में लगे मेरी मां वर्गा, मैं अच्छी
1: हाँ
0: वर्गी सी।
1: क्या बात है,
0: हाँ
1: क्या
0: जी
1: बात है। अच्छा पाली, ये जड़ी तुहाडे ते स्टैंप लग गई
0: हाँ जी
1: ते लो जी पाली देत वालिया, चाहे कोई किदां दे गाने गावे, चाहे कोई रैप गावे, पॉप गावे, जैज गावे, है ना, चाहे कोई ओ जड़ा ठस्ती करोदा, ऐसे ही जड़ा अजकल गाई जांदे आ,
0: ठीक है जी
1: पर पाली देत वालिया ने सिर्फ सभ्याचारक गीत गाउणे ने, पाली सभ्याचार दा, पाली देत वाली

महेंद्र कपूर ते उषा मंगेशकर दी आवाज अज फिल्म सहती मुराद चो गीत सी। अगले गीत थोड़े लिए है जी मोहम्मद रफी ते दिलराज कौर दी आवाज अज फिल्म का नाम है माही मुंडा।

सतिंदर सरताज की आवाज शायर फिल्म लाई गीत सी। इस नाले पंजाबी फिल्म संगीत हुण खत्म हुंदा है। वारी आ गई तमन्ना दी। डब वाली हरियाणा तो जेके वकोलिया श्रीमती सुनीता वकोलिया ते इना दे साथी तमन्ना तहत खत भेज रहे ने ते सुनना चाहते ने जगमोहन कौर दा गाया लोक गीत। जी बिलकुल, कहते ने कि शुक्रिया आकाशवाणी का जो जिन्होंने ए लोक संगीत का प्रोग्राम सिलसिला जारी रखा है, नहीं तो किते अजोके संगीत दे विच किते लुकदा जांदा ए लोक संगीत। मैं जी थोड़ी तमन्ना तहत थोड़ी ए मुराद जरूर पूरी करांगे ते बाबा कई आकाशवाणी जलंधर दा बेहद शुक्रिया। ते लाओ जी जगमोहन कौर दा गाया गीत थोड़ी नजर कर रहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा भी तमन्ना तहत खाफ भेजण दा।

0: 말아해. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होने चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड आवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल ओपन up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्रांतिया है कि सीईओ आर्थर मुंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएससीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडल्फ सादे ने कहा कि भारत हर जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300।

67.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम राम। तो पायल बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। भाई, कृषि जगत कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए नई नई जानकारियां लेकर के आते हैं। आज भी ऐसी ही जानकारी लेकर के आए हैं वर्तमान सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।
1: बिल्कुल, और इसमें जो है अपने सभी बहन भाइयों को हम ये वार्ता सुनवाएंगे महिला सशक्तिकरण और FPO के संघ जो है ये
0: क्षेत्र में जो है विकास
1: के लिए
0: किस प्रकार से विकास किया है सरकार ने, और इसकी जानकारी दे रहे हैं बृहस्पति कुमार पांडे। तो पहले लेते हैं ये थोड़ी सी जानकारी।
2: आज का जो चर्चा का विषय है वह है महिलाओं का सशक्तिकरण और FPO। बीते 12 सालों में क्या बदलाव आए हैं महिलाओं की स्थिति में और किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए तो ग्रामीण महिलाओं को आमतौर पर घर के काम काज करने वाली और चूल्हा चौका तक ही सीमित देखा जाता रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह वैश्विक लेवल पर महिलाओं को सुदृढ़ बनाता है। अगर हम बात करें भारत सरकार के सबसे सफल और महत्वाकांक्षी योजना ड्रोन दीदी की, तो इसने महिलाओं की न केवल आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है बल्कि महिलाओं को एक नई पहचान देने का काम किया है। पहले जो है घर के काम काज तक सीमित रहती थी या खेतों में काम करती थी या कम पढ़ी लिखी थी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह रिमोट ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर काम करेंगी, ड्रोन उड़ाएंगी। लेकिन सरकार के ड्रोन दीदी योजना के आने के बाद 10वीं पास महिलाओं को एक ऐसा अवसर सामने आया जिसके जरिए उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की बल्कि कृषि में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ड्रोन दीदी परियोजना की शुरुआत लगभग 1261 करोड़ रुपए के धनराशि के साथ की गई थी और इसमें सबसे बड़ी जो बात थी देश के 15,000 समूहों को टारगेट करके रखा गया था कि जो महिलाएं 10वीं पास हैं, जिनके पास घर का काम करने काज करने के अलावा बाहर जाकर के वो काम कर सकती हैं, ऐसे महिलाओं को चिन्हित किया गया और उन्हें भारत सरकार द्वारा 10 से 15 दिन की रिमोट ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान न केवल उनको ड्रोन संचालित करने की ट्रेनिंग दी गई बल्कि कृषि में छिड़काव के लिए उपयोग आने वाली कीटनाशक दवाओं के बारे में, खाद उर्वरक के बारे में, उसके डोज के बारे में भी जानकारी दी गई। इस योजना का परिणाम यह रहा कि जो महिलाएं घर के कामकाज तक सीमित रहती थीं, जिन्हें सिर्फ हाउसवाइफ के नाम से जाना जाता था, उनकी जो सीजन में कमाई थी वह लगभग 40 से 50 हजार रूपये पर मंथ तक पहुंच गई और उनके जरिए जो खेतों में कीट और बीमारियों का प्रकोप होता था उससे जो फसल को नुकसान होता था उसका भी बचाव होना संभव हो पाया। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को ड्रोन के इस्तेमाल के दौरान जो क्रॉप एरिया था उसमें दवा का डोज देने, उसके बीमारियों और कीट की पहचान करने, उसके नियंत्रण करने की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हुई है। इससे कृषि में जो केवल पुरुषों का एक छत अधिकार था उसमें न केवल महिलाओं का भी अधिकार शामिल हो पाया है बल्कि कृषि में जो हानि का स्तर था उसमें भी कमी लाए जाने में सफलता मिली है। अगर हम बात करें ड्रोन दीदी की सफलता की तो देश भर में करीब 15,000 SHG यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ड्रोन संचालित कर रही हैं और सरकार के जरिए इन्हें न केवल निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया है बल्कि 8 लाख रुपए का अनुदान भी ड्रोन क्रय करने के लिए प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो धनराशि खर्च होती है वह स्वयं सहायता समूह को अपना अंश लगाना होता है और यह देखने को मिला है कि घर के कामकाज के साथ महिलाएं जो है खेतों में भी काम कर रही हैं, ड्रोन उड़ा रही हैं और साथ ही कृषि में के हानि के स्तर को भी कम करने में सफलता मिली है। महिला सशक्तिकरण की बात यही समाप्त नहीं होती है। पहले जो है किसानों को फसल उपज करने का तो अधिकार था लेकिन यह माना जाता रहा है कि किसान जो है अपनी उपज करते थे लेकिन उन्हें मूल्य तय करने का अधिकार नहीं था। 12 साल के इस दौर में यह भी दौर देखने को मिला है जब किसानों को अपने कृषि उत्पादों का मूल्य तय करने का पूर्ण अधिकार सरकार ने प्रदान किया है और साल 2020 में सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की जिसमें से बिचौलियों और आढ़तियों का जो एक छत्र राज था वो पूरी तरीके से

समाप्त करने में सरकार कामयाब रही है और 10,000 एफपीओ का टारगेट सरकार ने रखा। और एफपीओ जो है, जैसा कि सभी लोग इस समय जान रहे हैं कि किसानों का एक ऐसा समूह है जो किसान उत्पादन करते हैं। इसमें ऐसे किसान शामिल हैं जो छोटी जोत के हैं, मझोले जोत के हैं, जो थोड़ा थोड़ा उत्पादन करते हैं और जब उन्हें बिक्री करनी होती थी तो उनका मूल्य जो है बिचौलिया तय करते थे, आड़ती तय करते थे, इसलिए उन्हें अक्सर हानि का सामना करना पड़ता था। सरकार ने इसी नजरियों को ध्यान में रखते हुए एफपीओ की अवधारणा को साकार किया और 10,000 एफपीओ गठन करने का टारगेट रखा, जिसमें नाबार्ड, एसएफकेसी जिसे लघु कृषि व्यापार संघ के नाम से जाना जाता है, इन एजेंसियों को अगुवाई दी कि देश भर के तमाम राज्यों तथा सुदूर क्षेत्र के गांवों में ऐसे किसानों को संगठित करके एफपीओ गठित किया जाए और एफपीओ अलग अलग मुद्दों पर काम करे। कुछ क्षेत्र में जहां काला नमक धान की खेती होती है, सुगंधित धान जिसे कहते हैं, ऐसे किसानों को संगठित करके एफपीओ बनाया जाए। दूध पर काम करने वाले किसानों को संबंधित करके डेयरी का एफपीओ बनाया जाए। मछली उत्पादन करने वाले किसानों को संगठित करके मछली का एफपीओ बनाया जाए। तो किसानों को लेकर के जो विजन तय किया था सरकार ने, वह 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है और देश भर में 10,000 से ज्यादा एफपीओ का गठन किया जा सका है। आज देश भर में किसान खुद अपने मूल्य तय करता है। हम तमाम ऐसे एफपीओ की बात भी करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने उत्पादों को ले जाने सक्षम रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एफपीओ के जरिए किसानों के आय में कितना अंतर आया, उत्पादन में कितना अंतर आया, कीट बीमारियों के नियंत्रण में कितना अंतर आया और इसमें महिलाओं का किस तरीके से सशक्तिकरण हो पाया है। जो भी एफपीओ गठित किए गए उनके लिए सरकार ने बहुत सारी सहूलियतें प्रदान की है। सबसे पहली जो सहूलियत है वह यह है कि सरकार ने एफपीओ गठन और प्राथमिक संचालन के लिए लगभग 15 से 18 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इसमें ऐसे एफपीओ को 3 साल तक उसके संचालन, उसके सीईओ की सैलरी, ऑफिशियल खर्चा को चलाने के लिए 15 से 18 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा अगर किसान अपना कोई बिजनेस प्लान बनाता है अपने उत्पादों के जरिए, उसके प्रोसेसिंग, उसका मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन करने का काम करता है, तो उसके लिए 15 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट और 2 करोड़ रुपए तक का जो है उनको क्रेडिट ऋण भी प्रदान किया जाता है। तो ऐसे में किसानों को न केवल एक अवसर मिला कि अपना जो है वो मूल्य तय करे, बल्कि उनके उत्पाद जो है ब्रांडिंग होकर के, उनका वैल्यू एडिशन होकर के आज विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं और जो विदेशी मानक है उस पर खड़े उतर रहे हैं। इसके अलावा किसानों को खेती में तमाम जरूरतें होती हैं, इक्विपमेंट की, कृषि यंत्र की, कीटनाशक की, खाद उर्वरक की, तो सरकार ने इस मामले में भी किसानों को सहूलियत प्रदान की है। किसानों को खाद बीज की दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, कृषि इनपुट बेचने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं और कृषि में काम आने वाले यंत्र हैं, चाहे वो पराली प्रबंधन को लेकर के हो, हार्वेस्टिंग को लेकर के हो, प्रोसेसिंग को लेकर के हो या जुताई गुड़ाई निराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे कृषि यंत्रों पर बहुत सारे ऐसे स्कीमें चलाई गई जिस पर 80% तक का अनुदान एफपीओ को प्रदान किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एफपीओ देश में काम कर रहे हैं जिसे फार्मर मशीनरी बैंक प्रदान किया गया है। इसमें उनको तमाम तरह के ऐसे यंत्र प्रदान किए गए हैं जो पराली प्रबंधन में काम आते हैं। जो हरित प्राधिकरण है उसका जो दिशा निर्देश है कि पराली न जलाया जाए, ऐसे में इन यंत्रों का उपयोग करके एफपीओ पराली प्रबंधन कर रहे हैं, पराली प्रबंधन के जरिए अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं और समय से खेती से जुड़े कार्य संपादित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एफपीओ के और फायदों की बात करें तो कुछ ऐसे एफपीओ की भी हम चर्चा करेंगे। जैसे झारखंड के हजारीबाग में एक महिलाओं का एफपीओ है जिसमें 7,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इस 7,000 महिलाओं में करीब 2500 महिलाएं ऐसी हैं जो शेयर धारक हैं। यह एफपीओ भारत का सबसे ज्यादा बिजनेस व्यवसाय करने वाला, टर्नओवर करने वाला महिलाओं का एफपीओ है जिसे चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस एफपीओ से जुड़ी हुई महिलाएं खुद न केवल अपने उत्पाद तैयार करती हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं और उसका विपणन भी करने का काम कर रही हैं। अगर हम राजस्थान के महिला एफपीओ की बात करें तो यहां पर समृद्धि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नाम की एक महिलाओं की एफपीओ है जिसमें करीब 2200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये प्रोसेसिंग और वैल्यूएडेशन का काम कर रही हैं, मसालों के प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं। तो महिलाओं ने साबित किया है कि हम केवल घर के कामकाज तक न सीमित होकर के अगर इन्हें अवसर प्रदान किया जाए तो यह देश दुनिया तक अपनी पहचान बना सकती हैं और ये पहचान दिलाने में भारत सरकार ने अहम भूमिका निभाई है, उन्हें ड्रोन दीदी के जरिए, एफपीओ के जरिए। ऐसे ही एक एफपीओ की हम चर्चा करेंगे जो बदायूं जनपद में स्थित है। यहां पर भी 300 महिलाओं का एक एफपीओ काम कर रहा है जो अलग अलग उत्पादों को तैयार करता है, उत्पादित करता है, उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करने का काम

0: रहा है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 जनपदों का एक विशेष चावल है जिसे काला नमक के नाम से जाना जाता है और ये जीआई टैग प्राप्त चावल है। पहले जो है इस चावल का मूल्य जो है 60 से 70 रुपए प्रति केजी जाता था, लेकिन एफपीओ की अवधारणा आने के बाद बहुत सारे ऐसे एफपीओ गठित हुए जिन्होंने काला नमक की न केवल वैश्विक लेवल पर मार्केटिंग ब्रांडिंग की बल्कि आज काला नमक बौद्धिस्ट देशों में बुद्ध के प्रसाद के तौर पर 1500 रुपए प्रति केजी तक जा रहा है और आमतौर पर औसत जो भारत में काला नमक चावल का विक्रय हो रहा है वो लगभग 150 से लेकर के 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है। इसी तरीके से सृष्टि नाम की एक एफपीओ है जो उत्तर प्रदेश के तराई जनपद में ही महाराजगंज में स्थित है, यहाँ 1500 महिलाओं का एक एफपीओ है जो वहाँ के आम और काला नमक का निर्यात करता है, उसके प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके विदेशों में निर्यात करने का काम कर रहा है। एफपीओ की अवधारणा की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती थी जब किसान के पास थोड़ा अनाज उत्पादन होता था और उनको मार्केट में या मंडी ले जाने में समस्या होती थी, तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पर दलहनी फसल होती है, तो दलहनी फसलों वाले क्षेत्र में ऐसे एफपीओ किसानों को संगठित किया गया और सरकार ने एक बड़ा अवसर यह प्रदान किया कि जिन किसानों के पास अपनी खेती की खुद की जमीन है, खुद खेती करते हैं और खुद उत्पादन से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही लोगों को एफपीओ का डायरेक्टर नियुक्त होने का अधिकार प्रदान किया गया, ऐसे ही लोगों को सदस्य या शेयरधारक होने का अवसर प्रदान किया गया। सरकार ने इस नीति में ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जो किसानों के नाम पर बिचौलिया बनकर के उनके उत्पाद को औने पौने रेट पर खरीदते थे, तो ऐसे किसान संगठित हो पाए हैं और जो छोटा छोटा उनका उत्पाद है वो एक जगह पर एक संगठन के तौर पर एकत्रित होता है और फिर वह एफपीओ उसके ब्रांडिंग मार्केटिंग वैल्यूएशन करने के बाद उसका मूल्य खुद निर्धारित करता है और एफपीओ द्वारा तय किए गए मूल्य पर यह बिक्री होता है। बहुत सारे आउटलेट्स एफपीओ के चल रहे देश सरकार ने खोला हुआ है जहां पर बहुत सारे एफपीओ अपने उत्पादों को ले आकर के वहां पर प्रदर्शित करते हैं, उनके आउटलेट खुले हुए हैं और किसानों द्वारा तय किए गए मूल्य पर ही उत्पाद लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। सरकार ने इसमें लगभग 6585 करोड़ रुपए का प्रावधान किया एफपीओ गठन के लिए और इसमें जिन एजेंसियों को लगाया गया इन एजेंसियों ने न केवल एफपीओ गठन कराने का काम किया बल्कि वह एफपीओ का परिचालन कैसे करेंगे, संचालन कैसे करेंगे, साथ ही अपना बिजनेस प्लान कैसे तैयार करेंगे और बिजनेस प्लान को सफल कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर के व्यावहारिक और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो दोनों तरह की ट्रेनिंग प्रदान की। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नाबार्ड ने निभाई, एसएफएसी ने निभाई और नाबार्ड और एसएफएसी जैसी जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की एक एजेंसी है सीमा द्वारा जो एफपीओ गठित किए गए, ऐसे सभी एफपीओ को शुरुआती 3 साल के परिचालन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई, ड्रोन क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए गए है, कीटनाशक खाद बीज कृषि यंत्र, इसके अलावा अनाज में जो नमी होती है उसको कम करने के लिए तमाम तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रावधान किया गया है। तो पिछले 12 सालों में देश में किसानों की हालत न केवल सुधरी है बल्कि जो महिलाएं गांव तक सीमित थी, अपने घरों तक सीमित थी, भूगत तक सीमित थी, वह महिलाएं घर से निकल करके एक ड्रोन पायलट के तौर पर काम कर रही हैं, खेती में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, साथ ही जो किसान आढ़तियों और बिचौलियों के चंगुल में फंसे हुए थे वह आढ़तियों और बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होकर के खुद अपने मूल्य का निर्धारण कर पा रहे हैं। सरकार की जो धारणा थी किसान लागत की अपेक्षा कम से कम 2 गुना आय प्राप्त करे, एफपीओ के आने के बाद इस धारणा को और ज्यादा बल मिला है और आज के दौर में बहुत सारे ऐसे एफपीओ हैं जो 4 से 5 गुना तक भी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और यह सब कुछ संभव हुआ है वर्तमान सरकार के दूरदर्शी नजरिए से और उसके मजबूत इरादे के साथ।
1: तो पायल बहन, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों को मिली है। वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम के तहत जिसमें महिला सशक्तिकरण और एफपीओ के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे वार्ताकार बृहस्पति कुमार पांडे। और सरकार ने ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए चलाई हुई है पायल बहन, उनमें से एक योजना है गोवर्धन योजना।
2: बिल्कुल सही कहा आपने अतुल भाई, गोबर धन योजना यानी GOBAR धन योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और जैविक कचरे को बायोगैस व जैविक खाद में बदलना है। ये ग्रामीण स्वच्छता में भी अतुल भाई सुधार लाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। किसानों की आय बढ़ाने में भी ये मदद करता है। भाई पशुपालन के साथ साथ भाई इनके गोबर से भी आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसका एक तरह से जो पूरा नाम है वो है

0: गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है, और इसका जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना का एक नोडल विभाग है, इसके अंतर्गत ये योजना
1: कार्य कर रहे हैं योजना। और देखिए गांवों को स्वच्छ रखना पायल बहन और ठोस कचरे का सुरक्षित प्रबंधन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, और गाय के गोबर और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके बायोगैस, बायो सीएनजी और जैविक उर्वरक तैयार करना, यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं पहले वो अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों को कम करके जैविक खाद का प्रयोग अगर करते हैं तो उनका जो फसल का उत्पादन है वो भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छी आएगी। ग्रामीण परिवारों और किसानों को अतिरिक्त आय का साधन एक तरह से इससे प्रदान होता है। आर्थिक सहायता स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के तहत गांव में सामुदायिक या क्लस्टर बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए जिला जो है वो 50 लाख तक की वित्तीय सहायता इसमें।
1: हाँ, अगर कोई भी हमारा किसान भाई अगर करना चाहता है तो वो जो है वित्तीय सहायता उसे मिल सकती है 50 लाख रुपए तक की। और देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया यही है कि अपने राज्य या जिले में चल रही परियोजनाओं की स्थिति या इसके लाभार्थी की पात्रता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। जनसेवा केंद्र पर जाकर के भी आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: गर्मी का मौसम भी चल रहा है और हमारे जो किसान भाई हैं भाई वो धान की नर्सरी की भी तैयारी जो है कर रहे हैं, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर बारिश हुई है जैसे देख रहे हैं कि बारिश भी हो चुकी है तो खेत के अंदर खरपतवार भी इस समय पैदा हो जाते हैं, तो अपने खेत की भाई नर्सरी आप लगाना जब तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आप अपने खेत की जो है जुताई अवश्य कर लें जिससे खेत में जो है खरपतवार नष्ट हो जाए और अपना जो है अपना धान की रोपाई आप समय से कर सकें।
0: तो आइए, ये तो रही काम की बात अतुल भाई, और अब करवाते हैं अपने सभी भाई बहनों का मनोरंजन और सुनवाते हैं एक उपदेश
1: देश की आवाज़।

0: तो ब्रजेश के इस उपदेश के साथ ही अतुल भाई हमारा आज का ये कुशीगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारसर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 306.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं गजल कव्वाली।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 8:45 होने को कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।

0: इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 42 जनकल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में IIT दिल्ली एक बार फिर देश का सर्वोच्च संस्थान बना। दिल्ली पुलिस ने शिशु तस्करी रैकेट का पर्दाफाश कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय राजधानी में 42 जनकल्याण शिविर आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान से प्रेरित है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केन्द्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इन शिविरों में नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सकेगा।
4: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इन शिविरों में पिंक कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, लखपति बिटिया योजना और प्रधानमंत्री उदय योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने विश्वास नगर क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ओम प्रकाश शर्मा, अभय वर्मा और संजय गोयल भी शामिल रहे। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहेब सिंह ने आज दिल्ली सरकार द्वारा बंगाली मार्केट और NDMC सामुदायिक केंद्र में आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इन शिविरों में आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विधवा और विवाह सहायता योजनाएं सहित अनेक जनहितकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में आने वाले लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत आज भोलानाथ नगर से घर घर संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश में हुए परिवर्तनकारी विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं और सुशासन की उपलब्धियों के बारे में स्थानीय नागरिकों से संवाद किया।
5: प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2014 में 200 से अधिक योजनाएं जन कल्याण की बनाई, न केवल बनाई बल्कि उनको मूर्त रूप दिया। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने ये योजनाएं बनाई और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिला है।
3: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
6: बैठक के दौरान तरनजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों के कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड सहित ग्रुप सी के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे बताया कि सभी को समान अवसर देने और देश के लिए उनकी सेवा को सम्मान देने के उद्देश्य से इस प्रावधान के अंतर्गत भर्ती योग्य पूर्व अग्निवीरों के लिए खुली रहेगी। श्री संधू ने आगे बताया कि सभी संबंधित विभागों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव

0: बचाव और प्रक्रियाएं पूरी करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तय की गई है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योत्सना पांडे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पे 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 75 पायदान ऊपर चढ़कर 686वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वैश्विक रैंकिंग में 105वें स्थान पर शामिल है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 52 भारतीय संस्थान शामिल है, जिनमें से 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 550 संस्थानों में जगह बनाई है। आईआईटी बम्बई और आईआईटी मद्रास भी विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में देश के कुल 52 संस्थानों को स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने एक संदेश जारी कर विद्यार्थियों को अपनी तैयारियों पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने साल भर कड़ी मेहनत की है और अब उनका पूरा ध्यान परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने पर होना चाहिए। एजेंसी ने छात्रों को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित गतिविधि के प्रयास में सख्ती से निपटा जाएगा। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने तथा अपुष्ट जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। केवल एजेंसी की आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करने को कहा गया है। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने इस वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान और ई प्रतिज्ञा मंच के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए छात्रों से नशा मुक्त भारत के राजदूत बनने और नशे की समस्या के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स द्वारा जनगणना कार्यों में बिताई गई अवधि को आधिकारिक तौर पर नियमित कार्य दिवसों के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हजारों गेस्ट टीचर्स के पेशेवर हितों की रक्षा के लिए एक शिक्षक हितैषी कदम है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज द्वारका स्थित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अटल इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि यह केंद्र दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देगा। नींव, दिल्ली एआई ग्राउंड और दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: अटल जी के नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नेताजी सुभाष चंद्र MSUT में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इस प्रकार का एक इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है जो अपने अपने तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज को सोचकर आगे बढ़ने वाले युवाओं को

0: पैरों पर खड़ा होने का, जहां उन्हें फेलियर का डर ना हो, जहां उन्हें सक्सेस प्राप्त होने पर धोखे का डर ना हो, जहां उन्हें सही गाइडेंस ना मिलने का खौफ ना हो, ये प्रयास NSUT और AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा किया गया है। इससे दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल मिलेगा।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। श्री सिरसा ने बताया कि इन शिविरों में कई केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक सरल और सुगम तरीके से पहुंचाना है।
2: इन जन कल्याण शिविर के अंदर पिंक कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, हमारी दिल्ली सरकार की स्कीमें हो या भारत सरकार की केंद्रीय स्कीमें हो जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, उनके 12 साल के उपलक्ष में ये कैंप लगाए गए हैं। इसके अंदर आज लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, आज लोगों को हेल्थ कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी बना के दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक समूह बनाया गया जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सारी स्कीमों का एक जगह शिविर कैंप लगाकर लोगों के लिए एक बड़ा काम करने का काम किया है।
1: ये शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है। एक रिपोर्ट। नवगठित समितियों के महत्व के बारे में श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां जन कल्याण से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी, गहन निरीक्षण तथा सुव्यवस्थित विचार विमर्श सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नामित सदस्यों का सामूहिक अनुभव दिल्ली में लोकतांत्रिक जवाबदेही को और मजबूत करेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां विधानसभा की कार्यकुशलता, जवाबदेही और जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करेंगी। इन समितियों में कार्य मंत्रणा समिति, सरकारी आश्वासन समिति, नियम समिति, महिला और बाल कल्याण समिति, पर्यावरण समिति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति तथा अन्य शामिल हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
1: दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय शिशु तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 5 नवजात शिशु को भी बचाया गया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की है। एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता 2026 कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 19 से 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 34 देशों के 400 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। ओलंपियन भवानी देवी का इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। राजधानी में आज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाये रहने तथा धूप रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 42 जन कल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के

सर्वोच्च संस्थान बना। और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका, आपके साथ में आपका अपना दोस्त मोहन। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।

अभी आपने गीत सुना वारिस से, अमृता सिंह और राज बब्बर पर फिल्माया गया गीत और लता मंगेशकर के स्वर में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत मालिका, फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। सभी श्रोताओं का फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कार्यक्रम में चुने हैं कुछ चुनिंदा गीत जो आपको बेहद पसंद आते हैं और दिल को भाते हैं, हर कोई सुनना चाहता है ताकि हर किसी को लगे कि वो गीत उसके लिए है। ऐसी कोशिश हमारी तरफ से आप सब श्रोताओं के लिए।

अभी आपने गीत सुना हीरो फिल्म से तू मेरा हीरो है, अनुराधा पौडवाल और मनोहर उदास की आवाज में। आप सुन रहे हैं गीत मालिका, गीतों की माला, ऐसे गीत जो आप सबको पसंद आते हैं, जिन्हें हर कोई सुनना चाहता है। हमारा प्रयास आपके लिए। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सुर फिल्म से, लकी अलग की आवाज में।

तुम्हारी यादों का मौसम बड़ा सुहाना है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बशीर बद्र साहब के ये बोल बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत उम्दा शायर थे, बहुत बेहतरीन शेर उन्होंने लिखे, अपने आप में एक मुकाम थे। कुछ ही वक्त पहले उनका निधन हुआ और उर्दू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई अच्छा ही हमारे बीच से चले जाए तो उसकी यादें रह जाती हैं, उसका साथ एक कमी के रूप में महसूस होता है, एक अपनापन हम ढूंढते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि साथ हमेशा बना रहता तो बहुत अच्छा होता।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत मालिका कार्यक्रम आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सनसना से।

सिलसिला फिल्म से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी का संगीत। गीत अपने आप में उम्दा, संगीत अपने आप में बेहतरीन, काल जयी रचना, ऐसे गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं गीत मालिका कार्यक्रम में। आइए अब सुनते हैं चमेली फिल्म से गीत सुनिधि चौहान के स्वर में।

और श्रोताओं, गीतमाला कार्यक्रम में अब आखिरी गीत फिल्म कामचोर से लता मंगेशकर की ही आवाज में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और गीत को सुनते हैं, बहुत अच्छा गीत है, आप सभी को पसंद आएगा।

इस गीत के साथ मुझे आपसे लेनी होगी इजाजत। ये आपसे मेरी गुजारिश है कि अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी, तब तक अपने दोस्त मोहन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: असम कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। विस्तार दिया है कि सीईओ आर्थिक मनीष ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, AI अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु AI पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। CMA CGM के चेयरमैन और सीईओ रडल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। समाचार
0: पेरिस, फ्रांस। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर

0: बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। यह भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हेडमा कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: non è un duca, non mi faccio fare un giallo, non faccio un signore. Non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare un giallo, non mi faccio fare भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए अस्कार 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें ascar.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खराब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। गुड इवनिंग, this is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UGV examination scheduled on Sunday.
2: Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China.

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। रात के 9:15 हुए हैं। अब हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

ये आकाशवाणी है, आप हमें सुन रहे हैं मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। आइए अब आपको इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में बता दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे एक फनकार प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में गाई हुई कुछ गजलें। 9:45 पर खबरें नश्र की जाएंगी। आपकी सेहत के हवाले से कुछ टिप्स दिए जाएंगे 9:55 पर। रात 10 बजे आप सुन सकेंगे हरफे सुखन प्रोग्राम। 10:30 पर आप सुनेंगे आप सबके फरमाइश पर मबनी प्रोग्राम तामिले शाद। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बड़े सगीर से। बज़्मे मौसिकी इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा रात 11:45 पर। इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे राग बिहाग में ख्याल उस्ताद नासिर अहमद खान से। आलमी खबरों का वक्त रहेगा रात 12 बजे। 12:10 पर क्लासिक की मौसिकी में आप सुनेंगे सितार पर राग बिहाग और राग भैरवी धुन विदुषी शर्मिष्ठा सेन से। आखिरी शब प्रोग्राम का वक्त रहेगा रात 12:30 का। 12:50 पर खबरें नश्र की जाएंगी और 1 बजे हमारी मजलिस खत्म हो जाएगी।

0: इसके साथ ही एक फनकार प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। अब वक्त है खबरों का।
1: अब असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवा टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पज़िश्कियां ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मुफाहमतनामे को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा मास्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। और मीनाक्षी हुड्डा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल 4 भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। अब खबरें।

उन्होंने आलमी इख्तियारकारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी के रही मिन्नत है। जनरल मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंगें की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके। वज़ीरत ख़ारिजा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतायज को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान तीन अहम सतूनों तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैन-अल-अक़वामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीस में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने शिरकत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के गरज से आज आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने इम्तिहान के अमल में सालमियत, शफाफियत और सलाहियत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतअल्लिका अहलकारों को हिदायत दी कि वो निगरानी कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को आजादाना और मुनसिफाना तौर पर मुनक़िद किए जाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम हों। जनाब प्रधान ने कहा कि वजारत की जानिब से नामजद अफराद तमाम रियासतों में तैनात होंगे ताकि वो इम्तिहान से मुतालिक सरगर्मियों से तालमेल कायम रखें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की सदारत में कायम मरकजी कमांड सेंटर को रिपोर्ट करें। मीटिंग के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से भी ये कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि उम्मीदवारों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएं। नीट यूजी इम्तिहान 2026 में अब जबकि सिर्फ तीन रोज बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चाहिए कि पुरसकून रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने पूरे साल सख्त मेहनत की है, लिहाजा अब उन्हें मुनासिब सुकून और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। एनटीए ने एक महफूज, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में इम्तिहान मुनक़िद कराए जाने की यकीन दहानी भी कराई। वजारत तालीम ने आज बताया कि यूनिवर्सिटी की क्यूएस आलमी दर्जाबंदी 2027 में 52 भारतीय तालीमी इदारे शामिल हैं। भारत की जानिब से सबसे ऊपर के दर्जे में आईआईटी दिल्ली है जो आलमी सतह पर 118वें नंबर पर है, जबकि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास भी दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटियों में शामिल हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर भारत के तालीम से मुतालिक नक्शे कदम मुसलसल उसत अख्तियार कर रहे हैं। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगु करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब की हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 लबैटम अवार्ड अता किये। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव बरामदात को मुस्तहकम करने के कौमी लायामल का जायजा लिया। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बड़ी स्कीमों का जायजा लेने के दौरान जनाब शाह ने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके हुक्मरानी को बेहतर बनाकर और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगी, खिदमात की मुश्तरक प्लेटफॉर्म और खिदमात की फरोख्तशुदा डिलीवरी के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग को मुस्तहकम करने की गरज से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया कि आने वाले वर्षों में मुजवजा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के तआवुन में उसके किरदार के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सरकार सारथी टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले इकदाम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया।

बहुत ज्यादा हड्डी दरारे आते हैं, आपको मोशन ठीक से नहीं होता, आप बहुत सारी चीजों के लिए परेशान रहते हैं और भूख लगती है लेकिन खा नहीं पाते। इन सब चीजों से आजकल मेरे ख्याल से 90% लोग जूझ रहे हैं और इन सब चीजों से जूझते हुए भी हम उस वक्त कुछ नहीं सोचते जब हमारे साथ वो परेशानी नहीं होती कुछ वक्त के लिए। उस वक्त हम कुछ भी खा लेते हैं किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, सुबह से शाम तक अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, इससे आपके जिस्म में चर्बी जो है वो बढ़ सकती है, इंसुलिन कम होने लगती है जो आपके आपका जिस्म बनाता है और उसकी वजह से शुगर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसको रोकने के लिए आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे अपने खाने पीने में ही अगर छोटे छोटे से आप चेंजेस करें, बदलाव करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता खाने को चबा कर खाएं, नमक और बाहर के जो खाने हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें और ना खाएं तो बेहतर है। रोज खेलने की आदत अपनी जिंदगी में शामिल करें, खाने के 15 मिनट बाद तक आप अगर टहलें तो आपकी सेहत पर अच्छे आप नतीज महसूस करेंगे। इसके अलावा अदरक की चाय और पुदीने के पत्ते अगर आप अपनी जिंदगी में अपने खाने पीने में इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो आपकी गैस की जो परेशानी है वो किसी हद तक कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा आप छोटे छोटे मील लीजिए, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, इकट्ठा बैठकर एक साथ भर के खाना मत खाइए, उससे आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि वो हजम होने में परेशानी हो जाती है। पेट भरकर कोई अच्छी चीजें हम बहुत ज्यादा खा ही लेते हैं लेकिन उस वक्त हमें बहुत परेशानी हो जाती है, तो कोशिश कीजिए कि आपका पेट आप पूरा ना भर के थोड़ा खाली छोड़ें ताकि उसको हजम होने के लिए जगह मिल सके। इसके अलावा बाहर की चीजों को आप बहुत ज्यादा अगर ऐसे सिचुएशन में आप पहले से हैं तो अवॉइड कीजिए। बाहर की कोई भी चीज जो पैकेट वाली होती है या फिर इस तरीके की होती है जो प्रोसेस्ड हो वो ना खाएं, असली जो बनी हुई चीजें हैं उन्हें खाने की, कुदरती जो फल फ्रूट या उसके अलावा आपके सब्जियां हैं उनको यानी फाइबर को लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी जिंदगी में फाइबर इनटेक अगर होता है, फाइबर आप ज्यादा खाते हैं तो हद से ज्यादा भी मत खाइएगा लेकिन जितना खाते हैं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील कराता है, अच्छा आपके पेट में उसका असर होता है और आपकी गंदगी बाहर करने के लिए फाइबर आपके पेट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अपनी बॉडी को अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें, यानी पानी जितना हो सके है वो पीने की कोशिश कीजिए, कम से कम 6 से 7 लीटर पानी कोशिश कीजिए कि आप पिए ऐसे सिचुएशन में अगर आप पहले से हैं तो, ताकि आपके जिस्म में जो भी गंदगी है वो बाहर निकल सके, वो पानी के जरिए ही निकलती है। और पानी पीने के अलावा टहलने का जो वॉक करने का जो सिस्टम है वो अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए क्योंकि वो बेइंतहा कारगर साबित होता है। अगर आप थोड़ा सा टहलते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, आप खुद देखेंगे ये चीज। उसके अलावा काला नमक अगर आपकी के खाने में आपकी डाइट में शामिल हो जाए तो वो भी आपके पेट की ब्लोटिंग को कम करता है और आपके जिस्म से गंदगी बाहर करने का करवाने का काम करता है। अगर पानी में घोलकर आप थोड़ा सा रोज लें तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसके अलावा सौंफ और जीरे का भी इस्तेमाल अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें तो आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है ब्लोटिंग से बचने का। खासतौर पर पेट फूलना और गैस बनना आपके लिए बहुत परेशान कुन सिचुएशन पैदा कर सकती है, उससे बचने की कोशिश कीजिए। और अगर पहले से कोई परेशानी आपकी जिंदगी में है या फिर आप उसकी दवाइयां खा रहे हैं तो कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही आज का हेल्थ टिप्स प्रोग्राम यहीं पर खत्म करने की हिना मौज को इजाजत दीजिए। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।

अभी आप सुन रहे थे हरफे सुखन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की पेशकश थी अनवार अहमद खान की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है आप सबकी फरमाइश पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद। तामिल इरशाद प्रोग्राम में हिना मौज का आदाब कबूल कीजिए।

उनके जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम के चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

फिल्म तुमसा नहीं देखा। आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की थी। मौसिकी ओपी नैयर की। फरमाइश आप सबकी। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, हार्दिक बत्ता पटियाला से शामिल हुए हैं। हरगोविंद नगर नवाज शहर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, प्रतीक्षा संधू। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार, ताज मंजिल लक्कर बाजार खंडवा से। तुलसी मस्कीन, मीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और इनके अहले खाना पंचकुला चंडीगढ़ से शामिल हुए हैं। राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और इनके साथी। और तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन शामिल हुए थे गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा नई दिल्ली से। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मजनू कटीला से। छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और यूसुफ खत्री। के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और इनके साथी, तहसील रोड गंज डुंडवारा से। अगला नगमा आप सबकी समातों की नजर जो हम करेंगे वो है लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन की मौसिकी। इस नगमे की फरमाइश भेजी है आप सबने। शाइना हसन, सैयद मसरूर, नाजिया इब्राहिम और इनके साथी गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा मोहाली चंडीगढ़ से। अनिल, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनुश्री बुरांडे और इनके साथी पंडर करवा से।

डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोरा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह और इनके साथी शामिल हुए हैं। मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर और सुधीर नूतन मॉडल टाउन करनाल से, राहुल मनवर, सरला मनवर बेबी प्रियांशी यवतमाल से, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख रहीम मुन्ना। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा।

कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु और तासु पाखुड़ झारखंड से, गजानंद येले, नवदीप येले, सुशील येले, सिद्धार्थ नगर, दरियापुर बाबली से, अहमद भाई फूलवाले, अकबाल अहमद फूलवाले और शमीम अहमद फूलवाले और इनके साथ बहुत सारे लोग शामिल हैं, छोटी बलिया मुंबई करजत से, फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और रफीक मुल्ला जी शामिल हुए हैं कर्नाटका से, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज के साथ और बहुत सारे इनके साथी हैं, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सितारा परवीन और असमानाज अंसारी, पटना बिहार से वसीम अकरम, पालनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और इनके साथी, संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और समरप्रीत पंचोलिया, घंटाघर चौक खंडवा से, मलेर कोटला पंजाब से रौनक खातून, सबिया खातून और मुस्कान खातून। आप सबकी फरमाइश पर लीजिए ये नगमा।

बुराना ने, लाल बाबू दीवाना और भारती देवी शामिल हुए हैं। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। दिल्ली यमुना विहार से अफसाना खातून, डोनट बापू और हेमा रानी। विनायक बेंदे, श्रीमती मंगला बेंदे, शुभम बेंदे अकोट से शामिल हुए हैं। लुबना अंसारी, सबा अंसारी, बुशरा अंसारी कृष्ण की नगरी मथुरा से। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहेब और बिहारी बाबू। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा सदर बाजार कुरावली से। दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, हर्षा रामेकर राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। बजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी अस्तपुरा जिला मऊ से। किशन सबकाल, आशा सबकाल, साई राज सबकाल, शास्त्री नगर बीड शहर से। हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता गांव नथाना पंजाब से। नंदा बोरखे, उत्तम जमदाड़े और शाहजी बोरखे हिंगोली महाराष्ट्र से इन्होंने शिरकत की है। जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और भुवनेश्वरी देवी जिला बागपत से इन्होंने शमूलियत की है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली, फहीम मंसूरी बांदा यूपी से शामिल हुए हैं फातिमा मंसूरी के साथ। ये हैं जी कौन, शबनम अकरम और तबरेज और इनके शौहर हैं अकरम, इन्होंने शिरकत की है ठीकरी मध्य प्रदेश से। कृष्ण कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू। मलकापुर जिला बुल्डाना से नारायण इंगे, मंगला अजय और इनके साथी। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान राजस्थान से शामिल हुए हैं। बोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और गौरी सुरलकर। उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, मंजू अशरफ। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा।

अल्लानामा फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से है, आवाज मोहम्मद रफी की है, फरमाइश सतीश अनेजा, विमल विमला अनेजा, चंडीगढ़ सिटी से। अजीज भाई, मतीन भाई, सादिक और फारूक भाई शामिल हुए हैं निजामाबाद तेलंगाना से। जवाहरनगर दुर्ग से आशिका अमरे, करुणा और विपुल कामरे। अलीगढ़ से सलीम अख्तर, रेशमा बेगम शामिल हुए हैं। नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार राजधानी रायपुर से। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, जमानिया गाजीपुर से। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। गांव हिप्पस सोगा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख, फौजी सायरा और सायरा बानो शेख और करिश्मा शेख। साधना रानी, किशोर गुप्ता छतरी तालाब अमरावती से। डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया पटेल नगर मलोट से। डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी छत्तीसगढ़ से। सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चनाताई गुंडाने, हीरामन शेंडे और इनके साथ ही शामिल हुए हैं राहुल नगर अमरावती से। शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुच्चू बाबा सब्जी मंडी बुलजाना से। अनिल जैन, साइमा जैन और मास्टर जीवियम जैन मेरठ से शामिल हुए हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। सुरेश खुराना, किरण खुराना, आरव खुराना एमएलबी रोड ग्वालियर से। नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और इनके साथी फजल का पंजाब से। मूंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नफ़ा।

0: कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता दले अनिकेत दले अनंत भगत अरुणा भगत सुलोचना भगत चेतन भगत पूना जंक्शन मस्तानपुर से भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत मृगो विजय महोबिया कविता महोबिया और पेंटर बाबू शामिल हुए हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा।
1: निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना।

आप सबकी फरमाइश पर अगला नगमा है फिल्म सीआईडी से और आवाज है शमशाद बेगम की और फरमाइश है उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह और इनके साथी, मलोट पंजाब आदर्श नगर से राज शर्मा, मीना शर्मा, निवान शर्मा। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। देव रामेकर, अक्षय रामेकर आप शामिल हो चुके हैं, बार बार मत भेजिए। बबलू ठेकेदार शेख वजीर सुहेल शेख, मुताला बाजार से। फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी ये शामिल हुए हैं बरेली से। इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिर प्रवीण आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा झारखंड गिरडी से, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम अनबर, भुवन प्रकाश गौतम अमीर खुसरो रोड गंज डुंडवारा से। हमीदा बानो, आसिया भदौरिया और सईदा बानो खंडवा से शामिल हुए हैं। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और इनके नन्हे मुन्ने साथी, बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत नीशु मुख्तसर पंजाब से। सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, मीनाक्षी तिवारी करनाल मॉडल टाउन से इन्होंने शमूलियत की है। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर नगमा।

अगला नगमा आप तक जो हम पहुंचाएंगे वो है आशा भोसले की आवाज में। बहुत खूबसूरत नगमा है आप सबकी फरमाइश पर फिल्म फागुन से। इसके बोल लिखे हैं अमर जलालाबादी ने और मौसिकी से सजाया है ओपी नैयर ने। फरमाइश आप सबकी। कर्नाटका गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, आसिफ इकबाल, शब्बीर बनहट्टी, नारायण गायकवाड़, नया दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ शामिल हुए हैं। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और रशीद रक्षित। मीर हसन निंदवानी, मोहम्मद खान निंदवानी, शब्बीर हसन निंदवानी तंगवानी से। सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया शामिल हुए हैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा, बेबी अवीरा बोराव के नगर श्रीरामपुर से।

राशिद हुसैन अंसारी आपका अच्छा आप अलग लोग हैं। आशना अंसारी मोहम्मद कैफ अंसारी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। इंद्र भान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह चिरमिरी गुरासिया कालरी से। अब्दुल गफार डावर खुशनसीब अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर और इनके साथ ही संजय कॉलोनी खंडवा से शमूलियत की है इन्होंने। मिश्री लाल विश्वकर्मा मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ तखतपुर से। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। सुब्रत चौधरी कोलकाता से शामिल हुए हैं। तो लीजिए ये नगमा आप सबकी फरमाइश पर।

अगला नगमा जो आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में वो है फिल्म काला पानी से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, मजरू के बोल हैं और एसडी बर्मन का म्यूजिक यानी मौसिकी। फरमाइश भेजिए आवाज विकास कॉलोनी कासगंज से। पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुयश

आशीष गौड़। बाबू भाई और भारती देवी आपका शामिल हो चुका है, इतने मैसेजेस मत भेजिए। प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से। सुयश चौरसिया ने पैगाम भेजा है, और कहां से भेजा है, इनके साथ सरोज चौरसिया भी शामिल हैं। फर्रुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, छच्छर हरियाणा से। पंजाब से मिट्टू टॉमस, पिंकी अरोड़ा। सबिया खानम, फरीदा खानम, रईसा बानो, चमनपुरा उदयपुर से। एम असलम सैफी, जेबुन्निसा बेगम, सद्दाम सोनी शामिल हुए हैं बलराम गेट कासगंज से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले। जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो, जनकपुरी सहारनपुर से। तो आप सबकी फरमाइश पर ये नाफमान।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे
1: अच्छा जीने हरी चलो
2: आज के प्रोग्राम का आखिरी नगमा जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे लेकिन फरमाइश है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता रुद्र गुप्ता और रानी मुकेश गुप्ता शाहना बेगम मरियम अरशाद अहमद अजहर ये शामिल हुए हैं खादर नई दिल्ली से शाहिद अली इफ्फत फारूकी और हिफ्जा अली

तांबरम चेन्नई से। तो आप सबकी फरमाइश पर आज के इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा जो हम सब आपके लिए पेश कर रहे हैं वह फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से।

इस नगमे के साथ ही आज का तामिल इरशाद प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब वक्त है प्रोग्राम बज़्मे मौसिकी का। आज इस प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे उस्ताद नासिर अहमद खान से ख्याल राग बिहाग में।

0: sakıt. Kese sakıt.
1: Abi aapne program Bazm-e Mausiqi ke tahat Raag Behag mein khayal suna Ustad Nasir Ahmed Khan se. Ye Akashwani ki Urdu service hai. आप हमें सुन रहे हैं मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर. अब वक्त है आलमी खबरों का.
2: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से आलमी खबरें सुनिए. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो. उन्होंने पेरिस में वीवा टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया. वज़ीर आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादले ख्याल भी किया. ईरान के सदर मसूद पिदिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखतशुदा मुफाहमतनामे को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया. यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा मास्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है और मीनाक्षी हुड्डा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं. कल 4 भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे. अब खबरें तफसील से. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवा टेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया. वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो. उन्होंने कहा कि भारत यह मानता है कि रखनांदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए. उन्होंने आलमी इख्तराआतकारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं. वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी की रहीने मिन्नत है. जनाब मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंगें की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी और तकनीकी ताउन को और भी मजबूत किया जा सके. वजारत खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतीज को उजागर किया. पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान 3 अहम सुतूनों तजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई. उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीस में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है. इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप ने शिरकत की. खारजा सेक्रेटरी मिश्री ने इंग्लैंड, कनाडा, यूरोपीय यूनियन और अमरीका के साथ तजारती मुजाकरात में पेशरफ्त की बात भी बताई. मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग, नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव

0: 90 फ़िरकों से वाबस्ता अफराद इसमें शिरकत के लिए मुतवज्जह हो रहे हैं। निजी मकबूलियत, जिस्मानी सेहत के फरोग, ज़हनी तौर पर चुस्त दुरुस्त होने और एक मुतवाजन तर्ज़ ज़िंदगी अख्तियार करने में योगा के रोल को उजागर करती है। चीन के गुयांग में जारी आलमी मुक्केबाजी 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम के जुमरे में 16 बूट मरहले में पोलैंड की नतालिया किज़ियोस्का पर 5-0 से शानदार जीत हासिल की। 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाखिस्तान के अलाओ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्नेह का मुकाबला पोलैंड की किंग क्राउका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चेंग जूयोंग से होगा। 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला अजरबैजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवाटेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वजीर आजम ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसीह के मंसूबों पर तबादले ख्याल किया। ईरान के सदर मसूद पेदशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखतशुदा मुफाहमतनामे को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा मास्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। और मीनाक्षी हुड्डा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल 4 भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए क्लासिकी मौसिकी के प्रोग्राम में सितार पर राग बिहाग और राग भैरवी। फनकार हैं विदुषी शर्मिष्ठा सेन।

इसके साथ ही आज का क्लासिक की मौसिकी का प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम आखिरे शब। आखिरे शब में हिना मौज का आदाब कबूल कीजिए।

शबनम घूमर मोती घूमर कलियों पे फूलों पे छा जा घूमर कलियों पे फूलों पे छा जा घूमर शबनम घूमर मोती घूमर कलियों पे फूलों पे

0: इसके साथ ही आज का आखिरी शब्द प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। वक्त है खबरों का।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवा टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। ईरान के सदर मसूद पेदशकियान ने ईरान और अफ्रीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मुफाहमतनामे को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा मास्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है और मीनाक्षी हुड्डा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज 4 भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवा टेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने कहा कि भारत यह मानता है कि रखनांदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए। उन्होंने आलमी इख्तराआतकारों से भी जोर देकर कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी की रही ने मिन्नत है। जनाब मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंगें की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी और तकनीकी ताउन को और भी मजबूत किया जा सके। वजारत खारजा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतीज को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान 3 अहम सुतूनों तजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैन-उल-अक़वामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीस में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप ने शिरकत की। खारजा सेक्रेटरी मिश्री ने इंग्लैंड, कनाडा, यूरोपीय यूनियन और अमरीका के साथ तजारती मुजाकरात में पेशरफ्त की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि G7 आउटरीच समिट में समंदरी सरहदों की सलामती, समंदर में सफर करने वालों के तहफ्फुज, मगरबी एशिया में रोनमा होने वाले वाकयात और सेहत और इक्तसादी चैलेंजों से मुतालिक बढ़े हुए बैन-उल-अक़वामी ताउन पर तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग, नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव बरामदात को मुस्तहकम करने के कौमी लाहे अमल का जायजा लिया। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बड़ी स्कीमों का जायजा लेने के दौरान जनाब शाह ने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके, हुक्मरानी को बेहतर बनाकर और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगी, खिदमात के मुश्तरका प्लेटफॉर्म और खिदमात की फरोख्तशुदा डिलीवरी के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग को मुस्तहकम करने की गरज से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कॉर्पोरेट उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया कि आने वाले बरसों में मुजव्वजा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के ताउन में उसके किरदार से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अकलियती उमूर के

0: ईर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीरे मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब की हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 लब्बैतुल अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। ईरान के सदर मसूद पेदिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाए नए मुफाहमतनामे को एक तारीखी दस्तावेज और एक मजबूत ईरान की जानिब से पैगाम करार दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जा सकता है और उन्होंने अपने वकार, आजादी और इलाकाई ताउन के तहफ्फुज के साथ आलमी अमन के तई ईरान के अज़्म की तौसीक की। वर्सा में G7 समिट से अलग फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों के साथ एक इशारे के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दस्तावेज पर दस्तखत करने से कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि यह समझौता तय पाना आसान नहीं था। दस्तखत किए गए मुआहदे को बाद में तेहरान भेजा गया और फिर सदर पेदिशकियान ने इस पर दस्तखत किए। फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों ने इस मुआहदे का यह कहकर खैर मकदम किया कि इससे देरपा अमन और अपनाए हुरमुस के दोबारा खोले जाने के लिए राह हमवार होगी, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की कीमत में कमी आने में मदद मिलेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन ने मास्को की एक तेल रिफाइनरी पर इस हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा रातों रात हमला किया। इसके अलावा रूस के रोस्तोफ खित्ते में कई मकामात को निशाना बनाया गया। मास्को के मेयर सरगेई सोबयानिन ने कहा कि इन हमलों में मास्को के जुनूब मशरकी मदाफात में वाकई मास्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन से हमला किया गया। रूस की वजारत दफा ने बताया कि मुल्क भर में यूक्रेन के 555 ड्रोन को बीच में ही रोककर जाया कर दिया गया। रूस की ट्रांसपोर्ट वजारत ने बताया कि हमले के बाद मास्को के 4 हवाई अड्डों से परवाजें रोक दी गईं। रूस की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने कहा है कि मास्को पर यह हमला इस बरस के सबसे बड़े हमलों में से एक है। इधर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की जारी फौजी कार्रवाइयों के जवाब में एक काबिले जवाज़ रद्देअमल करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़े नए जाब्ते को मंजूरी दी है जिसके तहत सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र 15 बरस तय की गई है। इस बड़े कदम का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों के तहफ्फुज को मुस्तहकम करना है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने यह फैसला किया। इस करारदाद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने की इजाजत नहीं होगी और न ही उन्हें इंटरेक्टिव फीचर जैसे किसी मवाद को पोस्ट करने, उस पर कमेंट करने या उसे शेयर करने या पब्लिक ग्रुपों को ज्वाइन करने तक रसाई हासिल नहीं होगी। 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को महदूद रसाई हासिल होगी, लेकिन वो सख्त निगरानी ही में रसाई हासिल कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में योगा के बैनुल अक्वामी दिन 2026 से कबल योगा की सरगर्मियों की एक बढ़ती हुई लहर नजर आ रही है जो तमाम अमारात में मश्क और अमल से आगे बढ़कर सेहतयाबी की एक मुल्कीयर तहरीक बनती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में मुत्तहिदा अरब अमारात में योगा गैर रस्मी ग्रुप सेशन से आगे बढ़कर स्कूलों, कामकाज की जगहों और आवामी इदारों में सेहतयाबी से मुतालिक एक बाकायदा स्कीम का हिस्सा बन गया है। चीन के गुयांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में कल भारत की मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 बूट मरहले में पोलैंड की नतालिया किज़ियोस्का पर 5-0 से शानदार जीत हासिल की। 51 किलोग्राम जुमरे के खवातीन जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाकिस्तान के अलाओ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्नेह का मुकाबला पोलैंड की किंग क्राउका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में पराची का मुकाबला चीनी ताइपे की चेंग यूयोंग से होगा। 55 किलोग्राम के जुमरे में निखिल का मुकाबला अजरबैजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवा टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वजीर आजम ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसीह के मंसूबों पर तबादले ख्याल भी किया। ईरान के सदर मसूद पेदिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मुफाहमतनामे को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा मास्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है और मीनाक्षी हुड्डा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज चार भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 1 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की मजलिस खत्म होती है। कल सुबह 9:30 पर हम अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शुभ खैर, जय हिंद। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बॉन्जूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने पेरिस में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे, वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं।

हम मौज में जब भी लहराए सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है सीप में जिसको अपनाया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ विकास। आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत पाए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और सरकार की नवोन्मेषी पहल से भारत विश्व के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा देशों में से एक बन गया है। नई दिल्ली में 10वीं हरित और सतत विकास साझेदारी परिचर्चा श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ऊर्जा सुरक्षा पर अपने संबोधन में श्री सारंगी ने ये बात कही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमरीकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनके स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोनजोर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस आपसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। श्री मैक्रों ने कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केन्द्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य देशभर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमरीकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबर पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। उधर चीन के गुआंगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग को हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The name is read by Akhila.

न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10 और 10 सेकंड। अब आप हैं मेरे साथ, मैं हूं चेतन, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा। गजल के गुलूकार हैं मिर्जा गालिब और संगीत का निर्देशन किया है निहारिका सिन्हा ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में बहुत ही खूबसूरत गजल।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति प्रारूप में एक बहुत ही खूबसूरत गजल सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं और बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं पंकज उदास।

कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति गजल के रूप में जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, कलाकार हैं वनिता सिंह और गलोकार यानी कि जो गजल रचना है नेता फजली साहब की और संगीत से सवारा है उत्तम सिंह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

और इसी खूबसूरत गजल के साथ आज का ये गजल गीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का या लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय के 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनूरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम बी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं चारण लक्ष्य कुमारन का गायन। संगत कलाकार हैं जी रघुवेंद्र प्रशांत वायलिन पर और आर नारायणन मृदंगम पर।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चान्या लक्ष्मी कुमारन का गायन। वायलिन पर आपकी संगति कर रहे थे जी रघुवेंद्र प्रसाद और मृदंगम पर थे आर नारायणन। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि तदनुसार 19 जून 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा योग गौमुखासन। देशभक्ति संगीत का समय रहेगा 5:20।

रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सिद्धार्थ वर्मा का सितार वादन राग अहीर भैरव में। संगत करता होंगे अभिषेक कोटनाला तबले पर। चिंतन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:40 जिसमें विषय रहेगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर।

साठ बजकर दस मिनट पर संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे संघमित्रा चक्रवर्ती के भजन। साठ बजकर तीस मिनट का समय रहेगा हिंदी फिल्मों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर आप सुनेंगे डॉक्टर अमृत दिशा का सितार वादन राग मियां की तोड़ी में। संगतकर्ता होंगे बलजीत सिंह तबले पर। सुबह नौ बजकर पन्द्रह मिनट पर गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता का विषय होगा योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे निशा जिंदल।

0: मिट्टी विनायक पंजाबी कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 9:30। दिन में 10:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। समरस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:10 और 11:30 पर आप सुनेंगे सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे रितेश और रजनी मिश्रा का गायन। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 5 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के भुलो जे वाहे गुरु, भुलो जे पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया, चालिया मुक्तिया हटिया जपिया तपिया, जिन्ना नाम जपिया बंड छकिया।

ਤਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਣ ਮੈਂ ਉੱਟ ਆਉਂਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: कल्याण गौ ब्राह्मणों को करला महो को पुत्र न जाई चौथी टिक्का ते जब माली धर्म ने सखाई अंतर पूजा अपने कते बास जम तुरका पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाहे
1: करंदा महला पहला
0: मानस खाने करे निवास शुरीव गंत नलताग तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद उना भयावे वही साथ पूरी रास कुड़ा वापा कूर बोल करे आहा संतर्म काडे राजूर नानक पूर रहा पर पूर कैतिका तेर तो तिरका खाई हाथ शुरी जब कसाई नील वस्त्र पैर हो प्रमाण मलेश ताले पुजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देख चौका कड़ी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटा तन फिटा फिर करेन मांज उठा चुली परेन कहो नानक सच ते आया सच होवे ता सच पाये पौड़ी चित अंदर सबको देख न तेरी हेठ चलाए दाए आप दे बढ़ाई आप ही कर्म कराए ना ढो बड़ा वट भेदन सिरा सिर तंदे लाए ना नजर पटी देकर सुल्ताना कहो कराए ना कर मंगल पिकला पाए ना पिकला पाए

मन का सुतक लोभ है जहवा सुत कूड़ी सुतक रखन रूप कमी सुत कम पैलायत बारी खाए नानक हंसाया दमी बदे जमपुर जाए महला पहला सबो सुत पन है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है बाने आवे जाए खाना पिया पवित्र है जितो रिजिक समा है नानक जिनी गुरमुख पूजया तिना सुत कनाए पौड़ी सतगुर वड़ा कस लहिया जिस विच वड्डियां वड्याईयां सब मिलतां जात सपाणा मन सरिया कहत मस्त पद तर बिचो